रात के 6 बजने को है। अब समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीक की मदद से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय आज से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर देश भर में विशेष कार्यक्रम शुरू करेगा। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को की थी। इसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त और अच्छी गुणवत्ता वाली प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। समारोह के दौरान स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 75 रूपये का स्मारक सिक्का और 5 रूपये का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्षों में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षो में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब भारत के 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हैं। इससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। श्री गोयल ने देश भर में 100 औद्योगिक पार्कों के विकास में तेजी लाने के लिए भव्य पोर्टल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली में श्री गोयल ने कहा कि यह पोर्टल आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में मदद करेगा। उन्होंने बताया कि इसके अंतर्गत बेहतर सड़क, रेल और अन्य परिवहन सुविधाएं, बिजली तथा पानी की व्यवस्था, डिजिटल प्रशासन, श्रमिकों के लिए सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल विकास पर ध्यान दिया जाएगा। इंडिया ब्लॉक की कल नई दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल

0: और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार की सुप्रिया सुले शामिल थी। वहीं आम आदमी पार्टी और डीएमके पार्टी सहित कई दलों ने बैठक से दूरी बनाए रखी। उधर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने नई दिल्ली में कहा कि इंडिया ब्लॉक के लोगों के बीच विश्वसनीयता कम हो गई है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50-50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं केंद्रीय इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की है। यह फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तत्काल युद्ध विराम की अपील के बाद लिया गया है। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष संघर्ष विराम चाहते हैं और शांति वार्ता जारी है। वहीं ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा है कि उनका देश कूटनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों के प्रति प्रतिबद्ध है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून पश्चिम मध्य और पूर्व मध्य अरब सागर के कुछ हिस्सों तथा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ भागों तक पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System LPMS in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. In Andhra Pradesh, 8 people succumbed to their injuries while 6 others were injured in a major fire accident at the Visakhapatnam steel plant of Rashtriya Ispat Nigam Limited yesterday evening. The accident occurred at around 4:15 p.m. during casting operations at caster 2 of steel melt shop 1. The injured have been admitted to the hospital and are undergoing treatment. Rashtriya Ispat Nigam Limited has initiated an investigation into the accident. In addition, a 3-member external inquiry committee headed by the director in charge of the Bokaro steel plant of Steel Authority of India Limited has been assigned to probe the incident. Union Steel Minister H.D. Kumaraswamy and Civil Aviation Minister Rammohan Naidu visited the Visakhapatnam steel plant accident site last night. Mr. Kumaraswamy announced a compensation of 25 lakh rupees for the kins of the deceased and 10 lakh rupees for the injured. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have expressed grief over the loss of lives in the fire incident. President Murmu extended her condolences to the families of those who lost their lives in the accident. Vice President C.P. Radhakrishnan prayed for the strength and courage to the bereaved families and wished for the speedy recovery of those injured. Prime Minister Modi has announced an ex gratia of 2 lakh rupees for the next of kin of each of the deceased and 50,000 rupees for the injured from the Prime Minister's National Relief Fund. He noted that the local authorities are providing all possible assistance to those affected. Iran and Israel have announced a halt in attacks against each other following an appeal by US President Donald Trump for an immediate ceasefire. However, Tehran has warned that it will resume military action if Israel continues its strikes against Hezbollah targets in Lebanon. On the other hand, Israeli Defense Minister Israel Katz has also warned that Israel will again target Hezbollah's stronghold in southern Beirut if attacks on northern Israel continue. The latest exchange launch marked the most direct confrontation between Iran and Israel since a ceasefire was reached in April. Iran launched missiles towards Israeli territory on Sunday night, describing the attack as retaliation for Israeli strikes on Hezbollah strongholds near Beirut. In response,

संकट मोचन अंजनी नंदन श्री बजरंग बली हनुमान जिनके नाम मात्र से ही भय दूर हो जाता है, जो शक्ति भक्ति और सेवा के प्रतीक है और जिनकी कृपा से असंभव

हे बजरंगबली, आप बल और बुद्धि के दाता हैं। आप राम भक्ति के परम सेवक हैं और हर भक्त के संकट हरने वाले हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सभी श्रोताओं के जीवन से दुख, रोग और भय का नाश करें और उन्हें शक्ति और साहस और सद्बुद्धि प्रदान करें।

चरण शरण में आई के धरु तिहार ध्यान, संकट से रक्षा करो पवन पुत्र हनुमान। दुर्गम काज बनाई के किन्हे भक्त निहाल, अब मोरी विनती सुनो हे अंजनी के लाल। हाथ जोड़ विनती करूं सुनो वीर हनुमान, कष्टों से रक्षा करो दो राम भक्ति दान। चलिए श्रोताओं, अब सुनते हैं ये शब्द।

0: प्रभु की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी विश्वास के साथ आज का चिंतन वंदना कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन।
1: नमस्कार, आज के चिंतन कार्यक्रम में आइए सुनते हैं लघु वार्ता भगवान महावीर के उपदेश। वार्ताकार हैं शंभुनाथ पांडे।
2: भारतवर्ष की तपोभूमि पर ज्ञान का अमृत बांटने वाले भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पूर्व वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुंड में क्षत्रिय परिवार में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार से विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण कर आत्म कल्याण के पथ पर निकल गए। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर एक राजकुमार थे और उनके माता पिता ने उन्हें वर्धमान नाम दिया था। राजा का पुत्र होने के कारण उनके पास कई सांसारिक सुख संसाधन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार और राजघराने को छोड़ अपनी सांसारिक संपत्ति त्याग दी। मानवता की सेवा, उसके दर्द दुख और पीड़ा को खत्म करने के उपाय की तलाश में वे एक भिक्षु बन गए। तीर्थंकर महावीर स्वामी ने दुनिया को जैन धर्म के पंचशील सिद्धांत बताए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अचौर्य यानी अस्तेय और ब्रह्मचर्य, जो आज भी मानव जाति को समृद्ध जीवन और आंतरिक शांति की ओर ले जाते हैं। उन्होंने अनेकांतवाद, स्यादवाद और अपरिग्रह जैसे अद्भुत महाव्रती सिद्धांत दिए। भगवान महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में दिया था। उनके पहले उपदेश के मुख्य बिंदुओं में अहिंसा, क्षमा, करुणा और सत्य के साथ साथ चोरी नहीं करने की शिक्षा सम्मिलित थी। भगवान महावीर का आत्मधर्म जगत की प्रत्येक आत्मा के लिए समान था। दुनिया की सभी आत्मा एक सी हैं, इसलिए हम दूसरों के प्रति वही विचार एवं व्यवहार रखें जो हमें स्वयं को पसंद हो। यही महावीर का जियो और जीने दो का सिद्धांत है। उन्होंने अपने संदेश में कहा था कि आत्मा अकेले आती है और अकेले चली जाती है। न कोई उसका साथ देता है, न कोई उसका मित्र बनता है। सब जीवों में आत्मा है, किसी को भी हिंसा न पहुंचाओ। महावीर स्वामी ने कहा था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। शांति और आत्मनियंत्रण अहिंसा है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति सम्मान देना ही अहिंसा है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है, कोई किसी और पर निर्भर नहीं करता। हर कोई सही दिशा में सर्वोच्च प्रयास करके देवत्व प्राप्त कर सकता है। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य अपने स्वयं के दोष की वजह से दुखी होते हैं और वे खुद अपनी गलती सुधार कर प्रसन्न हो सकते हैं। खुद पर विजय प्राप्त करना लाखों शत्रुओं पर विजय पाने से बेहतर है। भगवान महावीर ने अपने उपदेश में कहा कि किसी व्यक्ति के अस्तित्व को मिटाने की बजाय उसे शांति से जीने दें और खुद भी शांति से जीने का प्रयास करें, तभी आपका और सबका कल्याण होगा। उन्होंने कहा कि व्यक्ति की आत्मा ही उसकी शत्रु होती है। आपका असली शत्रु आपके भीतर ही है, जो कि क्रोध, घमंड, लालच, आसक्ति और नफरत हैं। प्रत्येक जीवित व्यक्ति के प्रति दया भाव रखो, क्योंकि नफरत और घृणा करने से स्वयं का विनाश होता है। जैसे आग को ईंधन से नहीं बुझाया जा सकता, बिल्कुल उसी प्रकार जीवित व्यक्ति तीनों लोकों की सारी धन दौलत पाकर भी

0: तुष्ट नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर हमने कभी किसी के लिए अच्छा काम किया है तो उसे भूल जाएं, और अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया है तो उसे भी भूल जाना चाहिए। खुद से लड़ो, बाहर के शत्रुओं से क्या लड़ना। जो व्यक्ति खुद से लड़ना सीख जाए उसे जीवन में आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य अपने आप को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। महावीर ने मानव जीवन के सकारात्मक दृष्टिकोण के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कर्म को ही भाग्य माना। उन्होंने कहा कि शिक्षाएं आत्मा की आंतरिक सुंदरता और सद्भाव को दर्शाती हैं। महावीर का अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का संदेश सार्वभौमिक करुणा से परिपूर्ण है। महावीर ने कहा कि जीवित शरीर केवल अंगों और मांस का एकीकरण नहीं है, बल्कि यह आत्मा का निवास है जिसमें संभावित रूप से पूर्ण बोध यानी अनंत दर्शन, पूर्ण ज्ञान यानी अनंत ज्ञान, पूर्ण शक्ति यानी अनंत वीर्य और पूर्ण आनंद यानी अनंत सुख है। महावीर का संदेश जीवित प्राणी की स्वतंत्रता और आध्यात्मिक आनंद को दर्शाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आइए अब सुनते हैं रामचरितमानस से बालकांड का भाग 81।

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल उक्तवान यत् नवान्वेषणैः वैश्विक सहभागित्वेन अन्ताराष्ट्रिय आपणे प्रवेशस्य विस्तारेण च आगामिषु पञ्चवर्षेषु भारतस्य औषध निर्माण उद्योगस्य आकारः द्विगुणितः भविष्यति। श्रीगोयलवर्यः ह्यः नवदिल्ल्यां फार्मास्यूटिकल क्षेत्रस्य वैश्विकराजदूतसम्मेलनं 26,000 ग्लोबल ड्रग रेगुलेटर्स कॉन्क्लेव तथा 26,000 फार्मा एंड हेल्थ केयर इत्यस्य अन्ताराष्ट्रिय प्रदर्शन्याः पूर्वालोकन समारोहं च सम्बोधयन् इदमुक्तवान्। केन्द्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी वर्यः अवदत् यत् नरेन्द्र मोदिनः सर्वकारस्य द्वादश वर्षेषु भारतस्य अंगार खनन क्षेत्रयोः महतीं परिवर्तनम् अभवत्। महिला क्रिकेट क्रीडायां यूनाइटेड किंगडम देशस्य कार्डिफ नगरे 26,000 आईसीसी महिला 20-प्रति-20 विश्व चषक क्रीडायाः प्राक् ह्यः प्रथमायां पूर्वाभ्यास क्रीडायां भारतेन वेस्टइंडीज दलं 26 धावनांकैः पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दर्शाती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और पुलिस बलों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य केंद्रीय मंत्री तथा सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि नवाचार, वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक बढ़ती पहुंच से अगले 5 वर्ष में भारत का फार्मा उद्योग दोगुना होने की संभावना है। नई दिल्ली में कल फार्मास्यूटिकल क्षेत्र पर आयोजित ग्लोबल एम्बेसडर मीट को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में 9 मुक्त व्यापार समझौते किए हैं और अब 50 से अधिक देशों के साथ व्यापारिक समझौते हो चुके हैं, जिससे भारतीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत अब केवल जेनरिक दवाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि अनुसंधान, नवाचार और उच्च मूल्य वाली औषधियों के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। असम की प्रसिद्ध जीआई टैग प्राप्त तेजपुर लीची अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई के लिए रवाना हो की गई है। श्री गोयल ने कहा कि इस साल से तेजपुर लीची को वैश्विक पहचान मिलेगी, किसानों को बेहतर मूल्य प्राप्त होगा और पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों के लिए नए अवसर खुलेंगे। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हुए हैं। इनमें 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार ये हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के निकट परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मुख्य सचिव, जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। दुर्घटना की जांच जारी है।

संगीतिका कार्यक्रम में अभी आप अमृता दत्ता से भजन सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं गीतों भरे गुड मॉर्निंग।

दोस्तों, उम्मीद है आपकी सुबह मुस्कुराहट और पॉजिटिव वाइब्स से भरी होगी। जी हाँ दोस्तों, दिन की शुरुआत अगर सही तरीके से की जाए तो पूरा दिन शानदार बन सकता है। तो चलिए अब सुबह को और शानदार बनाते हैं और सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, सुबह सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं होती, ये वो मौका होता है जब हम कल की थकान और सब चीज़ को, जो भी कुछ गलत सही जो भी हुआ, उसको अलविदा कहकर आज के सपनों को नई उड़ान दे सके। और दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी के पास सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन फ़र्क इस बात से पड़ता है कि हम इन घंटों में क्या सोचते हैं और क्या करते हैं।

दोस्तों याद रखिए, सूरज को उगने के लिए किसी की इजाज़त नहीं चाहिए और आपको चमकने के लिए किसी की मंजूरी नहीं चाहिए। जी हाँ, और दिल की उलझनों को अगर कुछ उलझने हैं भी, तो चलिए संगीत के साथ घोल देते हैं। और

0: इसी गीत के साथ आज का गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। 8 बजने को है, अब प्रसारित होगा समाचार प्रभात।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से इंदौर में शुरू होगा। मस्कत में भारतीय दूतावास ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मारीवेक्स जहाज में लगी आग की घटना में सभी 24 भारतीय नाविकों के सुरक्षित होने की पुष्टि की। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे पर हमले रोकने की घोषणा की। युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर फिर से जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अमरीका की संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के H-1B वीजा के लिए प्रस्तावित $1,00,000 का शुल्क रद्द किया। और भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
5: गृह मंत्रालय ने कहा है ये प्लेटफॉर्म व्यापार सुगमता, संपर्क, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के अनुरूप है। LPMS एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भूमि बंदरगाहों के संचालन को एकीकृत प्रणाली में समाकलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये प्रणाली कार्गो और यात्री प्रसंस्करण के लिए स्लॉट बुकिंग, भुगतान, ट्रैकिंग और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सहित संपूर्ण डिजिटल कार्य प्रभावी प्रदान करेगी। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के दावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंडपोर्ट में नव विकसित हितधारक आवास सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे सीमा प्रबंधन और कर्मियों के लिए बुनियादी ढांचागत सहायता मजबूत होगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
6: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
4: हमारे संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र में सहयोग, नवाचार और खाद्य सुरक्षा मजबूत करना है।
7: भारत की अध्यक्षता में आयोजित इस सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस, दक्षिण अफ्रीका सहित कुल 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ भाग लेंगे। 13 जून तक चलने वाले इस सम्मेलन की शुरुआत कृषि कार्य समूह की बैठकों से हो रही है। सम्मेलन में खाद्य सुरक्षा, कृषि नवाचार, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी। 12 जून को कृषि मंत्रियों का विशेष संवाद आयोजित होगा, जिसका फोकस लघु किसानों, महिलाओं एवं युवाओं के माध्यम से भविष्य की खाद्य सुरक्षा पर रहेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी।

0: भोपाल।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। समारोह के दौरान श्री नड्डा 75 रुपए का स्मारक सिक्का और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी देंगे।
2: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। वहीं सरकार ने अक्टूबर 2024 में इस योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत वय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
3: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
2: वहीं सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। इसके अलावा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
4: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खा के ठीक ठाक रह रहा हूँ।
2: सरकार ने बढ़ती स्वास्थ्य आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवम्बर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने अस्पतालों के विस्तार और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत कर स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष में भारत के कोयला और खनन क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। हैदराबाद में कल श्री रेड्डी ने बताया कि भारत ने 1 अरब टन कोयला उत्पादन का रिकॉर्ड हासिल कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश बन गया है। उन्होंने कहा कि कोयला क्षेत्र से लगभग 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 25 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिल रहा है। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में आग की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 अन्य घायल हो गए हैं। 2 लोगों की हालत गंभीर है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है।
5: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतकों के निकटतम परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं इस्पात मंत्री एचडी कुमार स्वामी और नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने कल रात दुर्घटना स्थल का दौरा किया। श्री कुमार स्वामी ने मृतकों के परिजनों के लिए लिए 25 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए की सहायता राशि तथा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने हादसे की जाँच के लिए एक विशेष समिति गठित की।

0: है समाचार कक्ष से मैं चाहत सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में MT मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का आभार भी जताया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। ईरान और इसराइल के बीच एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित हो सकती है। भारत ए और श्रीलंका ए क्रिकेट टीमों के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मैच आज श्रीलंका के दाम्बुला में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार सवेरे 10 बजे से शुरू होगा। श्रृंखला में अफगानिस्तान ए की टीम भी शामिल है। भारत ए का अगला मैच अफगानिस्तान ए से बृहस्पतिवार को होगा। फाइनल 21 जून को होगा। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्टइंडीज को 26 रन से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। भारतीय फूलमाली ने नाबाद 56 रन और स्मृति मानधना ने 39 रन का योगदान दिया। जवाब में वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 8 विकेट पर 153 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में आज लू चलने की आशंका व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। तटीय कर्नाटक, केरलम, माहे और उत्तरी तथा दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
2: धन्यवाद मुकेश। तृणमूल कांग्रेस के सांसदों में बगावत की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है TMC में टूट, 20 सांसदों का अलग गुट NDA के साथ। पत्र के अनुसार काकोली घोष की अगुवाई में अलग सेटिंग की भी मांग। दैनिक जागरण ने तृणमूल में एक और टूट शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, जैसी आशंका थी तृणमूल कांग्रेस के लोकसभा सदस्यों ने भी ममता बैनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है। इससे पहले पार्टी के 80 में से 60 विधायक अलग गुट बनाकर नेता प्रतिपक्ष का चयन कर चुके हैं। पंजाब केसरी ने विपक्षीय एकता का अंतर विरोध शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, हाल में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली शानदार सफलता बताती है कि इंडिया गठबंधन में इतनी भी कुव्वत नहीं है कि उसके सहयोगी दलों के नेता एक साझा मंच पर इकट्ठे होकर भाजपा को ललकार सके। हिंदुस्तान ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को का साक्षात्कार देते हुए लिखा है, चीन से सिर्फ उम्मीद के भरोसे शांति संभव नहीं, थिएटर कमान पर भी सहमत। जनसत्ता के अनुसार इसराइल और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए, 8 अप्रैल के बाद यह गंभीर झड़प, ट्रंप की अपील के बाद दोनों देशों ने किया संघर्ष विराम। पत्र के अनुसार भारत ने नागरिकों को सलाह देते हुए लिखा है, ईरान और इसराइल छोड़े भारतीय और यात्रा भी ना करें। अमर उजाला ने दिया है, वायुसेना के हेलीकॉप्टर पहुंचाएंगे नीट के प्रश्न पत्र, पहली बार सरकारी प्रोफेसर और शिक्षकों ने तैयार किया पेपर। बाहरी को जिम्मेदारी नहीं, लॉजिस्टिक्स सेंटर से परीक्षा केंद्र तक GPS से निगरानी। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा है, पिछले 12 वर्ष में भारत में कई परिवर्तन आए। देशबंधु की सुर्खी है, कल्याणकारी योजनाओं से 12 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मरकजी वजीर दाखला आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त के निजाम का आगाज करेंगे। ब्रिक्स मुल्कों के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाए हुरमुज के जनूब में आग लगने के वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार सभी 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है, लेकिन साथ ही जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में जवाबी कार्रवाई करने की तंबीह भी की है। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। और मर्दों के क्रिकेट में आज सुबह दाम्बुला में सह मुल्की सीरीज के पहले मैच में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तई सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकलो हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की समत एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में कामकाज को एक मुत्तहदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक्स के बरवक्त तबादले, नीज इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस आज मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हो रही है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत, आला अहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
2: ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। ज़रई वर्किंग ग्रुप की मीटिंग के साथ इसका आगाज होगा। अहम मौजूदात में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाख्तियार बनाना शामिल है। 12 जून को ज़राअत के वज़ीरों के माबेन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के ज़रिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। 13 जून को ब्रिक्स मुल्कों के वज़ीरों की मीटिंग होगी। ज़रई इश्तराक और इख्तरा के बारे में एक मुश्तरका दस्तावेज़ भी तैयार किए जाएंगे। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: स्टील महकमे के मरकजी वजीर HD कुमारस्वामी और शहरी हवाबाजी के वजीर राम मोहन नायडू ने कल रात विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में उस जगह का दौरा किया जहां हादसा पेश आया था। जनाब कुमारस्वामी ने मरने वाले कारकुनों के कुनबों से ताजियत का इजहार किया है और मरने वालों के लवाहिकीन के लिए 25-25 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा मुतासिरा कुनबों को स्टील प्लांट क्वार्टर्स में ही रहने की इजाजत होगी, उनके बच्चों को मुफ्त तालीम फराहम की जाएगी और हर कुनबे के एक फर्द को मुस्तकिल मुलाजमत दी जाएगी। जनाब कुमारस्वामी ने बताया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी मरने वालों के कुनबों के लिए 2-2 लाख रुपए की माली इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से ये इमदाद दी जाएगी। हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए स्टील महकमे की मरकजी वजारत ने एक खसूसी कमेटी बनाई है जो दीगर स्टील प्लांट्स के माहिरीन पर मुश्तमिल है। कल विशाखापट्टनम स्टील प्लांट में आग लगने के हादसे में 8 अफराद की मौत हो गई थी, जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। इनमें 2 की हालत नाजुक बताई गई है।

0: मुर्मू नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आग लगने के इस वाकये में लोगों की मौत होने पर रंजोगम का इजहार किया है और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की नजरिया साज क्यादत के तहत सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास के उसूलों के तहत गुज़श्ता 12 वर्षों में भारत में अहम तब्दीली आई है। इस मुद्दत में मोदी सरकार ने गरीबों किसानों ख्वातीन और नौजवानों के लिए अपनी जेर सरपरस्ती कई इकदाम किए हैं। आकाशवाणी का खबरों का शोबा गुज़श्ता 12 वर्षों के दौरान कई कलीदी शोबों में सरकार की काविशों पर मबनी एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है, जिसके तहत आज हम सेहत खिदमात पर सरकार की जानिब से किए गए इकदामात का एक जायजा पेश कर रहे हैं।
1: गुज़िश्ता 12 बरस में हुकूमत ने भारत के सेहत निज़ाम को नुमाया इस्तेहकाम बख्शा है, जो कि अब ज़्यादा काबिले रसाई किफ़ायती और मेयारी है। 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े सेहत इंश्योरेंस प्रोग्राम आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत समाजी और इक्तसादी तौर पर पसमादा कुंभों के लिए हर साल हर एक कुंभे को 5 लाख रुपये की मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस फराहम कराई गई। इस स्कीम के तहत 44 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड बनवाए गए और 1,80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इलाज फराहम कराया गया।
2: मेरा नाम रोहित सिंह है और आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या है मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: सरकार ने 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए, ताकि करीबी इलाकों में बुनियादी सेहत खिदमात फराहम कराई जाएं। ये सेहत मराकज वसी तर खिदमात फराहम कर रहे हैं, जिनमें जच्चा और बच्चा की सेहत खिदमात, टीकाकारी, जांच की सहूलियात और मुफ्त लाजमी अद्वियात शामिल हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना भी मेयारी जेनेरिक अद्वियात फराहम कर रही हैं। अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए कलीम अहमद।
0: ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में पीएमएसएमए के 10 बरस निगहदाश्त की एक दहाई मुकम्मल होने पर मुल्क भर में होने वाली तकरीबात का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के कामयाब नफाज के 10 बरस मुकम्मल होने के सिलसिले में ये मुहिम चलाई जा रही है। सरकार की जेर क्यादत इस पहल पीएमएसएमए का मकसद महफूज जचगी और हामला खातून की सेहत का ख्याल रखना है। ओमान के शहर मस्कत में भारतीय सिफारतखाने ने आबनाई हुरमुज के जनूब में आग लगने के एक वाकये के बाद बहरी जहाज एमटी मेरीवैक्स में सवार 24 भारतीय मल्लाहों को बचाने की तस्दीक की है। सिफारतखाने ने तेजी के साथ कार्रवाई करने के लिए ओमान के हुक्काम का शुक्रिया भी अदा किया है। इससे पहले कल नई दिल्ली में बैन वजारती ब्रीफिंग के दौरान बंदरगाहों जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के वजारत के तर्जुमान उपेश कुमार शर्मा ने बताया था कि कल दिन में 1:30 बजे के आसपास आग लगने के वाकये की इत्तला मिली थी। जनाब शर्मा ने कहा कि इब्तदाई जानकारी की बुनियाद पर सभी भारतीय मल्लाह महफूज हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस बात की तस्दीक की जा रही है कि आया ये बहरी जहाज किसी प्रोजेक्टाइल की जद में आया था या नहीं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने का ऐलान किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में कहा कि दोनों फरीक फौरी जंगबंदी के ख्वाहिशमंद हैं और कयाम अमन के बारे में हतमी मुजाकरात आगे बढ़ रहे हैं। अलबत्ता उन्होंने यह भी कहा कि किसी तरह की लाइलमी या हिमाकत की वजह से यह अमल मुतासिर हो सकता है। सदर ट्रंप ने यह वाजे कर दिया कि जब तक कोई हतमी समझौता नहीं हो जाता नाकाबंदी पूरी तरह नाफिज रहेगी। इधर इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने भी एक बयान में कहा है कि उनकी दिफाई फोर्सेज ईरान के खिलाफ हमले रोक रही हैं। उन्होंने ये वार्निंग भी दी कि अगर ईरान ने फिर से हमले करने की गलती की तो इसराइल पूरी ताकत के साथ इसका जवाब देगा। अमरीका की वफाकी अदालत ने H-1B वीजा के लिए सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नाफिज की गई $1,00,000 की फीस को रद्द कर दिया है। वफाकी जज ने यह फैसला सुनाया कि H-1B दरखास्तों के लिए $1,00,000 की फीस गैर कानूनी है। بوسٹن میں امریکی ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج نے کہا کہ کانگریس سے مطلوبہ منظوری کے بغیر اس طرح کی درخواستوں پر

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 810 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर 8:45 और ठीक 20 सेकंड हुए हैं और अब वक्त है कार्यक्रम स्वर गंगा का। स्वर गंगा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुप्रिया मैत्रा से ध्रुपद गायन, जिसमें आप सुनेंगे राग अहीर भैरव। संगत कलाकार है पखवाज पे हरीश चंद्रपति।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुप्रिया मैत्रा से ध्रुपद गायन सुन रहे थे, जिसमें आपने सुना राग अहिर भैरव। संगत कलाकार थे पखावज पर हरीश चंद्रपति। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 9:15 होने को है, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। अंगदान किसी जरूरतमंद के लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। एक मृत दाता अपने अंगों और उत्तकों से 8 से अधिक लोगों का जीवन बचा सकता है या संवार सकता है। हालांकि वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी जागरूकता के अभाव में समाज में कई भ्रांतियां फैली हुई हैं, जो इस नेक काम में बाधा बनती हैं। अंगदान के प्रति भ्रांतियां और आवश्यक वैज्ञानिक जागरूकता। विस्तृत जानकारी के लिए सुनते हैं अंगदान के लिए जागरूकता फैलाकर हजारों लोगों को जीवन दान दिलाने वाले उद्योगपति, समाज सेवी और पद्मश्री 2026 से सम्मानित नीलेश विनोद चंद्र मंडलेवाला से महेंद्र सिंह लालस की ये बातचीत।
1: आज हमारे साथ हैं नीलेश मंडलेवाला जी। आपने अंग दान को लेकर देश में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है और इसीलिए आप पद्मश्री से भी सम्मानित हुए हैं। नीलेश जी, थोड़ी सी इस अंग दान पर बात करें, उससे पहले थोड़ा सा ये समझाएं कि ब्रेन डेड क्या होता है और ब्रेन डेड के बाद क्या व्यक्ति का अंग दान करवाया जा सकता है और उसमें जीवन की कोई आशा या आकांक्षा नहीं होती।
2: ब्रेन डेड इज इक्वल टू डेथ। उसका शरीर है लेकिन आत्मा चली गई, ऐसी अवस्था ब्रेन डेड है। ब्रेन डेड होने की वजह हम कहे तो रोड एक्सीडेंट में हेड इंजरी होती है, उनमें छोटा ब्रेन काम करना बंद कर देता है, या तो ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हेमरेज की वजह से जब छोटा ब्रेन काम करना बंद कर देता है तभी हम उनके ऑर्गन्स के डोनेशंस करवा सकते हैं। हर एक अस्पताल में ब्रेन स्टेम डेड डिक्लेरेशन कमिटी होती है, 4 डॉक्टरों की कमिटी होती है। जो व्यक्ति ब्रेन डेड है, जो ऐसा लगता है, तो उसको पहले क्लिनिकली देखते हैं। क्लिनिकली देखने के बाद में उनको एपनिया टेस्ट करते हैं और एपनिया टेस्ट करने के बाद में यदि वो ब्रेन डेड है तो उनका ऑर्गन्स के डोनेशंस हो सकता है।
1: कौन कौन से अंग दान दिए जा सकते हैं एक ब्रेन डेड व्यक्ति के?
2: एक ब्रेन डेड व्यक्ति के जो हमारे सॉलिड ऑर्गन्स है, किडनी, लीवर, हार्ट, लंग्स, पेनक्रियास, इंटेस्टाइन, उनके अलावा हैंड्स का भी डोनेशंस हो सकता है। उनके साथ में हम टिश्यू के भी दान कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्निया है, स्किन है, बोन्स है, हार्ट वाल्स है। ऐसे हमारे सॉलिड ऑर्गन्स एज वेल एज टिश्यू के डोनेशन ब्रेन डेड के किस्से में होते हैं। नेचुरल डेथ में हम केवल टिश्यू का ही दान कर सकते हैं। आज ऑर्गन जो डोनेशन और एलोकेशन, वो दोनों प्रक्रिया अलग है। हमारे देश में ऑर्गन एलोकेशन और अवेयरनेस का काम नोटो के अंदर में होता है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर में आता है।
1: मतलब कोई भी व्यक्ति सीधा अगर अंगदान करना चाहे तो नहीं कर सकता?
2: नहीं कर सकते। उसके नोटो ने पूरे देश में अंगदान का एलोकेशन और अवेयरनेस के लिए 5 रीजियन बने हैं, यानी रोटो बनाए हैं, और उनके बाद में आता है सोटो, स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन। देश में किसी भी व्यक्ति को कोई भी ऑर्गन्स की खराबी होती है तो वो जो भी अस्पताल में ट्रांसप्लांट करवाना चाहते हैं वो अस्पताल में उनको जाके पूरा रिपोर्ट्स के साथ में नाम रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस करनी होती है, और उनके बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस, उनके अलग अलग रिपोर्ट्स निकालने के बाद में वो सोटो के अंदर रजिस्टर्ड होती है, नोटो में भी रजिस्टर्ड होती है। जब भी कोई ऑर्गन्स डोनेशंस होता है तो पहले सोटो को इन्फॉर्म किया जाता है और सोटो उनके वेटिंग लिस्ट के हिसाब से उनका एलोकेशंस करते हैं। तो उसके अंदर दूसरी कोई किसी की प्रक्रिया बीच में आती नहीं है, और दूसरा कि किसी की भी सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए ऑर्गन्स का एलोकेशंस नहीं होता है।
1: थोड़ा सा ये बताएं कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन है ये भी अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, और उसके साथ साथ इस अंग को सुरक्षित रखना। तो यदि किसी व्यक्ति का अंग आपने निकाला है, फर्ज कीजिए किडनी निकाली है, तो उसे क्या उसी वक्त ट्रांसप्लांट किया जाता है या उससे पहले सुरक्षित रखा जाता है?
2: नहीं, ऑर्गन्स तो क्योंकि ये हमारे यहाँ कोई बैंक नहीं है, हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई ऐसी है कि बैंक वाली कोई बात नहीं है। जो हर एक ऑर्गन्स की ट्रांसप्लांट की समय की मर्यादा होती है, हृदय का ट्रांसप्लांट 4 घंटे में करना होता है, लंग्स का ट्रांसप्लांट 6 घंटे में होता है, लीवर का 12 घंटे में, और किडनी 24 घंटे के अंदर ट्रांसप्लांट करनी होती है। लेकिन ऑर्गन प्रोक्योर करने के बाद में जितने कम समय में हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांट करते हैं उतना रिजल्ट उसका अच्छा होता है।
1: सक्सेस का क्या रेशियो इसमें रहता है नीलेश जी?
2: हमने जो ये 20-21 साल की हमारी जो जर्नी है उसमें हमने देखा है कि किडनी का जो बात करें तो करीबन 95% का सक्सेस रेट होता है, लीवर में भी 90%,

0: शासन से ऊपर है। हृदय में भी जो हमें पूरा देश का ध्यान नहीं है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने 57 हार्ट डोनेशन करवाए है सूरत से, तो वो सक्सेस रेट मेरे ख्याल से वो भी 90% से ऊपर होगा। क्योंकि जो डेट होती है 2 साल के बाद या 3 साल के बाद डेट होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि फॉलो अप नहीं होता है, ये सब नहीं होता है, वो उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर होती है वो नहीं करते, उसी वजह से भी डेट होती है। लेकिन रिजल्ट ट्रांसप्लांट के अच्छे। इवन मैं हैंड्स का भी ट्रांसप्लांट की बात करूं, 2021 में हमने देश में सबसे कम उम्र के बच्चे का हैंड्स का डोनेशंस करवाया था। 14 साल के बच्चे का हैंड का डोनेशंस हुआ था और 31 साल के युवान में वो ट्रांसप्लांट हुआ था। आज 4 साल ट्रांसप्लांट के हो गए, वो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा है। अभी वो 3-व्हीलर व्हीकल चलाता है, स्विमिंग करता है और शीर्षासन भी करता है। तो जो ट्रांसप्लांट के रिजल्ट है वो बहुत ही अच्छे है, लेकिन ट्रांसप्लांट के बाद में जो पोस्ट ऑपरेटिव केयर है वो हमेशा हमें रखनी पड़ती है, क्योंकि ये फॉरेन बॉडी है, तो उनकी जो दवाई है या फॉलो अप है वो रेगुलर रखना पड़ता है।
1: अनिल जी, आपने जो अब तक अंग दान करवाए हैं या जो भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हुए हैं, ये सारे ब्रेन डेड व्यक्तियों के ही थे?
0: हाँ, यस। हमारे नेचुरल डेथ में तो ऑर्गन डोनेशन होते नहीं है, जो ब्रेन डेड है उसका ही ऑर्गन डोनेशन होता है और वही हम लोग करवा रहे हैं।
1: अनिल जी, ये आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य शुरू किया, बताएं कि अब तक जो आपने किया उससे संतुष्ट है?
0: ऐसे मानो तो संतुष्ट है और ऐसे मानो तो संतुष्ट नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत काम करना बाकी है। पहले तो ये बात ये है कि जो ब्रेन डेड होते हैं उनकी जानकारी आज की तारीख में भी नहीं आती है, जानकारी आए तो हम लोग उसको समझा सके। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति हमारे गुजरात में है, हमारे सूरत में है, कि वहाँ पे जहाँ कोई ब्रेन डेड होता है, आज परिवार सामने से कॉल करता है कि हमें ऑर्गन डोनेशन करना है। इवन नेचुरल डेथ में भी परिवारों का फोन आता है कि हमारे स्वजन की डेथ हुई है और हम लोग ऑर्गन डोनेशन करना चाहते हैं। तो इतना बदलाव लाने में तो हम जरूर सफल हुए हैं, लेकिन अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि हमारे देश में कितने ऐसे प्रांत है वहाँ पे अब आज की तारीख में भी अंगदान के विषय की चर्चा नहीं होती है और अंगदान ना के बराबर है। और हमारी संस्था डोनेट लाइफ ने एक मिशन भी बनाया कि जो वर्ष 2047 में जब हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा होगा, तभी हमारे देश में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु अंग न मिलने की वजह से नहीं होनी चाहिए। तो ये मिशन लेके हम हमारी संस्था डोनेट लाइफ चल रही है और हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई बार बार मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को भी अंगदान का महत्व समझा रहे हैं। और उन्होंने जो 2047 की परिकल्पना हमें दिखाई है कि 2047 में हमारा देश विकसित भारत होगा, तो उसमें हम भी ये अंगदान के माध्यम से हमारा योगदान देंगे।
1: नीलेश भाई, बहुत सारी जगहों पर अंधविश्वास, मिथ, ऐसी चीजें, जैसे बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आपकी आंखें चली गई हैं, फर्ज कीजिए, तो हो सकता है मृत्यु के बाद ही तो हम अगले जन्म में नेत्रहीन पैदा होंगे। इस तरह के बहुत सारे वहम बहुत सारे लोगों में होते हैं, आपको भी शायद इनका सामना करना पड़ा होगा।
0: महेंद्र जी, मैं पिछले 20 सालों से ये सब चीजों का सामना कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि आंखों का दान नहीं करना चाहिए क्योंकि हमें स्वर्ग का रास्ता नहीं मिलेगा, तो मैं उनको बताता हूँ कि आत्मा अजर और अमर है। जब भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तभी आत्मा पहले चली जाती है, और हम जो उनके पार्थिव देह का अग्निदाह देते हैं वो तो एक खोखा ही होता है। तो लोग बोलते हैं कि हमें अंगदान नहीं करना चाहिए, तो मैं उन लोगों को पूछता हूँ कि हमारे समाज में ऐसी कितनी माताएं हैं, बहनों है कि जिनको यूट्रस की तकलीफ होती है, ब्रेस्ट कैंसर की तकलीफ होती है, उनका यूट्रस निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम तो हो ही गया, शरीर खंडित हो ही गया, तो क्या ऐसी माता बहनों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? हमारे भाइयों में गोल्ड ब्लेडर की तकलीफ होती है, उनका गोल्ड ब्लेडर निकाल दिया जाता है, शरीर का एक अंग कम हो गया, शरीर खंडित हो ही गया। हमारे देश में जो भी किडनी के ट्रांसप्लांट होते हैं वो ज्यादातर लाइव ट्रांसप्लांट होते हैं, यानी कि परिवार में से ही एक किडनी का दान करते हैं। तो 2 किडनी में से 1 किडनी कम हो गई, शरीर खंडित हो गया, तो क्या ऐसे लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है क्या? तो ये भ्रांतियां हमने दूर करने की कोशिश की है और लोग समझते भी है कि बात तो सही है। हम वही संदेश लोगों को देते हैं कि आपके ब्रेन डेड स्वजन के अंगों की स्वर्ग में जरूरत नहीं है, किंतु पृथ्वी पर है। और दूसरा जो धार्मिक मान्यता की बात है, तो हम लोगों को बताते हैं कि पृथ्वी पे सबसे पहला ट्रांसप्लांट ही भगवान गणेश

0: अन्य हो रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारी किडनी किसी दूसरे के रक्त को पवित्र और स्वच्छ कर रही होगी। हम नहीं होंगे फिर भी हमारा लीवर किसी दूसरे के भोजन को हाड़, मांस, मज्जा और रस बना के उनके शरीर का पोषण कर रहा होगा। नहीं होंगे हम फिर भी होंगे हम।
1: बहुत सुंदर नीलेश जी। फिर ऐसे भी आपके सामने बहुत सारे अनुभव आए होंगे जब बहुत सारे लोगों ने, परिवार जनों ने कहा होगा कि देखिए आज हमारा स्वजन तो नहीं रहा, लेकिन उस व्यक्ति से मिले होंगे जिसको उसका हृदय लगा है और आभार व्यक्त करते होंगे।
0: ये जो संबंध है ये संबंध खून के संबंध नहीं है, ये संबंध का नाम है मानवता। मानवता से बड़ा कोई संबंध नहीं है। और जब ये परिवार मिलता है ऐसे तो नामों की घोषणा नहीं की जाती है, लेकिन वो आज सोशल मीडिया का माध्यम ऐसा है, प्रिंट मीडिया का माध्यम ऐसा है, और एक दूसरे को जब भी मिलना होता है तभी जो दृश्य बनते हैं वो कभी शब्दों में भी बयां नहीं किए जा सकते हैं। हमने जो भी ऑर्गन्स डोनेशंस करवाए हैं, इतने परिवार उनके बेटे की शादी में आए हैं, एक परिवार के आपस में रिश्ता बना हुआ है, तो ये सबसे बड़ा रिश्ता है, वो रिश्ते का नाम है मानवता।
1: नीलेश जी, 2 दशक से ज्यादा समय से आप ये समाज का ये सुंदर कार्य कर रहे हैं, आपको राष्ट्रपति जी ने सम्मानित भी किया, बताएं कि संतुष्ट हैं इस सम्मान से?
0: आज मैं तहे दिल से भारत सरकार का आभारी हूँ कि उन्होंने पद्मश्री से हमें सम्मानित किया, और खास करके हमारे देश के यशस्वी वड़ा प्रधान माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। लेकिन ये सम्मान जो है हमें मिला है, ये सम्मान नीलेश मांडलेवाड़ा या डोनेट लाइफ का सम्मान नहीं है। ये सम्मान है जो भी संस्थाएं या जो भी व्यक्ति देश में अंगदान के कार्य से जुड़ी हुई है, ये तभी का सम्मान है। और ये सम्मान से सरकार ने हमें एक जिम्मेवारी दी है, सरकार ने जो विश्वास हमारे ऊपर रखा है वो विश्वास को सार्थक करने की जिम्मेवारी अब हमारी है। हमें अंगदान, जीवन दान के मिशन को पूरे देश में फैलाना है, जन जन तक लोगों को जागरूक करना है कि शरीर तो राख ही हो जाने वाला है, उससे अच्छा है कि हम उनके अंगदान करवाए, क्योंकि हमारे देश में हर साल लाखों लोगों की मौत समय सर अंग न मिलने की वजह से हो रही है, उनको नया जीवन कैसे दिया जाए। और मैं मानता हूँ ये सम्मान जो मिला है, ये सम्मान मैंने आगे भी कहा, ये हमारा व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, ये सम्मान ये अंगदान की प्रवृत्ति का सम्मान है, ये सम्मान है जितने भी अंगदाता है और उनके परिवार जनों का सम्मान है, ये सम्मान है जो भी डॉक्टर्स अस्पताल अंगदान के कार्य के साथ जुड़ी हुई है, ये इनका सम्मान है। जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट जो सहयोग दे रही है, ये उनका सम्मान है। एयरपोर्ट अथॉरिटी का सम्मान है। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट जो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में आधी रात को भी जो पीएम करके जो उसके बॉडी हैंडओवर करती है, ये इनका सम्मान है। और खास करके प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के जिन्होंने पिछले 20 सालों से अंगदान, जीवन दान का संदेश जन जन तक पहुँचाने में जो सहयोग दिया है, इन सभी का सम्मान है।
1: नीलेश मांडलेवाला जी, आप देह रूप में तो नहीं रहेंगे एक निश्चित समय बाद, लेकिन आपने जो कार्य किए वो इस सृष्टि पर हमेशा अमर रहेंगे। आप स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अंगदान के प्रति भ्रांतियां और आवश्यक वैज्ञानिक जागरूकता। अभी आप अंगदान के लिए जागरूकता फैलाकर लोगों को जीवन दान दिलाने वाले उद्योगपति और समाज सेवी पद्मश्री से सम्मानित नीलेश विनोद चंद्र मंडलेवाला से महेंद्र सिंह लालस की ये बातचीत आप सुन रहे थे। और इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। वाचन स्वर कमल किशोर बड़ाइक का और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

विच है तेरा वास। ते अगली नज़म पेश कर दी जी धीआं। बाग दी कुख च बीज रिहा ए माली, बाग दी कुख च बीज रिहा ए माली, कीमती फलदार बूटे मुनाफा कमाउण लई, कीमती फलदार बूटे मुनाफा कमाउण लई, छां ठंडी पाउण लई, छां ठंडी पाउण लई पुट सुटदा ए कुछ वेलां, सोचदा है जिवें कणकां च कां गियारियां जंगली बूटियां विचारियां, छां ठंडी पाउण लई पुट सुटदा ए कुछ वेलां, सोचदा है जिवें कणकां च कां गियारियां जंगली बूटियां विचारियां, हे माली ए जंगली नहीं, हे माली ए जंगली नहीं, संजीवनी बूटियां ने प्राण बचाउंदियां ने, हे माली ए जंगली नहीं, संजीवनी बूटियां ने प्राण बचाउंदियां ने घर वसाउंदियां ने, प्राण बचाउंदियां ने घर वसाउंदियां ने, तूं की जाने संजीवनी बूटी बाज नहीं सजना है तेरा बाग, तूं की जाने संजीवनी बूटी बाज नहीं सजना तेरा ए बाग, बूटा बूटा सड़ जाएगा सारा मुनाफा मर जाएगा, बूटा बूटा सड़ जाएगा सारा मुनाफा मर जाएगा। तो हुण मेरी अगली कविता जी भै मुक्त। सदा एक भै जिहा बनिया रहिंदा सी इत्थों विछड़न दा, सदा एक भै जिहा बनिया रहिंदा सी इत्थों विछड़न दा, तू मेरे अंदर जिउंदा दिल च धड़कदा अखां च वसदा हंझुआं च वहिंदा प्यार प्यार कहिंदा, तू मेरे अंदर जिउंदा दिल च धड़कदा अखां च वसदा हंझुआं च वहिंदा प्यार प्यार कहिंदा। अचानक हालात दी नेरी चली, अचानक हालात दी नेरी चली, मैं बुत हो गई दिल बंजर अखां पत्थर हंझू खुश्क, अचानक हालात दी नेरी चली, मैं बुत हो गई दिल बंजर अखां पत्थर हंझू खुश्क, प्यार बेमाने ते हुण मैं भै मुक्त हाँ, प्यार बेमाने ते हुण मैं भै मुक्त हाँ। ते अगली कविता दा नां ही कविता है मन दी चारगाह च चार दी इन्हां अखरां नूं, मन दी चारगाह च चार दी इन्हां अखरां नूं, दिल तो दिमाग तक, दिमाग तो रूह, रूह तो आत्मा ते आत्मा तो परमात्मा तक, मन दी चारगाह च चार दी इन्हां अखरां नूं, दिल तो दिमाग तक, दिमाग तो रूह, रूह तो आत्मा ते आत्मा तो परमात्मा तक, रजाउंदी सजाउंदी पालदी पोसदी पैरों पैर तोड़दी, रजाउंदी सजाउंदी पालदी पोसदी पैरों पैर तोड़दी, करदी तराशदी चमकाउंदी, करदी तराशदी चमकाउंदी, ज्यों ही इन्हां शब्दां दा लिशकारा पैंदा, ज्यों ही इन्हां शब्दां दा लिशकारा पैंदा, मेरे मत्थे च सूरज उगाउंदा, ज्यों ही इन्हां शब्दां दा लिशकारा पैंदा, मेरे मत्थे च सूरज उग आउंदा, ओ सूरजे दी लोए लोए इन्हां शब्दां नूं हक दी पैरां हेठ तलियां रख दी, ओ सूरजे दी लोए लोए इन्हां शब्दां नूं हक दी पैरां हेठ तलियां रख दी, नज़रां दियां हद्दां च तोड़दी पुचकार दी अंत काव बाड़ी च लिया खलार दी, ओ सूरजे दी लोए लोए इन्हां शब्दां नूं हक दी पैरां हेठ तलियां रख दी, नज़रां दियां हद्दां च तोड़दी पुचकार दी अंत काव बाड़ी च लिया खलार दी। हुणे तुसीं अरकमल कौर दा कविता पाठ सुन रहे सी, ते हुण कुछ गीत सुन ले जान, लो सुनो बलकार सिद्धू नूं।

अभी आप सुन रहे थे पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 10 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 10:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। यह पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को

0: भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो रहा है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुँच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो। कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
0: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। पुदुचेरी में मंत्रिमंडल विस्तार के तहत राष्ट्रपति ने मुख्यमंत्री की सलाह पर 3 नए मंत्रियों की नियुक्ति की है। गृह मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के विधायक पी राजवेलू और वीपी शिवा कोलुंधु तथा भाजपा विधायक जीएनएस राजशेखरन को पुदुचेरी सरकार में मंत्री नियुक्त किया गया है। इनकी नियुक्ति शपथ ग्रहण के बाद प्रभावी होगी। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र में हुई आग की दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान के मस्कत में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में एमटी मेरिवेक्स जहाज पर लगी आग के बाद 24 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। दूतावास ने त्वरित कार्रवाई के लिए ओमान का भी आभार व्यक्त किया है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के प्रवक्ता उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि दोपहर करीब 1:30 बजे जहाज पर आग लगने की सूचना मिली थी। हादसे की जांच जारी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। यह शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर में कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने उलगुलान आंदोलन के माध्यम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का स्वर बुलंद किया। मौसम विभाग ने आज उत्तर पश्चिमी और उत्तरी राज्यों तथा पश्चिमी राजस्थान और विदर्भ में लू चलने की संभावना व्यक्त की है। कोंकण और गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में दिन भर गर्म और उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। और खेलों में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप 2026 के पहले अभ्यास मैच में भारत ने वेस्ट इंडीज को 26 रन से हरा दिया है। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट पर 179 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणु कटारिया। Prime Minister Narendra Modi today said that the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage from infrastructure to the digital revolution. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on this path of service, good governance and prosperity. Prime Minister Narendra Modi has said that through continuous efforts inspired by the ethos of Sabka Saath Sabka Vikas over the past 12 years, the country is moving towards becoming a strong and self-reliant India. Sharing a Sanskrit quote, Mr. Modi said that dedication and service spirit have been the government's invaluable capital for nation building. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System LPMS today in New Delhi. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. LPMS is a digital platform designed to integrate operations across land ports into a unified system. It will enable secure real-time exchange of logistics and regulatory information, bringing land ports on a par with digital systems already in place at airports and seaports. Union Home Minister paid tributes to Lord Birsa Munda on his death anniversary today. In a social media post, Mr. Shah said, Lord Birsa Munda sounded the conch of freedom against British rule through the Ul Gulan movement, calling him the immortal symbol of tribal pride, patriotism and cultural consciousness. The Home Minister noted that Birsa Munda organized tribal society to protect their rights and heritage and gave the conservation of water, forest and land the form of a people's movement. Ministry of Coal has notified the Coal Exchange Rules 2026, paving the way for the establishment of coal exchanges in the country to enable transparent and market-driven coal trading. According to the ministry, the new framework will transform coal marketing from the traditional one-to-many sales model to a competitive many-to-many trading platform, improving price discovery and efficiency. The Coal Controller Organization will regulate and register the exchanges. The rules are available at the website www.coal.gov.in. The International BRICS Agriculture Conference is set to begin in Indore, Madhya Pradesh today. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the conference. These include Brazil, China, Russia and South Africa. Foreign delegates will also get a taste of Indore's rich culture and heritage. They will visit historic sites like Rajwada, Chappan Dukan, Sarafa and Mandu. Domestic benchmark indices Sensex and Nifty opened on a higher note this morning, supported by improving sentiment after signs of a pause in hostilities between Iran and Israel. Sensex climbed over 500 points to hit an intraday high of 74,035, while the Nifty also rose to over 100 points to 23,259. Iran and Israel have announced to halt attacks against each other. The announcement was initially made by US President Donald Trump, who said in a post on Truth Social that both sides are looking to do an immediate ceasefire and final negotiations on peace are proceeding. He, however, cautioned that the process could still be affected by what he described as ignorance or stupidity. Mr. Trump also made it clear that the blockade will remain fully in force until a final agreement is reached. And in men's cricket, India A were 0-4 no loss in one overs against Sri Lanka A in the opening match of Tri-Series A Nation A Series at the Rangiri Dambulla International Stadium in Sri Lanka when reports last came in. Earlier, India A skipper Tilak Verma won the toss and opted to bat first. And that is the end of this news bulletin.
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इन द प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब समय है कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। चलिए आपको ले चलते हैं उस खूबसूरत सफर पर जहाँ पर जादू ही जादू बिखरा है। जी किसका जादू? संगीत का जादू, क्योंकि जानते हैं संगीत वह जादू

जादू है जो दिल की अनकही बातों को भी शब्द दे देता है। कभी मुस्कान बनकर होठों पर खिलता है तो कभी यादों की महक बनकर मन को छू जाता है। और आज के इस संगीतमय सफर में आज आपके साथ मैं हूँ आपकी दोस्त ज्योति शर्मा। स्वागत है आप सभी का तहे दिल से। और आपकी फरमाइश है तो आपकी संदेशें जो हैं वो लाजमी हैं, और मैं देख रही हूँ स्क्रीन पर तो संदेशें आना शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। और जो हमारे श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और उन्हें हमारा ईमेल आईडी नहीं पता है तो हम जल्दी से बता देते हैं आपको। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और इस खूबसूरत सफ़र की शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत से गीत के साथ।

वाकई हमारे दोस्तों की भी बहुत खूबसूरत से अंदाज़ है, उनके संदेशे जो हैं वो हम तक पहुंच रहे हैं। और जो संदेशा आया है वो हमें आया है लोहगढ़ ठाकुर

वाला से, और ये है स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुललाल सिंह, अविराज सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। और अगला जो संदेश हम तक पहुंचाया है वो है धर्मेंद्र चिप्पा, और इन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम में कोई भी नगमा सुनवा दीजिए, बिल्कुल हम आपका नगमा, आपकी पसंद का नगमा बजाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ये नासिर से जो है वो जुड़े हैं हमारे साथ, फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से हैं ये नासिर शेख, और नाजिया साजिद और शाहिद, और गोविंदपुरा अहमदनगर से जुड़े हैं जुनेद, सबीहा, मिखाइल, जैनब, और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं ये सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमाक्ष जुड़े हैं, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं सुनील पाठक जी, और ये हमारे साथ जुड़े हैं इनके साथ कमल पाठक, दीप्ति मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, और ये जुड़े हैं अनारकली बाज़ार से, और उसके अलावा हमारे साथ नवी हसन जी भी जुड़े हैं।

ये गीत जो है वो जहन में ज़रूर आता है, और वाकई दोस्ती का रिश्ता ही इतना ख़ास होता है। और अच्छे दोस्त मिल जाना ना, मैं तो हमेशा कहती हूँ अच्छे दोस्त मिल जाना एक कहीं आपकी खुशकिस्मती होती है कि आपको अच्छे दोस्त मिलते हैं। और हम ये दुआ करते हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी में अच्छा और सच्चा दोस्त ज़रूर मिले, और वो दोस्त मिले कि जब अगर कोई मुश्किल आ भी जाए तो उसमें से आपको वो यूँ निकाल ले और आपका साथ दे। और हाँ, ये साथ आप भी हमें दे रहे हैं क्योंकि आपके जो संदेश है वो हम तक पहुंच रहे हैं, और आप भी हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। देखिए, फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, जमशेदपुर से, और आज के दिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत बहुत आपको भी शुभकामनाएं। उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं, ये जो हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं गांव पोस्ट मुंगीसापुर कानपुर देहात से, ये है रामेश्वरम कठेरिया, उमाकांती कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया, बेद बाबू कठेरिया, समस्त कठेरिया परिवार हमारे साथ जुड़ा है, और इन्होंने कहा है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारी मेल कब शामिल होगी। देखिए, आपका इंतज़ार हमने यूँ ख़त्म कर दिया। और हमारे साथ जुड़े हैं ये टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा, और जो अगले हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं दीपक साकी, ज्योति साकी और सक्षम साकी, ये जुड़े हैं हमारे साथ अलीगंज से। और उसके अलावा अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक, मधु नायक भी जुड़े हैं हमारे साथ पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से। और साथ ही हमारे साथ ये जुड़े हैं हमारे श्रोता, ये जुड़े हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी। और उसके अलावा हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं हमारी दोस्त सतीश अनेजा और बिमला अनेजा, ये जुड़े हैं चंडीगढ़ सिटी से हमारे साथ। और भी संदेशी हैं जिन्हें हम शामिल करेंगे, लेकिन गीतों का सिलसिला भी यूं ही बना रहना चाहिए, है ना?

0: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके साथ मैं हूं आपकी दोस्त ज्योति शर्मा, और संदेश जो है वो बिल्कुल लगातार आ रहे हैं और हम उन्हें शामिल करने वाले हैं जल्दी से, क्योंकि जो अब संदेशा मुझे दिखाई दे रहा है वो है बिहारी कॉलोनी शहादरा दिल्ली से। ये है तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन चंडीगढ़ से हैं, राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना हमारे साथ जुड़े हैं। उसके अलावा चरणदास जी ने भी हमें संदेशा भेजा है, ये हमारे साथ इनके साथ जुड़े हैं। निर्मल अग्रवाल, रेखा अग्रवाल चौधरी बसब हिसार से जुड़े हैं हमारे साथ, और अगले जो हमारे दोस्त हैं वो जुड़े हैं, कहाँ से जुड़े हैं, ये जुड़े हैं नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से। ये हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, और जिला गाजीपुर से हमारे साथ जुड़े हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय हमारे साथ जुड़े हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। उसके अलावा एक बार फिर से जुड़े हैं हमारे साथ उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, और एक और हमारे श्रोता जुड़े हैं हमारे साथ PTI संसद मार्ग से, अनिल मोहन हमारे साथ जुड़े हैं और कह रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशव अब्बासी, रसीद वारसी हमारे साथ जुड़े हैं एटा से, और हमारे जो अगले दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं ये हैं अमोल, अमोल हमारे साथ जुड़े हैं, अमोल मानकर महाराष्ट्र से, और ये हैं इनके साथ शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, और इस्लामपुर महाराष्ट्र से हैं सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर और सुमेध कुमार, और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, ये जुड़े हमारे साथ लोहगढ़ ठाकुरवाला से। और भी संदेशे हैं, और अगर आपको संदेशा भेजना है तो जल्दी से भेजिए, लेकिन हाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगी जो मैं हर बात कहती हूँ कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम संदेशे शामिल कर पाएँ, लेकिन अगर आप एक बार संदेशा भेज चुके हैं तो आप दोबारा ना भेजें ताकि सबकी बारी आ पाए। और फिलहाल संदेशे बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो गीत है ना वो कह रहा है कि उसकी बारी कब आएगी।

सुपरहिट गीत अभी आपने सुना, घड़ी की सुई में वक्त हुआ है 10:35 और पूरे 20 सेकंड, और आपकी फरमाइश कार्यक्रम चल रहा है और संदेशे जो है वो हम तक आ रहे हैं। अब जो संदेशा आया वो आया है बुलंदशहर चकुंटी बुलंदशहर से, अपर कोट मोहल्ला चकुंटी बुलंदशहर से। ये हैं मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही हमें जो संदेशा अगला आया है वो है कि हमें ज़रूर शामिल कीजिएगा, हमारे मेल को ज़रूर शामिल कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए आपका मेल हो गया शामिल। छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से जुड़े हैं अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूहे इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसीड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से जुड़े हैं बिटिया आमना, नसरीन आस

माँ परी, राबिया, मंतुसा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा वेग सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, मोहम्मद रियान, समरीन परवीन और माहिरा नूर भी हमारे साथ जुड़े हैं। ये हमारे साथ जुड़े हैं जसपुर उत्तराखंड से। नीटू मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं और ये कह रहे हैं थक गए हैं, हमारा जो मेल है वो शामिल नहीं हुआ है। बिल्कुल हम आपको थकाएंगे नहीं, लेकिन हाँ बारी आएगी और कोशिश ये रहेगी कि सबकी आएगी। और ये जुड़े हमारे साथ पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से जुड़े हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और डुग्गू भाविक सिक्का हमारे साथ साथ जुड़े हैं। और इन्होंने कहा है कि नाम शामिल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी और मास्टर अल कबीर हमारे साथ जुड़े हैं। और साथ ही छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा। चलिए संदेशे भी शामिल हैं और गीत जो हैं उनका भी सिलसिला चलते रहना चाहिए।

दिल को चैन, करार और मज़ा आ जाता है कि जब कोई अपना अपने साथ जुड़ा होता है और हमारा साथ देता है, चाहे कोई भी हालात हो, कोई भी सिचुएशन हो। और एक शब्द आपने अक्सर सुना होगा कि कान के कच्चे होना। अब ये जो कान के कच्चे होते हैं ना, यहाँ तो है वहाँ गड़बड़ हो जाती है। और गड़बड़ ये होती है कि कई बार क्या होता है कि किसी ने कुछ कहा और उसकी बात सुन के वो इंसान है वो मान लेता है, और वो अपने अंदर उसकी ऐसी छवि जो है वो बना लेता है। तो मुझे लगता है कि सुनना ज़रूर चाहिए, लेकिन हाँ, सुनने के बाद अपनी बुद्धि, अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए कि सामने वाला वाकई इस तरह का है या नहीं है, ये खुद से हमें परखना चाहिए। और उसके बाद कोई निर्णय लेकर किसी की छवि जो है वो अपने कहते हैं ना, मन पे बनानी चाहिए। और वैसे भी कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ हालात होते हैं कि कोई इंसान गलती से कुछ गलती कर लेता है या किसी को गलत समझ बैठता है। तो भाई, ज़िंदगी है, और ज़िंदगी में ना ये उतार चढ़ाव, ये आना जाना, दुख का और परेशानियों का ये लगा रहता है। लेकिन हाँ, आपको अपने विवेक को ना ज़रा सोच समझ के अपने कहे मन को या दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए और एक किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। फिलहाल मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जो संदेश है वो मैं आपके शामिल कर लूँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल, और ये जुड़े हमारे साथ लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। और हमारे साथ ये जुड़े हैं डीके परिहार, भोपालगढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, ईशान चीपा और पूजा परिहार। और ये कह रहे हैं हमारा नंबर अभी तक नहीं लगा है। क्या बात है, आपका नंबर अब लग गया है। राजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये पंजाब से जुड़े हैं। मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा, निवान शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हैं, कह रहे हैं कार्यक्रम अच्छा लग रहा है। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं हीना मणि, हीरा मणि वर्मा और पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखे लाल वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं और कार्यक्रम सुन रहे हैं। दोस्त, अच्छा है कि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। और ज्योति जी, आप रोजाना आया करो, प्रोग्राम प्रस्तुत करने का अंदाज अच्छा लग रहा है। क्या बात है, आपको अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। इनके साथ हैं राजू अग्रवाल, केशव, पंकज, निर्मला और ये हमारे साथ जुड़े हैं हिसार हरियाणा से। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं ये जो दोस्त, कहाँ से जुड़े हैं, ये जुड़े हैं जवाहर नगर दुर्ग से, आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े।

संवारना चाहिए। और हमें एक संदेशा भेजा है, ये लिखते हैं कि हमें इधर की बात उधर करने से बचना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि इधर की बात उधर करने से गड़बड़ होती है और फिर जो रिश्ते हैं वो बिगड़ जाते हैं। ये जो संदेशा हमें भेजा है, ये है डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से, और लिख रहे हैं कार्यक्रम पसंद आ रहा है। सुरन सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े हैं, और इनके साथ जो हमारे साथी हैं वो भी जुड़े हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं एक हमारे और दोस्त, ये हैं दिग्दर्शन और कविता गौड़ मेरठ से जुड़े हैं हमारे साथ, और उत्तम सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। इनके साथ जुड़े हैं मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल और नंदनी जंगेल हमारे साथ जुड़े हैं।

हमारे साथ से जुड़े हैं अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, ऋषिकेश दले और जीविका दले। और उसके अलावा हमारे साथ पुणे से जुड़े हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने और विशाखा सोनवने हमारे साथ जुड़े हैं। और रुपेश संघई महाराष्ट्र से हैं, इनके साथ हैं महेश संघई, प्रज्ञेश, प्रीतेश और पूरा संघई परिवार हमारे साथ जुड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके संदेश जो है वो लगातार आ रहे हैं। फिलहाल इस गीत के

लेवई छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं गुलाब दास मानिकपुरी, राजा दास मानिकपुरी, उज्ज्वल दास मानिकपुरी और साथ ही प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा हमारे साथ जुड़े हैं छत्तीसगढ़ पलानी से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और जो है हमारे दोस्त जुड़े हैं सुदर्शन मुखी, अनिता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से। आप सभी का, सभी सभी दोस्तों का दिल से शुक्रिया। अगर

किसी का संदेशा शामिल नहीं भी हुआ है, तो उनका भी दिल से शुक्रिया कि भाई उन्होंने हमारा संदेशा भेजा और हम उनका शुक्रिया करते हैं हमारे साथ ही बने रहने के लिए। फिलहाल जो घड़ी की सुई है वो इशारा कह रही है कि हमें अब जाना होगा, इस कार्यक्रम से विदा लेनी होगी, लेकिन आपको कहीं जाना नहीं है, आपको जुड़े रहना है हमारे साथ यानी आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। और आपसे ये कहूँगी कि ये जो खूबसूरत से पलों से जो संजोई हुई ज़िंदगी आपको मिली है ना, तो इसको बेहतर बनाने के लिए कोशिश करते रहिए, अपने चेहरे पर मुस्कान बनाइए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और हमारे साथ।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी फरमाइश। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में यानी कि ठीक 11 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ हिस्सा ले रहे हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बैठक में मुख्य रूप से किसानों की आय, रोजगार, आजीविका, कृषि ऋण और बाजार तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा होगी।
1: खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है, भरपूर खाद्यान्न मिले, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन, और किसान की आय भी बढ़े और जीवन स्तर में भी सुधार हो।

0: कृषि व्यापार और सहयोग, ये प्राथमिकता एक दूसरे देश में व्यापार की संभावनाएं भी बढ़े और सहयोग भी बढ़े, आपस में निवेश भी आए, टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान भी हो, बाजार तक पहुंच भी आसान बने एक दूसरे देश में, ताकि मिलकर एक साझा प्रगति को बढ़ावा दे सके।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि तलाशी अभियान में शामिल परिसरों में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय और व्यावसायिक कार्यालय शामिल हैं। विशाखापट्टनम इस्पात संयंत्र आग दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 6 घायल हुए हैं। इस्पात मंत्रालय के अनुसार यह हादसा पिघले हुए इस्पात की ढलाई प्रक्रिया के दौरान हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रूपये और घायलों को 50-50 हजार रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए 1 लाख अमरीकी डॉलर के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती हैं। ईरान और इसराइल ने एक दूसरे के खिलाफ हमले रोकने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष तत्काल संघर्ष विराम और शांति वार्ता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि दोनों देशों ने चेतावनी दी है कि युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर यह प्रक्रिया फिर से बाधित भी हो सकती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच वनडे त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 55 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi today said that the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage, from infrastructure to the digital revolution. Mr. Modi underlined that to realize the resolve of a developed India, the government will continue to move forward relentlessly on this path of service, good governance and prosperity. Prime Minister Narendra Modi has said that through continuous efforts inspired by the ethos of Sabka Saath, Sabka Vikas over the past 12 years, the country is moving towards becoming a strong

दमदार प्रस्तुति अभी आपने सुनी रेशमा की आवाज़ में, और सबरस कार्यक्रम में अगली पेशकश है ये जसवीर सिंह जस्सी की आवाज़ में।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब समय है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। आज हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के श्रृंखला सुर मंजरी में अब हम सुनते हैं राग जोगिया में विदुषी शाश्वती मंडल का गायन।

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे राग जोगिया में विदुषी शाश्वती मंडल का गायन। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरूआत की थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जनकल्याण के लिए समर्पित है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धनशोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और

0: दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। प्रवर्तन निदेशालय ने उनके और उनकी कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर धन शोधन और 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित जीएसटी धोखाधड़ी तथा फर्जी मोबाइल फोन बिक्री का पर्दाफाश किया है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने आगामी श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने H-1B वीजा आवेदनों पर लगाए गए $1,00,000 के शुल्क को अवैध करार दिया है। ये शुल्क राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के तहत प्रस्तावित किया गया था। अदालत ने कहा कि संसद की मंजूरी के बिना ऐसा शुल्क नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका में भारतीय मूल के कई संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। H-1B वीजा के जरिए अमरीकी कंपनियां दुनिया भर के कुशल पेशेवरों को नौकरी देती है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और गृहमंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि धरती आबा का जीवन साहस, आत्मसम्मान और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक था। श्री शाह ने कहा कि आज भी बिरसा मुंडा का धर्मांतरण के विरुद्ध संघर्ष और आदिवासी गौरव के प्रति उनका समर्पण लाखों देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। पुरुष क्रिकेट में आज भारत ए और श्रीलंका ए के बीच एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का पहला मुकाबला श्रीलंका में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 26वें ओवर में 3 विकेट पर 112 रन बना लिए हैं। कप्तान तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज मामूली बढ़त देखी गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 114 अंक बढ़कर 73,668 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi today said the government has spared no effort in empowering the country's youth, women and farmers over the past 12 years. In a social media post, Mr. Modi said, with the blessings of 1.4 billion citizens and the spirit of nation first, the government is dedicated to trust, development and public welfare. The Prime Minister noted that as a result of these tireless efforts, today the country has gained a new identity on the global stage from infrastructure to digital revolution. Health and Family Welfare Minister Jagat Prakash Nadda will launch nationwide celebrations to commemorate 10 years of Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan in New Delhi today. The BRICS Agriculture Conference has commenced in Indore, Madhya Pradesh. Delegates from Brazil, Indonesia, China, Iran, South Africa, the UAE and other member countries are participating in the summit. Agriculture ministers, senior officials and experts from 21 countries are taking part in the summit. Union Home Minister Amit Shah will launch the Land Port Management System in New Delhi today. This initiative reflects the government's commitment to smart border management, aiming to enhance efficiency, transparency and security in cross-border trade and passenger movement through technology-driven solutions. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations for running an organized factory of hate that exploits religious terminology to cultivate permanent hostility towards India among its citizens. India also slammed Islamabad for propagating state-sponsored disinformation.

Her an dedi. घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा यानी प्रतिभा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और हमारे इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमें सुन रहे हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज पर। दोस्तों, हर दिन अपने साथ लेकर आता है एक नई ऊर्जा और साथ ही लेकर आता है नए अनुभव, नई जानकारियाँ और बहुत सारी संभावनाएं भी। तो इन्हीं बातों को आज आपसे

ताजा करने के लिए लेकर आई हूँ आज का घर आंगन कार्यक्रम। तो जुड़े रहिए कार्यक्रम घर आंगन में मेरे साथ यानी कि प्रतिभा के साथ। और हाँ श्रोताओं, हमें इंतजार रहता है आपकी प्रतिक्रियाओं का, क्योंकि आपकी एक सकारात्मक प्रतिक्रिया हमारा मनोबल बढ़ाती है और हमें प्रेरित करती है कि हम कार्यक्रम को आपके लिए और भी बेहतरीन बनाएं। और साथ साथ आज हम उन सभी श्रोताओं का दिल से शुक्रिया अदा करेंगे जो रोज़ हमारे साथ इस कार्यक्रम के जरिए जुड़ते हैं। तो अपने सुझावों और प्रतिक्रियाओं के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। आप हमारा ईमेल आईडी जानते हैं, लेकिन एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारा ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी प्रेम पर्वत। श्रोताओं, आज महान जननायक और आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत बिरसा मुंडा जी की पुण्यतिथि है। उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को वर्तमान झारखंड में हुआ था। उन्होंने अंग्रेजी शासन और शोषण के विरुद्ध आदिवासी समाज को संगठित किया और उल गुलान यानी महाविद्रोह का नेतृत्व किया। बिरसा मुंडा जी ने आदिवासियों को उनके अधिकारों, संस्कृति और स्वाभिमान के प्रति जागरूक किया। उनके संघर्ष से ब्रिटिश सरकार को आदिवासी भूमि और अधिकारों से जुड़े कानूनों में बदलाव करने पड़े। 9 जून 1900 को रांची जेल में मात्र 25 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। उनका जीवन साहस, नेतृत्व और जनसेवा का प्रेरणादायक उदाहरण है। आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं।

मन्ना डे और साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी सफ़र। श्रोताओं, एक कड़ी लगन, मेहनत और सपनों को पा लेने की कोशिश इंसान को आकाश की बुलंदियों पर पहुंचा देती है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि जोश, जज्बा और जुनून में वो किसी से भी कम नहीं हैं। बात करेंगे ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख की, जिन्होंने महिला विश्व चैंपियन में जू वेंजुन को मई 2026 में नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता में हराकर जीत अपने नाम दर्ज की है। दिव्या ने क्लासिकल गेम ड्रॉ रहने के बाद आर्मगेडन टाई ब्रेकर मुकाबले में जू वेंजुन को हराया। श्रोताओं, दिव्या देशमुख का जन्म नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने कम उम्र में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि जब उन्होंने कोनेरू हम्पी को हराकर फिडे वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता, और इसके साथ ही वो महिला शतरंज विश्व कप विजेता बनी और उन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब प्राप्त हुआ। आज दिव्या देशमुख की प्रतिभा और धैर्य के दम पर शीर्ष महिला शतरंज खिलाड़ियों में उनका नाम शामिल है और दिव्या देश की कई महिलाओं के लिए आज एक नई प्रेरणा बन चुकी हैं।

प्रोफेसर, ये था इस फिल्म का नाम जिसका आपने गीत सुना। आवाज़ थी मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। और अब बात करेंगे लखनऊ नगर निगम की उस पहल की जो कि है RRR, यानी रिड्यूस रीयूज रिसाइकल सेंटर। इस सेंटर की शुरुआत मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान के तहत की गई, जिसके माध्यम से अब शहर के नागरिक अपने जो पुराने सामान है, जो उनके घरों का पुराना सामान है, उसको यहाँ दे रहे हैं और एक नया जीवन उसको देने के लिए ये सेंटर खोले गए हैं। जो चीज़ें आपके घरों में उपयोग में नहीं आ रही हैं, जैसे कि कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, किताबें और भी बहुत कुछ, उन्हें पुनः उपयोग करने के लिए यहाँ पर एकत्रित किया जाता है। इस पहल का उद्देश्य कचरा कम करना, संसाधनों को बेहतर इस्तेमाल करना और पर्यावरण की रक्षा है। इस सेंटर में जो सामान आपकी ज़रूरत का नहीं है, यानी जिसका उपयोग आप काफ़ी समय से नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर छोड़कर जा सकते हैं। और अगर आपको यहाँ कुछ अपनी ज़रूरत का सामान दिखता है तो वो आप अपने साथ लेकर भी जा सकते हैं। श्रोताओं, इस सेंटर पर कपड़ा बैंक, इलेक्ट्रॉनिक बैंक, खिलौना बैंक, किताब बैंक, बर्तन बैंक और जूता चप्पल बैंक आदि बनाए गए हैं। और इन बैंकों के जरिए नगर निगम ज़रूरतमंद जो लोग हैं उन तक इन चीज़ों को पहुंचा रहा है और बचे हुए सामान को रिसाइकिल करके उन्हें एक नया रूप भी दे रहा है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक ऐसे 26 सेंटर खोले जा चुके हैं। श्रोताओं, एक सकारात्मक पहल जीवन की दशा और दिशा दोनों ही बदल सकती है। तो इस तरह के प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा है और आज के समय की ज़रूरत भी। तो क्यों ना एक पहल हम सब भी करें।

किशोर कुमार, आशा भोंसले और साथियों की आवाज़ में अभी आपने ये गीत सुना। फिल्म थी पराया धन। श्रोताओं, प्राकृतिक संपदा हम सभी के लिए जीवन है, या यूं कहें कि ये प्रकृति का वरदान है। भूमि, जल, वायु मिलकर एक ऐसे पर्यावरण का निर्माण करते हैं जिसमें जीवन का पोषण होता है, और एक ही भी जो संसाधन है उसकी अगर कमी हो जाए तो इस पर्यावरण का संतुलन बिगड़ सकता है और बिगड़ भी जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये संसाधन सीमित है, ऐसे में ज़रूरत हो जाती है उनके संचयन की, खास करके जल संचयन की, क्योंकि पानी के बिना जीवन की कल्पना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। श्रोताओं, धरती का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है। सिर्फ और सिर्फ 3% पानी मीठा है, यानी कि सिर्फ 3% पानी है जो पीने के लायक है, और इसमें से अधिकतर पानी भी जो है ग्लेशियरों और बर्फ की चोटियों में जमा हुआ है। हमें सजग होना होगा, पानी को बचाकर हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख पाएंगे, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग बेहद खास है। वर्षा जल संचयन एक ऐसी तकनीक है जिसमें बारिश के पानी को बहकर बर्बाद होने से बचाने के लिए इकट्ठा किया जाता है, और इस पानी को साफ करके या सीधे जमीन के अंदर पहुंचाकर भविष्य के उपयोग के लिए सहेजा जाता है।

है। आमतौर पर इसके दो प्रमुख तरीके अपनाए जाते हैं। एक है रूफ टॉप हार्वेस्टिंग, यानी छतों पर जल संचयन। इसमें घर या इमारत की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइपों के जरिए इकट्ठा किया जाता है। और दूसरा है भूजल पुनर्भरण, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इस विधि में छत या खुले मैदान के पानी को पाइप या नालियों के माध्यम से सीधे जमीन में बने सोखता गड्ढे, यानी रिचार्ज पिट में या कुओं में भेजा जाता है, ताकि भूजल स्तर ऊपर उठ सके। साथ ही साथ आज बड़ी बड़ी सोसाइटीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स भी

रूफ टॉप हार्वेस्टिंग यानी छतों पर जल संचयन, इसमें घर या इमारत की छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को पाइपों के जरिए इकट्ठा किया जाता है। और दूसरा है भूजल पुनर्भरण यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज। इस विधि में छत या खुले मैदान के पानी को पाइप या नालियों के माध्यम से सीधे जमीन में बने सोखता गड्ढे यानी रिचार्ज पिट में या कुओं में भेजा जाता है ताकि भूजल स्तर ऊपर उठ सके। साथ ही साथ आज बड़ी बड़ी सोसाइटीज रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स

से आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ राज्यों से होकर गुजरती है। ये लाइन छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले से में स्थित किरंदुल को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से जोड़ती है। श्रोताओं, इस मार्ग में अरकू, कोरापुट जंक्शन, जयपुर और जगदलपुर जैसे महत्वपूर्ण स्टेशन आते हैं और ये विशाखापट्टनम से किरंदुल जाती है और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ स्थित अनंतगिरी पहाड़ियों से गुजरती हुई ये ट्रेन प्राकृतिक नज़ारों का भरपूर आनंद भी देती है। और सबसे खास बात यह है कि इस रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनों में आधुनिक विस्टाडोम कोच भी लगाए गए हैं। और आपको ये भी बता दें कि विस्टाडोम कोच भारतीय रेलवे के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए विशेष पारदर्शी कोच हैं। इनमें पारदर्शी कांच की छतें होती हैं जिसमें यात्री ट्रेन के अंदर बैठे बैठे ही आसमान, पहाड़ों और सुंदर घाटियों का पूरा नज़ारा ले सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि सामान्य कोचों के मुकाबले इनमें चौड़ी और बड़ी खिड़कियां होती हैं जो देती हैं एक अनोखा अनुभव। और साथ ही साथ कोचों की कुर्सियां 180 डिग्री तक घूमती है जिससे आप खिड़की की ओर मुंह करके नज़ारा ले सकते हैं। श्रोताओं, भरपूर आधुनिक सेवाओं से जो लैस ये ट्रेन है, ये अरकू घाटी के बेहद खूबसूरत और दुर्गम इलाकों से गुजरती है और आपको देती है प्राकृतिक नज़ारों, झरनों और 58 सुरंगों और 84 बड़े पुलों और 1187 छोटे पुलों का पूरा आनंद। तो वास्तव में कोटा वलसा किरंदुल लाइन का सफर अपने आप में एक रोमांच भरा और अविस्मरणीय सफर है। तो अगर आप भी कहीं घूमने जाने की योजना बना रहे हैं तो आप इस रेल यात्रा को अपनी आइटनरी में जगह दे सकते हैं।

अजनबी इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे हैं, आवाज है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की। और श्रोताओं, घड़ी ने मुझे इशारा कर दिया है कि मैं अब आपसे लूं इजाजत, तो इस वादे के साथ फिर मुलाकात होगी आपसे किसी और दिन इसी वक्त। तो दीजिए मुझे यानी प्रतिभा को अनुमति। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्री स्तरीय बैठक 13 जून को होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य सुरक्षित गर्भावस्था और मातृत्व को सुनिश्चित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 जून 2016 को इस योजना की शुरुआत की थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वता नेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि ईरान के बंदरगाहों पर अमेरिका की नाकाबंदी बमबारी से कहीं अधिक प्रभावी साबित हुई है। श्री ट्रंप ने कहा कि सीमा पार हालिया मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता आगे बढ़ रही है। आज झारखंड सहित पूरा देश महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन

0: Domestic equity indices were trading around 0.3% up in afternoon trade today. The Sensex advanced 215 points to 73,739, while the Nifty added 80 points to 23,203 when reports last came in. In men's cricket, India A were 210 for 3 in 42.4 overs against Sri Lanka A in the opening match of the Tri-Nation A series at Sri Lanka when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. श्रोताओं, अब चालू है आप सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से. जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट शिल्पा गोस्वामी, और आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही फिल्म से. दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिनेमा के सुनहरे पन्ने सिर्फ और सिर्फ आपके अपने चैनल इंद्रप्रस्थ पर. आज हम बात करेंगे साल 1972 में, जब सिनेमा घरों में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसने एक्शन, इमोशंस, ड्रामा और संगीत का ऐसा कॉकटेल बनाया था कि लोग झूम उठे थे. जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं मनमोहन देसाई के निर्देशन में बनी सुपरहिट फिल्म रामपुर का लक्ष्मण की. और दोस्तों, जब बात इस फिल्म की हो तो पैर खुद ब खुद थिरकने लगते हैं. तो चलिए, जो हमारा शो है उसकी शुरुआत करते हैं किशोरदा की आवाज में इस फिल्म के धमाकेदार टाइटल ट्रैक से.

क्या बात है, पंचमदा का म्यूज़िक, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और किशोर कुमार की जादुई आवाज़। दोस्तों, इस गाने में रणधीर कपूर साहब का वो धोती कुर्ता वाला लुक और लाठी घुमाने का अंदाज़ आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है।

दोस्तों बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य कलाकारों की। फिल्म में लीड रोल में थे पृथ्वीराज कपूर के पोते और राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर, और दोस्तों उनके साथ स्क्रीन शेयर कर रही थी बेहद ही खूबसूरत हीरोइन रेखा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन रुकिए, इस फिल्म की जो जान थे इसके विलन थे, यानी हमारे शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा। उनके अलावा फिल्म में सुलोचना, मनमोहन कृष्णा और रमेश देव जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी अहम भूमिकाएं निभाई थी।

दोस्तों, अब थोड़ा सा रुख करते हैं इस फिल्म की कहानी की तरफ। मनमोहन देसाई की फिल्म की एक खास बात होती थी, यानी बचपन में बिछड़ जाना। ये उनकी कहानी में जरूर होता था। इस फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। विभाजन के वक्त एक ट्रेन हादसे में केदारनाथ भार्गव का परिवार बिखर जाता है। दो भाई राम और लक्ष्मण अलग हो जाते हैं। लक्ष्मण यानी रणधीर कपूर अपने पिता के साथ रामपुर गांव में पलता बढ़ता है। एकदम सीधा साधा भगवान राम का परम

साथियों, इसी ड्रामे के बीच जब रेखा और रणधीर कपूर का रोमांस स्क्रीन पर आता है तो ये भारतीय सिनेमा का इतिहास बन जाता है। और अब सुनते हैं इसी पे दर्शाया ये गीत।

दोस्तों, फिल्म का बेहद मशहूर और भावुक भजन हमने अभी आपको सुनवाया, जिसे फिल्म में सुलोचना जी गाती हैं। और क्या आप जानते हैं कि आर डी बर्मन यानी पंचम दा ने इस गाने की धुन एक मशहूर रशियन कंपोजर सरगेई प्रोकोफिए के लेफ्टिनेंट कीजे सुटेक रोमांच थीम से प्रेरित होकर बनाई थी। जी हाँ, विदेशी धुन को भारतीय भजन में ढालना सिर्फ पंचम दा के ही बस की बात है।

दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा साहब का वो सिगरेट के धुएं का छल्ला उड़ाने वाला स्टाइल इस फिल्म में इतना पॉपुलर हुआ कि लोग सिनेमा घरों में तालियां बजाते नहीं थकते थे। कई लोगों को लगता है कि यह स्टाइल रजनीकांत साहब का है, लेकिन सच यह है कि रजनीकांत ने इंडस्ट्री में आने से पहले शत्रुघ्न सिन्हा के इस अंदाज से काफी प्रेरणा ली थी।

साथियों, इस फिल्म की बम्पर सफलता को देखते हुए साल 1978 में इसका तमिल रीमेक भी बनाया गया था, जिसका नाम था मंगूड़ी माइनर।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। वजीरे आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। दिफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट ज़ोजीला टनल में पेशरफ्त हुई है और वादी कश्मीर नीम लद्दाख के दरमियान फासला कम हो गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे होने के मौके पर आज नई दिल्ली में मुल्की सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। और मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के शहर दम्बोला में 3 मुल्कों की ए सीरीज का पहला मैच भारत ए और श्रीलंका ए के दरमियान जारी है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 साल में मुल्क के नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि 140 करोड़ शहरियों के आशीर्वाद और मुल्क मुकद्दम के जज्बे के साथ सरकार एतमाद, तरक्की और अवाम के बहबूद के तहत अहदबस्ता है। वजीर आजम ने कहा कि इन अनथक कोशिशों के नतीजे में आज मुल्क ने बुनियादी ढांचे से लेकर डिजिटल इनकलाब तक आलमी मंजरनामे पर एक नई पहचान बनाई है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि तरक्की याफ्ता भारत के अज़्म को हकीकत की शक्ल देने के लिए सरकार खिदमत, अच्छी हुक्मरानी और खुशहाली के इस रास्ते पर लगातार आगे बढ़ती रहेगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट निजाम का आगाज करेंगे। इस पहल से स्मार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट के तहत सरकार के अहद की अक्कासी होती है। इसका मकसद तकनीक का इस्तेमाल करते हुए सरहदी तिजारत और मुसाफिरों की नकल व हरकत के शोबे में सलाहियत, शफाफियत और सिक्योरिटी को बढ़ाना है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज एक जदीद तर्ज के तकनीक पर मबनी सरहदी बंदोबस्त निजाम की सम्त एक तारीखी कदम होगा। उमूर दाखिला की वजारत ने कहा है कि ये प्लेटफॉर्म तिजारत में सहूलत, कनेक्टिविटी, कौमी सिक्योरिटी और 2047 तक विकसित भारत के नजरिए के ऐन मुताबिक है। लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम मुख्तलिफ लैंड पोर्ट्स में काम काज को एक मुत्तहिदा निजाम में मरबूत करने के लिए तैयार किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके जरिए महफूज और लॉजिस्टिक के बर वक्त तबादले

इंजिबाती जानकारी फराहम करने में सहूलत होगी। इस तरह हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर पहले से काम करने वाले डिजिटल निजाम के साथ लैंड पोर्ट्स को हम आहंग किया जा सकेगा। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान पर इस बात के लिए नुक्ताचीनी की है कि वो नफरत का एक मुनज्जम निजाम चला रहा है, जिसके जरिए वो अपने शहरियों में भारत के तई मुस्तकिल दुश्मनी पैदा करने की खातिर मजहबी इस्तलाहात का बेजा इस्तेमाल करता है। भारत ने पाकिस्तान की जानिब से अपने इलाके में सरगम मिलिटेंट ग्रुप को फितनउल हिन्दुस्तान का नाम देकर सरकार की शह पर गलत बातें फैलाने की बिना पर भी पाकिस्तान को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अक्वामे मुत्तहदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे परवेज नैनी हरीश ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान इस तरह सिर्फ अपनी नाकामियों को नई दिल्ली पर डालने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की सियासी निजाम और सरकार चलाने में उसके फौजी बढ़ते हुए सरकर्दा रोल पर अफसोस का इजहार करते हुए हालिया आईनी तरामीम का जिक्र किया और कहा कि इससे साफ जाहिर हो जाता है कि सिविलियन हुकाम पर पाकिस्तान की फौज की बालादस्ती बढ़ती जा रही है। भारत ने पाकिस्तान के सरहद पार की फौजी सरगर्मी की मजम्मत की और कहा कि अफगानिस्तान में हवाई हमलों से होने वाली कसीर गैर फौजी अमवात के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है। बैनुल अक्वामी ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में शुरू हो गई है। इसमें 21 मुल्कों के वज़राए ज़राअत आला ओहदेदार और माहिरीन शिरकत कर रहे हैं। इनमें ब्राजील, चीन, रूस और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। ये कॉन्फ्रेंस 13 जून तक जारी रहेगी। आज मुख्तलिफ मौजूआत पर कई इजलास हो रहे हैं। अहम मौजूआत में खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई इख्तरा, आबो हवा के लिए साजगार खेती, ज़रई तिजारत और छोटे किसानों को बाइख्तियार बनाना शामिल है। जुमे को ज़राअत के वजीरों के माबैन खुसूसी मुज़ाकरात होंगे, जिसमें छोटे किसानों, ख़वातीन और नौजवानों के जरिए खुराक की यकीनी फराहमी पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। हफ्ते के दिन ब्रिक्स मुल्कों के वजीरों की मीटिंग होगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। दफाई एतबार से अहम प्रोजेक्ट जोजिला टनल में आज एक अहम पेशरफ्त हुई है, जिसकी वजह से वादी कश्मीर और लद्दाख के दरमियान सभी मौसमों में आमदोरफ्त वाली सड़क से फासला काफी कम हो गया है। इस तरह 10 साल से जारी ये ख्वाब पूरा हो गया है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर इस पेशरफ्त का आगाज किया। ये तकरीब लद्दाख में मिनीमर्ग में टनल के मशरकी पोर्टल के करीब मुनाकिद की गई। जोजिला टनल मुल्क की दफाई एतबार से सबसे अहम सड़कों में से एक है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट दिल्ली एनसीआर उत्तर प्रदेश और पंजाब में छह जगहों पर काले धन को जायज बनाने के मामले में तलाश की कार्रवाइयां अंजाम दे रहा है। इस मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड मुलविस है, जो पंजाब में लुधियाना, जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली और दिल्ली नोएडा खित्ते में ये तलाशियां की ली जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हुक्काम के मुताबिक हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वाबस्ता अफराद की कारोबारी दफातर और घरों पर ये छापे मारे जा रहे हैं। इस मामले का ताल्लुक आम आदमी पार्टी के रहनुमा और पंजाब के वजीर संजीव अरोड़ा से है। डायरेक्टोरेट के मुताबिक 1 अरब रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन पर फर्जी GST दिखाई गई। बाद में इस माल को बरामदी माल दिखाकर मुबैना तौर पर नाजायज रकम को दुबई से भारत मुंतकिल किया गया। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि मुल्क की खारजा पॉलिसी में पिछले 12 साल के दौरान काफी ज्यादा तब्दीली आई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इस दौरान हुकूमत ने आम शहरियों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजात की तस्दीक करने की बिला रुकावट सहूलियात फराहम की हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने शिकायतों को दूर करने और शहरियों की राय हासिल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का आगाज किया है और किसी तरह की परेशानी की सूरत में मौसर कार्रवाई की है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आलमी सतह पर काम की जगहों के लिए भारतीय शहरियों को रसाई फराहम की है और भारतीय ताजिरों को बैरून मुल्क मार्केट तक रसाई हासिल करने में मदद दी है। उन्होंने ये भी कहा कि इन इकदामात से बरामदात में इजाफा करने में मदद मिली है और भारतीय मसनूआत नीज खिदमात को नई मार्केट तक पहुंचाने में सहूलत फराहम हुई है। बाकी मुल्क की तरह झारखंड में भी आज अजीम मुजाहिद आजादी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा को उनकी बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है।
گورنر، وزیر اعلی، وزراء اور کئی دیگر شخص

शख्सियात ने रांची में कोकर समाधि स्थल जाकर उनकी गुलहाय अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरी और वजीर आजम समेत बहुत से रहनुमाओं ने भगवान बिरसा मुंडा को खिराज अकीदत पेश किया है। उनकी शहादत के दिन के मौके पर खिराज अकीदत पेश करते हुए नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा जुरत, शुजात और खुददारी की अलामत थे और वो इंसाफ में गैर मुतजलजल यकीन रखते थे। मर्दों के क्रिकेट में श्रीलंका के रंगगिरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज के इब्तदाई मैच में भारतीय टीम ए श्रीलंका टीम ए के साथ जीत के लिए 278 रन का निशाना रखा है। भारतीय टीम की टीम 6 विकेट पर 277 रन बनाकर आउट हो गई। इससे पहले भारतीय टीम ए के स्कीपर तिलक वर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने पिछले 12 साल में नौजवानों, खवातीन और किसानों को बाइख्तियार बनाने में कोई कोशिश बाकी नहीं रखी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट बंदोबस्त निजाम का आगाज करेंगे। भारत ने अक्वामे मुत्तहदा में पाकिस्तान की सरजनिश की है और उसे नफरत की एक फैक्ट्री करार दिया है। ब्रिक्स के वज़राए ज़राअत की 5 रोजा मीटिंग इंदौर में शुरू हो गई है, जिसका मकसद ज़राअत के शोबे में आलमी मामलात पर मुज़ाकरात करना है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: Benchmark domestic equity indices were trading around 0.4% up in afternoon trade today. The Sensex rose 267 points to 73,791, while the Nifty added 86 points to 23,209 when reports last came in. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index was trading 0.9% higher, while the small-cap 100 index jumped over 1% a short while ago. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says government empowered youth, women and farmers in the last 12 years. India hits out at Pakistan in the United Nations, calls it factory of hate. 5-day BRICS agriculture ministers meeting begins in Indore to focus on food security and empowerment of farmers. Strategic road project Zojila Tunnel achieves final breakthrough, bringing all-weather connectivity between Kashmir Valley and Ladakh closer to reality. Pradhan Mantri Surakshit Matritva Abhiyan completes 10 years, nationwide celebrations to begin from today. IMD issues red alert for heavy rainfall over Karnataka, Kerala and Mahe, also predicts heat wave conditions over Delhi, Punjab, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Ladakh, Uttar Pradesh, Vidarbha and West Rajasthan. And in men's cricket, India A set target of 278 runs against Sri Lanka A in Tri-Nation A series and Dambulla, Sri Lanka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे, राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। कर्नाटक, केरल और माहे में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, विदर्भ और पश्चिमी राजस्थान में लू का अनुमान। और पुरुष क्रिकेट में दांबुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व ने पिछले 12 वर्षों में सेवा भावना के माध्यम से शासन को नया रूप दिया है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने आम नागरिकों के लिए पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेजों के सत्यापन को सुगम बनाया है और नागरिकों को पूरा सहयोग प्रदान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन वर्ष 2024 को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। अपने तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार, सामाजिक कल्याण, रोजगार सृजन और वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को मजबूत करने जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रही है। गृहमंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में भूमिपत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित समाधानों के माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। ये पहल स्मार्ट सीमा प्रबंधन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है।

0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा है। भारत ने पाकिस्तान के सीमा पार सैन्य अभियानों की निंदा की और अफगानिस्तान में हवाई हमलों के कारण हुई मौतों के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है।
1: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देशों पर मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी प्रवृत्ति रही है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गया है। सम्मेलन में ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका सहित 21 देशों के कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल हैं। इसमें खाद्य सुरक्षा, जलवायु अनुकूल खेती, कृषि नवाचार, कृषि व्यापार और छोटे किसानों के सशक्तिकरण जैसे कई सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। कृषि मंत्रियों के बीच एक विशेष संवाद 12 जून को आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स देशों की मंत्रिस्तरीय बैठक 13 जून को होगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनमर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर तथा लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का एक ऐतिहासिक क्षण बताया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोहों का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान ने देश भर में मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ही के दिन 2016 में इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य सभी गर्भवती महिलाओं को मुफ्त, सुरक्षित और बेहतर प्रसव पूर्व स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, जोखिमों की समय पर पहचान और आवश्यक इलाज की सुविधा दी जाती है, ताकि माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। इस योजना के तहत अब तक 7,50,00,000 से अधिक गर्भवती महिलाएं लाभ उठा चुकी हैं। सरकार के लगातार प्रयासों के कारण भारत में मातृ मृत्यु दर में काफी कमी आई है। 2014-16 में जहां हर 1,00,000 प्रसव पर 130 महिलाओं की मृत्यु होती थी, वह 2022-24 में घटकर 87 रह गई है। इस योजना के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 रूपए का एक स्मारक सिक्का और 5 रूपए का एक विशेष डाक टिकट भी जारी किए जाएंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े धन शोधन मामले में पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर में 6 स्थानों पर छापेमारी की। इसमें पंजाब के लुधियाना और जालंधर, उत्तर प्रदेश में बरेली तथा दिल्ली एनसीआर क्षेत्र शामिल हैं। निदेशालय ने बताया कि हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं के आवासीय तथा व्यावसायिक कार्यालय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया। ये मामला आम आदमी पार्टी के नेता और पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ा हुआ है। सरकारी ई मार्केटप्लेस जेम ने सार्वजनिक खरीद को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिहिर कुमार ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में पारदर्शिता, प्रौद्योगिकी, समावेशन और नागरिक केंद्रित सेवा वितरण के बल पर भारत ने ये उल्लेखनीय

0: वृद्धि की है। श्री कुमार ने कहा कि जेम पर भाग लेने वाले सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 2016-17 में लगभग 2300 से बढ़कर आज लगभग 12 लाख हो गई है। जम्मू कश्मीर के शीर्ष अधिकारियों ने श्री अमरनाथ जी यात्रा के सुचारू और सफल संचालन के लिए व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार और जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती ने कल रामबन जिले का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पश्चिम एशिया में ईरान और इसराइल के बीच तनाव कम हुआ है, प्रत्यक्ष झड़पों में भी कमी आई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम एशिया में पिछले कुछ दिनों से जारी ईरान इसराइल सैन्य तनाव के बाद फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील लेकिन अपेक्षाकृत शांत बनी हुई है। तनाव की शुरुआत बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इसराइल की कार्रवाई से हुई। इसके बाद ईरान की ओर से उत्तरी इसराइल की दिशा में मिसाइलें दागी गईं। जवाब में इसराइल ने ईरान समर्थित ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं और गहरा गईं। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान से जुड़ा मोर्चा फिलहाल नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी नए हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान का कहना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति और तनाव में कमी तभी संभव है जब गाजा और लेबनान में इसराइली सैन्य अभियान समाप्त किए जाएंगे। इस बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि स्थिति को स्थिर रखने और व्यापक समझौते की दिशा में चल रही वार्ताएं निर्णायक दौर में पहुंच रही हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के साथ एक मजबूत और शक्तिशाली समझौते के बेहद करीब है। उन्होंने कहा कि हालिया सीमा पार मिसाइल हमलों के बावजूद द्विपक्षीय वार्ता अभी भी आगे बढ़ रही है।
2: हम एक मजबूत और प्रभावी समझौते के बेहद करीब हैं। यदि बमबारी की जाती है तो बड़ी संख्या में लोगों की जान जा सकती है और ऐसा कौन चाहेगा। हमारा प्रयास है कि एक ऐसा औपचारिक समझौता हो जो सैन्य कार्रवाई से भी अधिक प्रभावी साबित हो। अब तक यह देखा गया है कि नाकाबंदी का असर बमबारी की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली रहा है, इसलिए हम शांतिपूर्ण और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता दे रहे हैं।
0: कोलंबो उच्च न्यायालय ने श्रीलंका के पूर्व उपमंत्री सरना गुणवर्धना को भ्रष्टाचार के आरोप में दोषी ठहराया है। ये आरोप 2006 में विकास लॉटरी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान किराए पर वाहन खरीदने से संबंधित है। यह फैसला उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद मिहाइल ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने वाले आयोग द्वारा दायर एक मामले में सुनाया है। फिलीपींस में कल दक्षिणी क्षेत्र के तट के पास आए 7.8 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से मृतकों की संख्या 37 हो गई है। भूकंप में 500 से अधिक लोग घायल हुए हैं जबकि 4 लोग लापता हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। भूकंप के कारण 20,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। भूकंप का केंद्र फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप के तट से दूर था। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.4% की बढ़त दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 267 अंक बढ़कर 73,791 और निफ्टी 86 अंक बढ़कर 23,209 पर था। पूरा देश आज महान स्वतंत्रता सेनानी और धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक ऐसा नाम जिसने जल जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। हम बात कर रहे हैं धरती आबा यानी भगवान बिरसा मुंडा की। उन्होंने न सिर्फ अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों का पुरजोर विरोध किया बल्कि समाज में फैल रहे धर्मांतरण और लाल फीताशाही के खिलाफ भी बिगुल फूंका। आज सुबह से ही रांची के कोकर समाधि स्थल और बिरसा चौक पर श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के तमाम मंत्रियों और गणमान्य नेताओं ने यहां पहुंचकर भगवान बिरसा के चरणों में माल्यार्पण किया है। रांची के अलावा उनके जन्म स्थान खूंटी के उलिहातू सहित राज्य भर के जनजातीय बहुल इलाकों में विशेष सांस्कृतिक और जागरूकता सभाएं आयोजित की जा रही हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम और माहे

0: राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जा रहा है। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 277 रन बनाए हैं। भारत के लिए ऋतुराज गायकवाड़ के शतक और तिलक वर्मा के 150 रनों की साझेदारी ने भारत को महत्वपूर्ण भूमिका दिलाने की मदद की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 12 वर्षों में युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को नफरत की फैक्ट्री बताया। खाद्य सुरक्षा और किसानों के सशक्तिकरण के लिए इंदौर में 5 दिन के ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक शुरू। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण पूरा। कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल पूरे। राष्ट्रव्यापी समारोह आज से शुरू होंगे। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। कार्यक्रम के साथ मैं अर्चना गोयल, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे संगीतकार की कहानी जिनका नाम शायद हर श्रोताओं की जुबान पर ना हो, लेकिन उनकी धुनें आज भी दिलों में बसती हैं। वो संगीतकार जिन्होंने संगीत को केवल मनोरंजन नहीं माना बल्कि उसे भावनाओं की भाषा बनाया। आज बात होगी सिनेमा के उस संगीतकार की जिनकी धुनों में शास्त्रीयता, लोक संगीत और भावनाओं की गहराई एक साथ सुनाई देती है। आज बात होगी वसंत देसाई की जिनकी रचनाओं में भारतीयता की

वसंत देसाई का जन्म 9 जून 1912 को हुआ। बचपन से ही संगीत और कला की ओर उनका झुकाव था। शुरुआती दिनों में उन्होंने अभिनय में भी हाथ आजमाया, लेकिन उनकी असली पहचान बनी संगीत। उनका सफर जुड़ा भारतीय सिनेमा के शुरुआती दौर के प्रतिष्ठित बैनर प्रभात फिल्म कंपनी से। यहाँ उन्होंने काम करते हुए संगीत की बारीकियाँ सीखी और धीरे धीरे अपनी अलग पहचान बनाई। वसंत देसाई मानते थे कि संगीत केवल धुन नहीं, एक अनुभव है।

दोस्तों, आपको बता दें कि वसंत देसाई के संगीत की सबसे बड़ी खासियत थी भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहरी समझ। उन्होंने कभी भी केवल लोकप्रियता के लिए संगीत नहीं बनाया, उनकी धुनों में लोक रंग, शास्त्रीयता और भावनात्मक गहराई साफ सुनाई देती है। उनका संगीत कई फिल्मों में दर्शकों को सुनने और महसूस करने दोनों का अवसर देता था। उनकी चर्चित फिल्मों में शामिल हैं गुड्डी, झनक झनक पायलबाजी, दो आंखें बारह हाथ, संपूर्ण रामायण, गूंज उठी शहनाई, आशीर्वाद, अमर ज्योति जैसी फिल्में। इन फिल्मों में संगीत कहानी का हिस्सा बन जाता था।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार और आपके साथ मैं हूं आज अर्चना गोयल। कहा जाता है कि वसंत देसाई किसी भी गीत को रिकॉर्ड करने से पहले उसके भाव को बहुत महत्व देते थे। दो आंखें बारह हाथ का गीत ऐ मालिक तेरे बंदे हम आज भी प्रार्थना गीत के रूप में गाया जाता है। ये सिर्फ गीत नहीं एक संदेश बन गया। वहीं झनक झनक पायलबाजी में उन्होंने शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय सिनेमा के साथ इस कदर जोड़ा कि दर्शकों को लगा कि जैसे वो कोई संगीत समारोह सुन रहे हों। उनकी रचनाओं में भारतीय वाद्यों का प्रयोग बेहद संतुलित होता था। वो उन कलाकारों में थे जिन्होंने ये साबित किया कि संगीत की उम्र नहीं होती। उन्होंने ऐसे दौर में काम किया जब फिल्मों में संगीत तेजी से बदल रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी मौलिकता नहीं छोड़ी। उनकी धुनें आज भी संगीत प्रेमियों और सीखने वालों के लिए प्रेरणा है। उनका संगीत हमें याद दिलाता है कि सादगी भी गहरी हो सकती है।

मुसहर देसाई ने वी शांताराम की कई फिल्मों में संगीत दिया। 50 के दौर के बाद दोनों में कुछ खटास आ गई। उसके बाद उन्होंने साथ में कभी काम नहीं किया। वाणी जयराम के साथ फिल्म गुट्टी का गीत बोले रे पपिहरा भी काफ़ी मशहूर हुआ। उन्होंने कई मराठी फिल्मों में संगीत दिया जो काफ़ी पसंद किया गया, जिनमें अमर भोपाली, श्यामची आई, लक्ष्मण रेखा, छोटा जवान मुख्य फिल्में रहीं। 1940 के दशक में उन्होंने अपनी शुरुआत प्रभात फिल्म कंपनी से की, जिसमें उन्होंने गाया और गीतों की रचना की और एक्ट भी किया। ये फिल्म थी धर्मात्मा और संत ध्यानेश्वर। 22 दिसंबर 1975 को मात्र 63 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।

तो श्रोताओं, आज हमने जाना उस संगीत साधक को जिसने सुरों को पूजा की तरह जिया। बसंत देसाई भले ही आज हमारे बीच नहीं, लेकिन उनकी धुनें आज भी हमारे साथ हैं। हर पल उस पल में जब कोई गीत दिल को छू जाए, इसी भावना के साथ अब मैं अर्चना गोयल आपसे विदा लेती हूँ। सुनते हैं उनकी अमर रचनाओं में से।

हम आकाशवाणी दिल्ली के हिंदी प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज और डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। राम तेरी गंगा मैली फिल्म में यह आवाज़ है लता मंगेशकर की।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए आप सुनते हैं जांबाज फिल्म का ये दो गाना, आवाजें सपना और महेश की।

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी दिल्ली केंद्र प्रस्तुत चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366.3 मीटर पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस।
1: उर्दू मजलिस के सामईन की खिदमत में शाहनवाज हाशमी का पुरखलूस आदाब। सामईन, हम लेकर हाजिर हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम बज़्म ख्वातीन। सामईन, हम हमेशा अपने दिल की बात कहने के लिए अल्फाज के जंगल में उलझ जाते हैं। हम जो कहना चाहते हैं कहकर भी एक खला महसूस करते हैं कि शायद इससे भी अच्छा अंदाज हो सकता था, या हम जो कहना चाहते हैं कह नहीं पाए, या किसी और तरीके से कहना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो खुदा ने हर मर्ज का इलाज इसी दुनिया में रखा है और शायर इस परेशानी का हल तलाश करने में कामयाब नज़र आते हैं। वो दो लफ्ज़ों में वो बात कह जाते हैं जिसके लिए पूरी एक बयाज भी कम पड़ जाए। जैसा कि गालिब ने कहा था कि मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, उसी को देख कर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो ये कमाल शायर का है कि शायर बात भी कह देता है, यानी कि बात भी हो गई और शिकायत भी रह गई और अपना काम भी हो गया। तो सामईन कराम, इसी तरह हमारे जज्बात और एहसासात का इजहार ख्वातीन ने भी बेहतर तरीके से किया है। ख्वातीन शायरा कहती हैं कि कूबकू फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीराई की। कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। और इसी गज़ल का आखिरी शेर है कि अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, अब भी बरसात की रातों में बदन टूटता है, जाग उठती है अब ख्वाहिश अंगराई की। तो ऐसे एहसासात और ऐसे जज्बात की अक्कासी लफ्ज़ों में करने का हुनर अगर किसी को आता है तो वो शायरों को आता है। मर्द हजरात शायरी की दुनिया में अपना सिक्का मनवा चुके हैं, वहीं ख्वातीन भी शायरी की दुनिया में अपनी शिनाख्त आप रखती हैं। तो सामीन, आज हमने बज़्म ख्वातीन के तहत मुशायरे की महफिल आरास्ता की है। आज इस महफिल की रौनक हैं मोहतरमा फरहीन शकील, मोहतरमा फहमीना अली, मोहतरमा मरियम मुख्तार, और निज़ामत के फ़राइज अंजाम दे रही हैं मोहतरमा मारिया मुजफ़्फ़र। तो सामीन इकराम, लीजिए समात कीजिए ये मुशायरा।
2: इस मुशायरे में मैं मारिया मुजफ्फर आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आज का मुशायरा शायरात का मुशायरा है और इस खास मुशायरे में जो शायरात शिरकत कर रही हैं वो हैं फरहीन शकील जो सहर तखल्लुस करती हैं, फहमीना अली, मरियम मुख्तार और मारिया मुजफ्फर। साथिया ला जामे मैं दरपेश है जंगे सुखन, साकिया ला जामे मैं दरपेश है जंगे सुखन, है बजा तेरे जबां पर आज होना आपका। आज का मुशायरा शुरू करते हैं फरहीन शकील से।
3: आदाब सामेन, एक गजल पेश खिदमत है। मिल गई दिल को रिहाई हिजर की जंजीर से, मिल गई दिल को रिहाई हिजर की जंजीर से, आ गए हैं वो अगरचे आए हैं ताखीर से। मैंने सोचा था किसी पर खुल न पाएंगे मगर, मैंने सोचा था किसी पर खुल न पाएंगे मगर, राज मेरे खुल गए हैं सब मेरी तहरीर से। और शेर है, घर मिला कुछ को किसी को माल और दौलत मिल गई, घर मिला कुछ को किसी को माल और दौलत मिल गई, मेरे सर दस्तार आई बाप की जागीर से। एक सबक हमने पढ़ा है इश्क की तफसीर का, एक सबक हमने पढ़ा है इश्क की तफसीर का, गालिबो सौदाओ मोमिन और दर्दो मीर से, गालिबो सौदाओ मोमिन और दर्दो मीर से।

0: और शेर है, जिससे मिलना ही नहीं था उससे मिलना क्यों लिखा, जिससे मिलना ही नहीं था उससे मिलना क्यों लिखा, बस यही शिकवा मुझे है कातिबे तकदीर से, और हर कोई गिरिया कुना है देख कर रोना मेरा, हर कोई गिरिया कुना है देख कर रोना मेरा, हर तरफ है दर्द मेरे दर्द की तासीर से। और मकता है, किरचियाँ इतनी हुई हैं मेरे ख्वाबों की सहर, किरचियाँ इतनी हुई हैं मेरे ख्वाबों की सहर, खून रिश्ता है मुसलसल इस दिले नखचीर से, खून रिश्ता है मुसलसल इस दिले नखचीर से। एक और गज़ल के चंद अशआर पेश खिदमत हैं, इसीलिए तुम्हारा मुझसे रब्त पेशो पस का है, इसीलिए तुम्हारा मुझसे रब्त पेशो पस का है, कि रूह कल्ब का नहीं मामला हवस का है, कि रूह कल्ब का नहीं मामला हवस का है, और है चांद चांद जब तलक है जब तलक पहुँच से दूर, है चांद चांद जब तलक है जब तलक पहुँच से दूर, वो इश्क जिसको कह रहे हैं खेल दस्तरस का है।
1: क्या बात है।
0: और तू जिंदगी की इब्तिदा तू जिंदगी की इंतहा, तू जिंदगी की इब्तिदा तू जिंदगी की इंतहा, तू धड़कनों की रागिनी तू विर्द हर नफस का है। तुम्हारा गम भी बढ़ रहा है जैसे आदमी की उम्र, तुम्हारा गम भी बढ़ रहा है जैसे आदमी की उम्र, ये आज सात रोज एक माह दो बरस का है, ये आज सात रोज एक माह दो बरस का है। न मैं कंवल न नस्तरन न जाफरान न गुल बदन, न मैं कंवल न नस्तरन न जाफरान न गुल बदन, मेरा वजूद तो सरापा खाक व खार व खस का है, मेरा वजूद तो सरापा खाक व खार व खस का है। तुम एक बहर बेकरा हो तुम नसीमे सुबह दम, तुम एक बहर बेकरा हो तुम नसीमे सुबह दम, तुम्हें समेट ले सहर ये काम किसके बस का है। एक और गजल से चंद अशआर, हमारे साथ भी रहते हैं यूं हमारे दोस्त, हमारे साथ भी रहते हैं यूं हमारे दोस्त, फलक पे चांद के जैसे हैं ये सितारे दोस्त, फलक पे चांद के जैसे हैं ये सितारे दोस्त, तुम्हारी याद दिलाते हैं दिल जलाते हैं, तुम्हारी याद दिलाते हैं दिल जलाते हैं, हमारे सामने आते हैं जब तुम्हारे दोस्त।
1: क्या बात।
0: और जमी पे सच्ची मोहब्बत की जब कमी पाई, जमी पे सच्ची मोहब्बत की जब कमी पाई, खुदा ने अर्श से दुनिया में तब उतारे दोस्त, और हमारा मिलना किसी तौर भी नहीं मुमकिन, हमारा मिलना किसी तौर भी नहीं मुमकिन, हम एक नदी के हैं दो मुख्तलिफ किनारे दोस्त, हो कारगाहे जमाना या कार उल्फत हो, हो कारगाहे जमाना या कार उल्फत हो, हमारे बख्त में आए हैं बस खसारे दोस्त। और मिला न कोई भी जब अपना गम सुनाने को, मिला न कोई भी जब अपना गम सुनाने को, तो मेरे पास चले आए गम के मारे दोस्त। और शेर है कि तुम ही को देख के आते हैं मेरे शेरों में, तुम ही को देख के आते हैं मेरे शेरों में, वफाओ उन्स व मोहब्बत के इस्तियारे दोस्त। और मकता है, सहर ये कोई सिला है तुम्हारी नेकी का, सहर ये कोई सिला है तुम्हारी नेकी का, जो तुमने पाए हैं दुनिया में इतने प्यारे दोस्त। एक और गजल से चंद अशआर, मुश्किल है जिधर जाना उधर जाने की जिद है, मुश्किल है जिधर जाना उधर जाने की जिद है, मुश्किल है जिधर जाना उधर जाने की जिद है, रास्ता है न मंजिल है मगर जाने की जिद है। ये लोग बजिद हैं कि रहूं अपनी हदों में, ये लोग बजिद हैं कि रहूं अपनी हदों में, और मुझको मेरी हद से गुजर जाने की जिद है। और शेर है कि मैं हूं कि उसे सर पे बिठाने पे मुसिर हूं, मैं हूं कि उसे सर पे बिठाने पे मुसिर हूं, वो है कि उसे दिल से उतर जाने की जिद है। शेर है कि सांसें हैं कि चलती ही चली जाती हैं पैहम, सांसें हैं कि चलती ही चली जाती हैं पैहम, और दिल को इसी लम्हा ठहर जाने की जिद है। और शेर है कि बुतखाना हो मस्जिद हो हरम हो या कलीसा, बुतखाना हो मस्जिद हो हरम हो या कलीसा, जाने दो मुझे मुझको अगर जाने की जिद है।
1: क्या बात है।
0: और मकता है कि ये कौन सी मंजिल है सहर यास व अलम की,

0: ये कौन सी मंजिल है सहर यासो अलम की, ख्वाबों को मेरे खुद ही बिखर जाने की जिद है, ख्वाबों को मेरे खुद ही बिखर जाने की जिद है। बहुत शुक्रिया।
1: बहुत खूब, बहुत खूब। अभी आप फरहीन शकील साहिबा को सुन रहे थे। सामईन, अपने आप को मधु करने का कोई तरीका अब तक मेरी समझ में नहीं आया। क्योंकि आप हमतन गोश हैं, इसलिए मैं इसी को दावत सुखन समझकर कुछ नज़में आपकी समातों की नज़र करती हूँ। नज़्म का उन्वान है आखिरत। किसी रोज़ जब इस ज़मी के सहारे बनी सब फसीलें गिरा दी गई हों, ये दुनिया और इसमें बसे सब ज़माने किसी एक नुक्ते पे आकर रुके हों, वो जब एक कालीन मसावात गम का अज़ल से अबद तक बिछाया गया हो, जहाँ भर के अफराद आला में हु को हवा में उठाए लिए फिर रहे हों, उसी रोज़ कुदरत ज़मी से फलक तक की राहों के पर्दे समेटे चलेगी, जो दुनिया इफ़ानी में महताब चेहरे कदम को बढ़ाए चले जा रहे हों, उन्हीं के कदम से कदम को मिलाए वो फितरत का प्याला पिलाती चलेगी। सभी दिल की धड़कन के अदना सिपाही की जहदे मुसलसल को रुखसत करेंगे, वो दारे फना की हकीकत समझकर वफा की अदालत की जानिब बढ़ेंगे, वहाँ हर तरफ अपने गुजरे ज़मानों की कब्रों के कतबे बहसरत पढ़ेंगे, वो सब लोग जिनके ज़मीरों ने अब तक मुरव्वत के जीने उतर कर हों देखे, किसी की खिरद के इहाते में अक्सर कई तीरों खंजर कई शरहों फेंके, खुदा की खुदाई के नगमे सुनाकर खुदा की रफाकत को ढूंढा करेंगे, जहाँ ज़ादे अफजल ने जिस रब के बंदों को जी के अजाबों में कस कर लपेटा, वहाँ पर नदामत के परचम तले वो उसी रब की रहमत को मांगा करेंगे। एक और नज़्म आपकी समातों की नज़र। नज़्म का उन्वान है मेरी राहों के अब तुम मुसाफिर नहीं, तुम जो अनजान राहों में बेनाम लोगों से, दिन के उजाले में रातों के मेलों में, तपती दोपहरी की छाओं के ढेरों में, सावन की झीलों के बहते जजीरों में, तदबीरें मिलने की करते हो यूं करते हो क्यों, तुमसे मिलना किसी की ज़रूरत नहीं, तुम किसी के मसीहा कभी भी नहीं, तुम के मगरूर अपनी हकीकत पे हो, तुमको महबूब व माशूक मैंने किया, रेत हस्ती का टीला तभी तो सजा, जब ये टीला सजा मैं बिखर सा गया, तुमने मुझसे कहा तुम कहीं के खुदा, तुम कहाँ के खुदा, चील कव्वों से बदतर वो गिद्ध ठहरे तुम, मेरी सांसों के थमने के मुश्ताक हो, मेरे कदमों की आहट पे हैरान हो, मेरी आहट सुनो अब भी जिंदा हूँ मैं, तुम जो नूरानी चेहरों पे मरते हो यूं, उनके मीठे सुरों में उलझते हो यूं, जाओ अब से तुम्हारे वही रहनुमा, जाओ मैंने तुम्हें कर दिया है विदा, फिर जो सोचो कभी जिंदगी ना मिली, उनकी आवाज में रहबरी ना मिली, झील आंखों में अपनी छवि ना मिली, मेरी चाहत मेरी आजिजी ना मिली, और चाहो कभी इस तरफ लौटना, और चाहो कभी इस तरफ लौटना, मेरी टूटी जबां की यही हो सदा, तुम लरजते रहो आहें भरते रहो, आहें भर भर के मरते रहो, मेरी राहों के अब तुम मुसाफिर नहीं।
2: बहुत खूब।
1: एक नज़्म जिसका उन्वान है प्यार का मज़ार। मोहब्बतों के खेल में मोहब्बतों के देवता ने मुझसे खेल खेल कर हरा दिया संवार कर, मुझे नहीं खबर मिली कि मेरे दिल की आह जो मेरे ही दिल को आ लगी, तो क्यों लगी कहाँ लगी, मुझे मेरे वजूद से जो एक ज़रा भी प्यार हो, तो फिर इसी वजूद में उसे करूँ तलाश क्यों, ये अश्क हैं मेरे अगर तो मुझसे फिर दगा किए, इसी सनम कदे से यूं है इस तरह फरार क्यों, मैं जानती हूँ जो नहीं मैं किस तरह करूँ बयां, मैं किस तरह से दूँ सदा कि दिल मेरा है बिक चुका, ये दिल मेरा है बिक चुका सनम के उस बाजार में, जहाँ से अब वो गुमशुदा है प्यार के मज़ार में।
2: बहुत बहुत
1: बहुत शुक्रिया। एक नज़्म जिसका उन्वान है दिले वीरान। समझ

0: बोलते क्या हो तुम दिल को, बिल आखिर क्या समझते हो? कभी कहते हो पत्थर है, तराशो खूब निखरेगा। कभी शीशा समझते हो जो आंधी ने बिखेरा हो, सियाह वो राज सदियों के इसी दिल में छुपाते हो। कभी मुर्दा सी यादों को भी सीने में दबाते हो। मैं अक्सर फर्ज करती हूँ मैं जो तुमसे अगर कह दूँ कि दिल में कोई बसता है, निगाहों में उतरता है, बहारों में संवरता है, वो दिल को घर बताता है, वो दिल को घर बताता है, वो घर में बुत बनाता है, वो खुद का अक्स चुनता है, वो दिल को चाक करता है। मैं उसकी कार साजी में खामोशी से तड़पती हूँ, उसे अपना बताने के अमल को फिर झपटती हूँ। दुआ करती हूँ कुदरत से कि जिसने घर बनाया था, जिसे घर का मकी जाना, उसे मेहमान कर दे तू, तो कुदरत फिर मेरे हाथों को कुछ औजार देती है। मैं अपने आप ही इस दिल के घर को नोच देती हूँ। तुम्हें मालूम है कितनी मैं अब तकलीफ सहती हूँ कि जब दीवार को घर की मैं खुद ही साफ करती हूँ। मैं अक्सर फर्ज करती हूँ, मैं जो तुमसे अगर कह दूँ कि दिल में अब नहीं कोई, ये दिल बंजर जमी कोई, तो क्या तुम फिर भी आओगे, तो क्या दिल को संवारोगे? बहुत शुक्रिया। हाजरीन, आप मारिया मुजफ्फर से नज़में सुन रहे थे। मुशायरे को आगे बढ़ाते हुए अब मैं दावत देती हूँ फहमीना अली साहिबा को।
1: आदाब सामईन, गज़ल का मतला पेश खिदमत है।
0: इरशाद।
1: मंजिलों का निशां गुलाबी है, मंजिलों का निशां गुलाबी है, सुर्ख रह कारवां गुलाबी है। मंजिलों का निशां गुलाबी है, सुर्ख रह कारवां गुलाबी है, आतिशे इश्क जल रही है कहीं, आतिशे इश्क जल रही है कहीं, देखिए तो धुआं गुलाबी है। आतिशे इश्क जल रही है कहीं, देखिए तो धुआं गुलाबी है। वो गुलाबी कहे जो नीले को, वो गुलाबी कहे जो नीले को, मैं भी कह दूंगी हाँ गुलाबी है। मैं भी कह दूंगी हाँ गुलाबी है। साथ रहती है मेरे तन्हाई, साथ रहती है मेरे तन्हाई, फिर भी सारा मकान गुलाबी है। साथ रहती है मेरे तन्हाई, फिर भी सारा मकान गुलाबी है। और शेर है कि कृष्ण का रंग यूं तो काला है, कृष्ण का रंग
0: यूं तो काला है,
1: राधिका के यहाँ गुलाबी है। कृष्ण का रंग यूं तो काला है, राधिका के यहाँ गुलाबी है। एक ही बांसुरी है दुनिया में जिसकी आहो फगां गुलाबी है। एक ही बांसुरी है दुनिया में जिसकी आहो फगां गुलाबी है। और आखिरी शेर है कि हो लिखी हिजर की सियाही से तो समझ दास्तां गुलाबी है। हो लिखी हिजर की सियाही से तो समझ दास्तां गुलाबी है। गज़ल का मतला है, आते आते करार की हद में आ गए इंतशार की हद में, आते आते करार की हद में आ गए इंतशार की हद में, चार दिन की बहार की हद में फूल हैं इख्तसार की हद में, चार दिन की बहार की हद में फूल हैं इख्तसार की हद में। शेर है कि मेरी कुल जिंदगी सिमट आई एक तेरे इंतजार की हद में, मेरी कुल जिंदगी सिमट आई एक तेरे इंतजार की हद में। शेर है कि हम मुकम्मल सुरूर थे लेकिन आ गए हैं खुमार की हद में, हम मुकम्मल सुरूर थे लेकिन आ गए हैं खुमार की हद में। रहना पड़ता है हर कहानी को एक ना एक इन्हिसार की हद में, रहना पड़ता है हर

0: कहानी को एक नए इन्हिसार की हद में, और आखिरी शेर है कि कितनी सदियों की बेकरारी है, कितनी सदियों की बेकरारी है एक पल के करार की हद में।
1: क्या बात है,
0: कितनी सदियों की बेकरारी है एक पल के करार की हद में। अगली गज़ल का मतला है, ज़मीं मुस्तरद आसमां मुस्तरद, ज़मीं मुस्तरद आसमां मुस्तरद, अगर तू नहीं तो जहां मुस्तरद। ज़मीं मुस्तरद आसमां मुस्तरद, अगर तू नहीं तो जहां मुस्तरद। वही है ज़माने की अब तक रविश, वही है ज़माने की अब तक रविश, उजाला कबूल और धुआं मुस्तरद। उजाला कबूल और धुआं मुस्तरद। शेर है कि परिंदे के बच्चे कोई खा गया, परिंदे के बच्चे कोई खा गया, शजर मुस्तरद आशियां मुस्तरद, शजर मुस्तरद आशियां मुस्तरद। और शेर है कि जहां शाहजादी को मरना पड़े, जहां शाहजादी को मरना पड़े, कहानी गलत दास्तां मुस्तरद, कहानी गलत दास्तां मुस्तरद। अगर हक बयानी के काबिल नहीं, अगर हक बयानी के काबिल नहीं, जुबान और अहले जुबान मुस्तरद, जुबान और अहले जुबान मुस्तरद। तेरा अनुराग लेकर क्या करेंगे, तेरा अनुराग लेकर क्या करेंगे, किसी का भाग लेकर क्या करेंगे, तेरा अनुराग लेकर क्या करेंगे, किसी का भाग लेकर क्या करेंगे। अभी हम हैं तमन्नाओं के मारे, अभी हम हैं तमन्नाओं के मारे, अभी बैराग लेकर क्या करेंगे।
1: क्या ख्याल है,
0: अभी हम हैं तमन्नाओं के मारे, अभी बैराग लेकर क्या करेंगे। शेर है कि वो जिनको राजमहलों की है आदत, वो जिनको राजमहलों की है आदत, विदुर का साग लेकर क्या करेंगे। वो जिनको राजमहलों की है आदत, विदुर का साग लेकर क्या करेंगे। गए सब रंग जब से तुम गए हो, गए सब रंग जब से तुम गए हो, भला अब भाग लेकर क्या करेंगे, भला अब भाग लेकर क्या करेंगे। शेर है कि अभी तो रात का पिछला पहर है, अभी तो रात का पिछला पहर है, तो भैरव राग लेकर क्या करेंगे, तो भैरव राग लेकर क्या करेंगे। शेर है कि अभी तो हाथ में रोटी नहीं है, अभी तो हाथ में रोटी नहीं है, तो माखन काग लेकर क्या करेंगे, तो माखन काग लेकर क्या करेंगे। और आखिरी शेर है कि हमारा भाग ही अपना नहीं है, हमारा भाग ही अपना नहीं है, तुम्हारा भाग लेकर क्या करेंगे, हमारा भाग ही अपना नहीं है, तुम्हारा भाग लेकर क्या करेंगे। बहुत शुक्रिया
1: सामीन। ये थी फहमीना अली साहिबा। अब आप मरियम मुख्तार साहिबा से चंद गज़लें सुनिए।
2: आदाब सामीन, गज़ल का मतलब पेश खिदमत है। ऐशो आराम ये राहत नहीं देखी जाती, ऐशो आराम ये राहत नहीं देखी जाती, मुझसे दुनिया में ही जन्नत नहीं देखी जाती। गर्दिशे वक्त ने कुछ ऐसे निशान छोड़े हैं, गर्दिशे वक्त ने कुछ ऐसे निशान छोड़े हैं, आईने से मेरी सूरत नहीं देखी जाती। अगर न चाहो तो ना आने के बहाने हैं बहुत, अगर न चाहो तो ना आने के बहाने हैं बहुत, वरना चाहो तो ये फुर्सत नहीं देखी जाती। अपने जलवों को हिजाबों में छुपा रहने दो, अपने जलवों को हिजाबों में छुपा रहने दो, वक्त से कब्ल कयामत नहीं देखी जाती, वक्त से कब्ल कयामत नहीं देखी जाती। और हम तेरी बज़्म से हर बार चले आते हैं, हम तेरी बज़्म से हर बार चले आते हैं, अब तेरी बज़्म की हालत नहीं देखी जाती। और उससे कह दो कि चला आए वो घर लौट के अब, उससे कह दो कि चला आए वो घर लौट के अब, दरो दीवार की वहशत नहीं देखी जाती। और इख्तियारात

0: मुझे दे कि मैं दामन भर दूं, इख्तियारात मुझे दे कि मैं दामन भर दूं, मांगने वाले की हाजत नहीं देखी जाती।
1: वाह
0: एक और गजल, कोई शिकवा न शिकायत न गिला कुछ भी नहीं, कोई शिकवा न शिकायत न गिला कुछ भी नहीं, इसका मतलब है ताल्लुक में बचा कुछ भी
1: वाह वाह,
0: नहीं।
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: कहें,
1: है, क्या बहुत खूब।
0: इसका मतलब है ताल्लुक
1: ताल्लुक
0: में
1: में बचा
0: बचा
1: कुछ
0: कुछ
1: भी
0: भी
1: नहीं।
0: नहीं, और उसमें क्या बात थी एक उसके चले जाने से, उसमें क्या बात थी एक
1: उसके
0: उसके
1: चले
0: चले
1: जाने
0: जाने
1: से
0: से, यूं तो सब कुछ है मगर फिर भी रहा कुछ
1: कुछ।
0: भी
1: वाह
0: नहीं।
1: वाह, बात हो,
0: और
1: बात
0: हम
1: नहीं।
0: समझते थे कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, हम समझते थे कि बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे, दोनों हैरत में हैं, दोनों को हुआ कुछ
1: हुआ
0: भी
1: कुछ,
0: नहीं
1: वाह वाह
0: नहीं
1: वाह, क्या
0: और
1: कहने।
0: उसके जाने से तो गोया मेरी बीनाई गई, उसके जाने से तो
1: तो गोया
0: गोया
1: मेरी
0: मेरी
1: बीनाई
0: बीनाई गई,
1: गई,
0: देखना चाहा बहुत मुझको दिखा कुछ भी
1: वाह
0: नहीं।
1: वाह वाह वाह।
0: और तीन हरफों से बने इश्क ने वो हाल किया, तीन
1: तीन
0: हरफों
1: हरफों
0: से
1: से
0: बने
1: बने
0: इश्क
1: इश्क
0: ने
1: ने
0: वो
1: वो
0: हाल
1: हाल
0: किया,
1: किया,
0: ऐसा लगता है वफा और जफा कुछ भी
1: वाह
0: नहीं।
1: वाह वाह,
0: और इतनी
1: बात
0: तेजी
1: नहीं।
0: से बदलता है मेरे यार का रंग,
1: इतनी तेजी से बदलता है मेरे यार
0: इतनी
1: का रंग,
0: तेजी से बदलता है मेरे यार का रंग, उसके आगे तो ये मौसम की अदा
1: क्या
0: कुछ
1: बात,
0: भी
1: वाह
0: नहीं।
1: वाह, क्या
0: वाह,
1: कहने,
0: इतनी तेजी से बदलता है मेरे यार का रंग,
1: कमाल,
0: उसके आगे तो ये मौसम की अदा
1: कुछ
0: कुछ
1: भी
0: भी
1: नहीं।
0: नहीं। एक और मतलब अर्ज है,
1: इरशाद।
0: उसके कदमों में मेरी जान नहीं होना था, उसके कदमों में मेरी जान नहीं
1: नहीं होना
0: होना
1: था,
0: था, तुझे इतना भी पशेमान नहीं
1: नहीं
0: होना
1: होना था,
0: था।
1: वाह।
0: और आपके चाहने वालों को बुरा लगता है, आपके चाहने वालों को बुरा लगता है, आपका मेरी तरफ ध्यान नहीं
1: नहीं,
0: होना
1: वाह वाह,
0: था,
1: बात क्या
0: और
1: कहने।
0: चाहता जो भी है आता है चला जाता है, चाहता जो भी है
1: आता
0: आता
1: है
0: है
1: चला
0: चला जाता
1: जाता
0: है,
1: है,
0: दिल को यूं खेल का मैदान
1: मैदान
0: नहीं
1: नहीं
0: होना
1: होना था,
0: था,
1: वाह वाह।
0: चाहता जो भी है आता है चला जाता है, दिल को यूं खेल का मैदान नहीं होना था। और जिसको देखो यहाँ हाथों में लिए फिरता है, जिसको देखो यहाँ
1: देखो
0: हाथों में लिए
1: लिए
0: फिरता
1: फिरता
0: है,
1: है,
0: इश्क इतना तुझे आसान
1: आसान
0: नहीं
1: नहीं
0: होना
1: होना
0: था।
1: था, वाह वाह।
0: और दफ़अतन पेश जुदाई का सबब आता कोई, दफ़अतन पेश जुदाई का सबब आता कोई, यूं बिछड़ जाने का इम्कान नहीं
1: नहीं
0: होना
1: था,
0: था।
1: बहुत अच्छा।
0: और जज्बे इश्क पे ईमान वो लाता क्यों कर, जज्बे इश्क पे ईमान वो लाता क्यों कर, आखिर उस बुत को मुसलमान नहीं होना
1: वाह
0: था।
1: बात हो,
0: और आखिरी शेर है कि वादिये दिल में ज़रो जान की कीमत क्या है, वादिये दिल में ज़रो जान की कीमत
1: कीमत
0: क्या
1: क्या है,
0: है, इज्जत नफ्स का नुकसान
1: नुकसान नहीं
0: नहीं
1: होना।
0: होना
1: वाह
0: था।
1: वाह वाह, बहुत उम्दा, बहुत
0: बहुत
1: उम्दा।
0: शुक्रिया। एक और गज़ल पेश करती हूँ,
1: इरशाद।
0: मतलब अर्ज़ किया है कि ज़ात से मेरी उसे प्यार भी हो सकता है, ज़ात से मेरी उसे प्यार
1: प्यार
0: भी
1: भी
0: हो
1: हो
0: सकता
1: सकता
0: है,
1: है,
0: मेरा दुश्मन मेरा गमखार भी हो
1: वाह वाह
0: सकता है,
1: वाह,
0: मेरी खामोशी को इकरार समझने वालों, मेरी खामोशी को इकरार
1: इकरार
0: समझने
1: समझने वालों,
0: वालों, इसमें एक जाविया इनकार भी हो सकता
1: वाह
0: है,
1: वाह हो,
0: और मैं अगर रूठ भी जाऊं तो खफा मत होना, मैं अगर रूठ भी जाऊं तो खफा मत होना, ये मेरे प्यार का इजहार भी हो
1: वाह
0: सकता
1: बहुत हो,
0: है,
1: बहुत उम्दा,
0: ये मेरे प्यार का इजहार
1: हार
0: भी
1: भी
0: हो
1: हो
0: सकता
1: सकता है,
0: है, और झूठ का राज है सच बोलने वालों सुन लो, झूठ का राज
1: राज
0: है
1: है सच
0: सच
1: बोलने
0: बोलने
1: वालों
0: वालों
1: सुन
0: सुन
1: लो,
0: लो, सर बचाना यहाँ दुश्वार भी हो
1: वाह
0: सकता
1: वाह, बहुत
0: है।
1: वाह,
0: और
1: बहुत अच्छा।
0: तू मसीहाए जमाना है यकीनन, लेकिन तू
1: तू मसीहाए
0: मसीहाए जमाना
1: जमाना
0: है
1: है लेकिन,
0: यकीनन, लेकिन तेरी खातिर कोई बीमार भी हो
1: वाह
0: सकता
1: वाह
0: है,
1: वाह कहने,
0: तेरी खातिर कोई बीमार भी हो सकता है, और इश्क को खेल समझती है ये दुनिया तो सुनो, इश्क को खेल समझती है ये
1: ये
0: दुनिया
1: दुनिया तो
0: तो सुनो,
1: सुनो,
0: ये तमाशा सरे बाजार
1: बाजार
0: भी
1: भी हो
0: हो
1: सकता,
0: सकता
1: बहुत हो,
0: है।
1: बहुत
0: बहुत
1: अच्छा,
0: शुक्रिया,
1: बहुत हो,
0: बहुत
1: बहुत
0: शुक्रिया।
1: हो,
0: वाह वाह वाह, क्या बात है। सामीन, अभी आप समाप्त कर रहे थे बज़्म ख़वातीन के तहत ये मुशायरा। शुराका थीं मोहतरमा फरहीन शकील, मोहतरमा फहमीना अली, मोहतरमा मरियम मुख्तार, और निज़ामत के फ़रायज़ अंजाम दे रही थीं मोहतरमा मारिया मुजफ़्फ़र। تو سامعین ہمیں یقین ہے کہ

0: आप इस मुशायरे से लुत्फ अंदोज हुए होंगे, तो इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान शाहनवाज़ हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।
1: अभी आप उर्दू मजलिस कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 4 बजने को है, आप समाचार सुनेंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि 140 करोड़ नागरिकों की राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर सरकार विश्वास, विकास और जन कल्याण के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत से प्रेरित निरंतर प्रयासों के माध्यम से देश एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बनने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की भारत की ओर से कड़ी निंदा दोहराई। उन्होंने शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली और तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर पहली बड़े पैमाने की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा का विकास शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और साथ ही बिजली खर्च में महत्वपूर्ण दीर्घकालिक बचत भी करेगी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज कहा कि प्रत्येक शिशु को गर्भावस्था के प्रत्येक चरण में सुरक्षित, स्वस्थ और सम्मानजनक देखभाल का अधिकार है। सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने लाखों गर्भवती महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच, विशेषज्ञ परामर्श और बेहतर मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करके सुरक्षित मातृत्व को एक जन आंदोलन बना दिया है। पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सोलर गठबंधन और वैश्विक स्तर पर यूपीआई जैसे डिजिटल उपायों के जरिए हमेशा राष्ट्रीय हित को विश्व के साथ जोड़ा है। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इससे कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क स्थापित होने की संभावना बढ़ गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रिमोट बटन दबाकर लद्दाख के मिनिकबर्ग में जोजिला सुरंग के पूर्वी प्रवेश द्वार के पास विस्फोट किया और इसे कश्मीर और लद्दाख के बीच हर मौसम में संपर्क सुनिश्चित करने का ऐतिहासिक क्षण बताया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वह धार्मिक शब्दावली का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना अल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक सत्र को संबोधित करते हुए भारत के स्थायी प्रतिनिधि और राजदूत पर्वतानेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान भारत पर दोष गढ़ने का प्रयास कर रहा है।
2: पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान में किए जा रहे हवाई हमलों में बड़ी संख्या में आम लोग हताहत हो रहे हैं। भारत इन हमलों की कड़ी निंदा करता है। अफगान क्षेत्र पर किए गए ऐसे सैन्य हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और किसी भी देश की संप्रभुता के सिद्धांत का स्पष्ट उल्लंघन है। निर्दोष नागरिकों की मौत और विध्वंस को सैन्य कार्रवाई का नाम देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपनी आंतरिक विफलताओं और समस्याओं का दोष पड़ोसी देश

0: The Sensex rose 395 points to close at 73,919, while the Nifty jumped 119 points to settle at 23,242. In the broader market on the National Stock Exchange, the mid-cap 100 index gained over 1.3% and small-cap 100 index settled at 1.7% higher. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। और श्रोताओं, अब वक्त है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना देने का। इस क्रम में हमारे सबसे पहले खोए व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है। इनको अंतिम बार 8:31 सुबह के दिनांक 22/5/2026 को झील चौक बस स्टैंड गीता कॉलोनी दिल्ली में देखा गया है। इनकी आयु 50 साल है। शरीर की बनावट मध्यम शरीर है। कद 5'4" है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना गीता कॉलोनी, नई दिल्ली में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है रचना। इनके पिता का नाम है राजू। अंतिम बार इन्हें 23/5/2026 को मकान नंबर 113, गली नंबर 5, नियर सोलंकी हलवाई, रानी गार्डन, शास्त्री नगर, गीता कॉलोनी, दिल्ली में देखा गया है। इनकी आयु 16 साल है। शरीर की बनावट पतला शरीर है। कद 5 फुट है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप पुलिस स्टेशन गीता कॉलोनी नई दिल्ली में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम ज्ञात नहीं है। अंतिम बार इन्हें 8 ब्लॉक नियर पार्क कैलाश का ढाबा, गीता कॉलोनी, नई दिल्ली में दिन सोमवार, दिनांक 25/5/2026 को देखा गया है। आयु 50 वर्ष है। शरीर की बनावट मध्यम शरीर है। कद 5'4" है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना गीता कॉलोनी, नई दिल्ली में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है काजल। अंतिम बार इन्हें रामनगर मंडोली रोड शादरा, दिल्ली में देखा गया है। काजल की उम्र 15 साल है। शरीर की बनावट पतला शरीर है। कद 4'5" है। काजल के गले और गर्दन के पीछे व दोनों पैरों में सफेद निशान हैं। इनका पता है ट्रांसफार्मर गली मंडोली रोड शादरा, नई दिल्ली। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना मानसरोवर पार्क, नई दिल्ली में सूचना दे सकते हैं। साथ ही साथ इस मोबाइल नंबर पर भी सूचना दे सकते हैं, 9999084985। खोए व्यक्ति का नाम है प्रीति। अंतिम बार इन्हें सेक्टर 47 गुरुग्राम में देखा गया है। इनकी आयु 16 वर्ष है। शरीर की बनावट पतला शरीर है। रंग सांवला है और चेहरा गोल है। प्रीति की कद 5 फुट है और दाहिने हाथ पर जले का निशान है। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना प्रभारी, थाना सदर, सेक्टर 38 गुरुग्राम में सूचना दे सकते हैं। खोए व्यक्ति का नाम है रजनीश कुमार। पता है श्री नीतीश कुमार, पुत्र श्री नंद किशोर शाह, निवासी ग्राम खेसर, थाना जिले, जिला दरभंगा, बिहार। मोबाइल नंबर है 7323952385। शरीर की बना

कवर्ड सामान्य है और कद 5 फुट 5 इंच है। चेहरा गोल है। इन्होंने गुलाबी शर्ट, नीले जीन्स व नीले रंग के जूते पहन रखे हैं। यदि इनके बारे में कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो आप थाना जानी जनपद मेरठ में सूचना दे सकते हैं। श्रोताओं, ये तो थे कुछ खोए व्यक्तियों के बारे में जानकारी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम युववाणी।

0: हर जनरेशन अपनी पहचान बनाती है, कोई इमारतें बनाकर, कोई आविष्कार करके, और कुछ लोग सिर्फ अपने शब्दों और कला से दुनिया बदल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं युववाणी आकाशवाणी पर, एक ऐसा कार्यक्रम जहां युवाओं की सोच, उनके सपने और उनकी रचनात्मकता को मिलती है एक पहचान। मैं हूं साक्षी और मेरे साथ है मेरी को होस्ट मानसी।
1: धन्यवाद साक्षी, और मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। तो आज है मंगलवार और आज के सेगमेंट्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। आज की बात में होगी युवा साहित्य पर चर्चा, पीयूष मिश्रा के हुनर को समझेंगे मन से माइक्रोफोन के थ्रू, क्विक बज में लाएंगे कंटेम्प्रेरी ऑथर्स का एक टच, और वीकली सेगमेंट में होगा एक खास किताब का क्रिस्प एनालिसिस।
0: दोस्तों, आज की दुनिया रील्स और स्क्रोल्स की दुनिया जरूर बन गई है, लेकिन आज भी एक अच्छी कविता दिल को छू जाती है, एक कहानी सोच बदल देती है, और एक गीत जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, लेकिन अल्फाजों और कला की ताकत कभी कम नहीं होती। एक अच्छी रचना आज भी सीधा दिल तक पहुंच जाती है।
1: और आज की शाम उन्हीं कहानियों के नाम है जो किताबें पन्नों से निकलकर सीधे दिल में बस जाती हैं, उन कलाकारों के नाम जिन्होंने अपनी कला को और रचनात्मकता को समय में भी अमर बना दिया। और इसी के साथ आज का हमारा विषय है आर्ट एंड लिटरेचर, यानी कला और साहित्य, जहां शब्दों की खूबसूरती और सुरों की मिठास मिलकर रचती है एक अनोखी दुनिया।
0: और जब साहित्य और कला की बात हो तो गीतों का जिक्र कैसे ना हो। तो आइए शुरुआत करते हैं एक ऐसे ही यादगार गीत के साथ, जिसके बोल हैं, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा।

0: तो सुना साक्षी आपने, इस गीत के बोल हमें एक बार फिर याद दिलाते हैं कि संगीत और साहित्य का रिश्ता वाकई कितना गहरा है।
1: बिल्कुल मानसी, तो इसी खूबसूरत एहसास के साथ बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट आज की बात की ओर।
0: हर लफ्ज में एक नई सोच का उजाला है, यूं तो कलम ने हर दौर को संभाला है। किताबों के अल्फाजों से सपनों की उड़ान तक आज का साहित्य ही युवा के दिलों का हवाला है। दोस्तों, आज के युवा पढ़ क्या रहे हैं, क्या वो लिख रहे हैं और किस तरह का साहित्य उन्हें प्रभावित कर रहा है, इन्हीं कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम बात करेंगे युवा साहित्य की।
1: जी बिल्कुल मानसी, युवा साहित्य सिर्फ युवाओं के लिए लिखा गया साहित्य नहीं है, बल्कि उनके सपनों, संघर्षों, पहचान और बदलते समाज को आवाज़ देने वाले शब्दों में पिरोया गया साहित्य है। लेकिन अगर हम बात करें आज के जेंजी की, तो वो इन परंपराओं से जुड़े रहना चाहते हैं और नए विचारों को भी अपनाना चाहते हैं, और यही तो बदलाव आज के साहित्य में भी नजर आता है।
0: Couldn't have agreed more, साक्षी। आज की किताबों में मेंटल हेल्थ की बातें होती हैं, जेंडर इक्वालिटी पर चर्चा होती है और सोशल मीडिया के प्रभाव को समझा जाता है, और ऐसे कई मुद्दों को जगह मिलती है जो आज की जेनरेशन में कॉमन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। चलिए, लिसनर्स के मूड को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं और एक बात कहूंगी कि सपने जब दिल की दहलीज पर दस्तक देते हैं तो उन्हें उनकी गूंज एक तारे की धुन बन जाती है। और इसी खुशनुमा एहसास के साथ सुनिए हमारा अगला गाना, एक तारा, फ्रॉम द फिल्म वेक अप सिड।

0: इस सूदिंग से सॉन्ग के बाद फिर स्वागत करते हैं आपका आज की बात में। साक्षी, जब हम युवा साहित्य की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के मन में एक सवाल आता है कि क्या युवा आजकल वाकई पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि मोबाइल फोन्स ने और सोशल मीडिया ने किताबों को लगभग गायब सा कर दिया है।
1: बिल्कुल मानसी, लेकिन इसकी तस्वीर इतनी भी एक तरफा नहीं है। आज पढ़ने का तरीका जरूर बदला है, लेकिन पढ़ने की आदत खत्म नहीं हुई है।
0: शायद यही वजह है साक्षी कि आज का साहित्य नए रूप में उभर रहा है। कहीं शॉर्ट स्टोरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही हैं, तो कहीं पोएट्री, ओपन माइक इवेंट्स और सोशल मीडिया रील्स के जरिए लोगों तक पहुंच रही हैं। तो दोस्तों, लिटरेचर की ये जर्नी तो चलती रहेगी और इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं आज के युवा, कभी अपने विचारों से और कभी अपनी रचनाओं के साथ।
1: और इसी खूबसूरत सोच के साथ चलिए लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, जिसके बाद मुलाकात होगी हमारे खास सेगमेंट मन से माइक्रोफोन तक में, जहां अल्फाज सिर्फ सुने नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। हर तलाश का एक मोड़ ऐसा भी आता है जहां सिर्फ सुकून रह जाता है। उसी सुकून की गूंज से है ये अलग सा गीत, तो सुनिए जिसके बोल हैं कुन फाया कुन
0: फ्रॉम द फिल्म रॉकस्टार।

0: इसे शायर ने क्या खूब कहा है, कुछ अल्फाज सिर्फ लिखे नहीं जाते, वो जिए जाते हैं। और जब ऐसे अल्फाज किसी कलाकार की आवाज़ पा लेते हैं तो वो सीधे दिल तक पहुंच जाते हैं।
1: बेशक, और ये वो मंच है जहां दिल की बातें सिर्फ दिल तक नहीं रह जाती बल्कि महसूस भी की जाती हैं।
0: कला और साहित्य की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो किसी एक पहचान में सिमट जाते हैं। वो कहानी भी लिखते हैं, नज़में भी रचते हैं और अपने अल्फाजों से पूरी पीढ़ी को सोचने पर मजबूर भी करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक बेहतरीन कलाकार पीयूष मिश्रा की।
1: मैं तो कहूंगी कि पीयूष मिश्रा सिर्फ एक गीतकार या अभिनेता नहीं, बल्कि एक ऐसी आवाज़ है जो समझ, सच्चाई और जज्बात को अपनी रचनाओं में बखूबी पिरोते हैं। थिएटर से लेकर सिनेमा तक और कविता से लेकर गीतों तक, उन्होंने अपनी कला को हर माध्यम में बखूबी पहचान बनाते हुए निखारा है। उनके लिखे हुए अल्फाज कभी सवाल पूछते हैं तो कभी हौसला देते हैं, और कभी-कभी तो हमें खुद से रूबरू करवा देते हैं।
0: शायद इसीलिए ही मानसी आज भी युवाओं के बीच उनकी रचनाएं उतनी ही सार्थक हैं जितनी पहले

हुआ करती थी। बिल्कुल, तो आइए उनकी कला और उनके शब्दों को सलाम करते हुए सुनते हैं उन्हीं की आवाज़ में गीत जो ऊर्जा, जुनून और बदलाव की बात करता है, जिसके बोल हैं एक बगल।

0: बिल्कुल, और इसी खूबसूरत एहसास के साथ वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसका नाम है क्विक बज। फूड फॉर थॉट, अंग्रेजी की ये कहावत जिसका मतलब है कि ऐसी बात जो आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे। तो सोचिए, आखिर आखिरी बार ऐसा कब हुआ था कि आपने कोई किताब पढ़ी और उसने आपको कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। आज के क्विक बज में बात उन लेखकों की जिन्होंने सिर्फ किताबें लिखी नहीं बल्कि एक नए समय के साहित्य में चर्चा और भी बढ़ाई।
1: मानसी, अगर बात करें इतिहास को कूल बनाने की, तो अमीश त्रिपाठी का नाम जरूर आता है। एक पूरी जेनरेशन ने इंडियन नॉलेज सिस्टम को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों में नहीं बल्कि पेज टर्निंग स्टोरीज के रूप में पढ़ा, और शायद इसीलिए उनकी किताबें आज यूथ फेवरेट्स में बेशुमार हैं।
0: तो साक्षी, आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है?
1: मानसी, कभी कभी
0: वेल, साक्षी, अगर आप विक्रम संपत के रीडर्स की बात करें तो शायद वो आपसे सहमत ना हो, क्योंकि बुक्स और हिस्ट्री को क्लासरूम से निकालकर कॉफी टेबल डिस्कशंस तक लाने का काम तो विक्रम संपत ने बखूबी किया है। खैर, डिस्कशंस भी चलते रहेंगे और हिस्ट्री की बातें भी होती रहेंगी, पर जब बात लाइफ की हो तो एक बात तो मैं ज़रूर कहूंगी कि जिंदगी के प्लॉट ट्विस्ट उन्हें ब्लॉकबस्टर बनाते हैं। और इसी वाइब के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना, शंकर एहसान लॉय की क्रिएशन, लाइफ इज क्रेजी, अनदर वन फ्रॉम वेकअप सेड।

0: सम्मानित सुधा मूर्ति जी के बारे में। वाइज एंड अदरवाइज और 3000 स्टिचेस जैसी किताबों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को सामने रखा, जबकि डॉलर बहू ने परिवार और वुमेन एम्पावरमेंट जैसे मुद्दों पर चर्चा की।
1: तो सवाल ये है मानसी कि आज के इन्फ्लुएंसर सिर्फ सोशल मीडिया पर हैं या कुछ ऑथर्स भी अपनी कलम से लाखों लोगों की सोच को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं?
0: वेल, मेरे हिसाब से साक्षी, आज के दिन इतिहास के पन्ने हमें आर्ट एंड लिटरेचर की कुछ खास बातें याद तो दिलाते हैं, पर अब वक्त हो चला है वीकली सेगमेंट का। एक बात हम सब ने सुनी है साक्षी कि साहित्य समाज का आईना है, तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी पुस्तक की जिसका नाम है राग दरबारी, जिसे लिखा है श्रीलाल शुक्ल ने, और इस सेगमेंट में हम इस किताब का एक क्रिस्प एनालिसिस करेंगे।
1: पर एक बात तो जरूर है कि नॉवेल्स में सटायर ना हो तो पढ़ने में वो मजा ही कहाँ।
0: ब्रिलियंट साक्षी, आपकी इस डिमांड को पूरा करती है ये किताब। तो दोस्तों, राग दरबारी एक सटायरिकल नॉवल है जिसे शिवपालगंज नाम की एक जगह और उसकी कहानी के माध्यम से सिस्टम, पॉलिटिक्स और एजुकेशन की ग्राउंड रियलिटी को काफी आयरॉनिक तरीके से दिखाया गया है।
1: मुझे लगता है कि ऐसी बातें हर एक जेनरेशन में एक ना एक शिव पालगंज तो जरूर ही होता है।
0: बिल्कुल साक्षी, लेकिन यूथ आज के सटायर को सिर्फ समझता नहीं बल्कि क्रिएट भी करता है।
1: इसी बात पर हम उस जमाने का एक गीत सुनना चाहेंगे जो आज काफी रिलेटेबल लगता है, लेकिन सच में याद होना चाहिए कि बचपन में ऐसी बात सिखाई गई है। तो मानसी, आप मुझे बताइए कि बचपन में ऐसी कौन सी बात आपको सिखाई गई है?
0: बिल्कुल याद है मुझे साक्षी, तो इस बात पर कहना यूं है कि मंजिल मिली तो नया सफर सामने आया, हर ख्वाब ने एक नया ख्वाब जगाया, जिंदगी कोई सूची नहीं एक रवानी है, चलते रहना इसकी असली कहानी है।
1: क्या बात है मानसी,
0: शुक्रिया।
1: इसीलिए कॉलेज में लगता है कि डिग्री मिल गई तो लाइफ सेट, डिग्री मिलती है तो लगता है जॉब मिल जाए बस, और जॉब मिलती है तो लगता है अब ग्रोथ हो जाए, और फिर समझ आता है कि लाइफ किसी चेकलिस्ट की तरह नहीं है।
0: एग्जैक्टली, और शायद इसीलिए कुछ किताबें सिर्फ पुरानी होकर भी पुरानी नहीं रह जाती, क्योंकि उनमें इंसान वही है, उसकी उम्मीदें भी वही हैं और उसके स्ट्रगल्स भी वही हैं।
1: और जब 1968 का एक नॉवल 2026 के यूथ को समझ आने लगा तो समझ जाइए कि राइटर ने सिर्फ कहानी नहीं लिखी, समाज को ऑब्जर्व किया था।
0: लाइफ कभी सीधी लाइन में तो चलती नहीं साक्षी, कभी प्लान्स बनते हैं, कभी प्लान्स बिगड़ते हैं, और इसी सफर में हम सीखते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं।
1: बिल्कुल, और इसी मुस्कुराहट के साथ चलिए सुनते हैं एक यादगार गीत जो हर जनरेशन को पसंद आता है।
0: पेश है फिल्म जूल थीफ का एक लोकप्रिय गीत, ये दिल

तो दोस्तों, मुझे एक बात याद आई कि बचपन में हमसे कहा जाता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। पर आज थोड़ा सा बदलाव आया है जिंदगी में, क्योंकि अब मायने इसके भी हैं कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। इसी बात से मिलता जुलता आपको सुनाते हैं एक मोटिवेशनल सॉन्ग।

0: और इसी के साथ आज का सफर यहीं संपन्न करते हैं। कल जानेंगे करियर गाइडेंस और एम्प्लॉयमेंट से जुड़ी कुछ खास बातें। मन से माइक्रोफोन में होगी एक नई सक्सेस स्टोरी, क्विक बज में होगी कुछ ट्रेंडिंग और इंटरेस्टिंग बातें। मैं हूं आपके साथ मानसी, कल भी ट्यून इन कीजिएगा इसी समय पर।
1: और मैं हूं साक्षी। उतार चढ़ाव जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उतार चढ़ाव में बैलेंस बनाकर रखें, ये एक बहुत ही अहम बात है। तो आइए सुनते हैं एक यादगार गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और लीजिए अब सुनिए समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत

0: की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। श्री मोदी ने कुवैत में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा के प्रति ध्यान देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य तकनीकी सहायता से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जैसे विशाल भू सीमा वाले देश में सीमा प्रबंधन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर स्थित रक्षा भूमि पर बड़े पैमाने की पहली सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन सुविधा शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये 250 मेगावाट की सौर परियोजना उत्तर प्रदेश में रक्षा प्रतिष्ठानों की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी और बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत भी करेगी। सड़क परियोजना जोजिला सुरंग का अंतिम चरण आज सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच हर मौसम में संपर्क प्रदान करेगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी इस अवसर पर उपस्थित थे। समुद्र तल से 11,578 फीट की ऊंचाई पर निर्मित जोजिला सुरंग पूर्ण होने पर एशिया की सबसे लंबी सड़क सुरंग बन जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने कहा कि सरकार राज्यों के साथ भी सक्रिय रूप से समन्वय कर रही है।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 12 वर्ष में देश के युवाओं, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ देश को मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की ओर अग्रसर है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में भारत ने गरीबों के कल्याण और अभूतपूर्व विकास दोनों को एक साथ साकार होते देखा है। भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इसमें ब्रांड इंडिया और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत संकट के समय सबसे पहले मदद करने वाले देश के रूप में विकासशील और अल्पविकसित देशों की आवाज बनकर उभरा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि वो धार्मिक शब्दावली के जरिए अपने नागरिकों के बीच भारत के खिलाफ नफरत फैला रहा है। भारत ने पाकिस्तान में सक्रिय आतंकवादी संगठनों को फितना उल हिंदुस्तान बताकर दुष्प्रचार फैलाने का भी आरोप लगाया है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 36 ओवर में 5 विकेट पर 200 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. Addressing the media in New

0: लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। और भाई, जैसा कि हेमंत, हम हमेशा ही इस कार्यक्रम के जरिए बहुत सारे ऐसे संस्कृति और लोक धरोहर को हम लेकर के आते हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे।
1: बिल्कुल। और जैसे लोकगीतों की हम बात करें सरिता, कि लोकगीत हमारी संस्कृति और मिट्टी की खुशबू से जुड़े हुए गीत होते हैं, और ये किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी समाज की रचना होते हैं। इन्हें गाने के लिए किसी विशेष शास्त्रीय ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, ये सीधे दिल से निकलते हैं और सदियों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते रहते हैं।
0: तो क्यों ना ऐसी ही मधुर धुन और बोलों के साथ आज हम अपने इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। तो आइए सुनते हैं पूनम चौधरी से ये लोकगीत।

0: बहुत ही मनमोहक ये लोकगीत था और पूनम चौधरी की ये प्रस्तुति थी।
1: बिल्कुल
0: और कहते हैं ना कि जो लोकगीत है हमें अपने जड़ों से जोड़े रखता है और
1: बिल्कुल
0: जो हमारी संस्कृति है उसकी पहचान को बिल्कुल ही जीवंत बनाए रखता है।
1: बिल्कुल। त्योहारों, शादियां, बच्चों के जन्म के समय या खेतों में काम करते हुए हमारे यहाँ हर अवसर के लिए अलग लोकगीत होते हैं। इनमें हमारी खुशी, दुख, रीति रिवाज और रोजमर्रा की जिंदगी की झलक मिलती है। लोकगीतों के सही माने में हमारी समाज का दर्पण है जो हमें हमारी जड़ों से

0: ऐसा सुहाना मौसम सरिता बहन, उसके बारे में जिक्र किया इन्होंने। और लोकगीतों की हम बात कर रहे हैं, लोकगीतों के अनेक रूप होते हैं। जैसे
1: बिल्कुल
0: भारत के अलग अलग राज्यों में लोकगीतों के अनगिनत रूप हैं, चाहे राजस्थान का घूमर हो, पंजाब का भांगड़ा, या यूपी बिहार के सोहर और बिरहा। सबकी अपनी अलग मिठास है। इन्हें गाने के लिए ढोलक, मजीरा या हारमोनियम जैसे साधारण वाद्य यंत्रों का इस्तेमाल करना होता है, जो किसी भी महफिल में जान डाल देते हैं।
1: जी हाँ, और ऐसे ही मधुर मन को भाने वाला अगला लोकगीत हम सुनते हैं पुष्पा गुसाई से।

0: अभी आप सुन रहे थे पुष्पा गोसाई से ये लोकगीत। और कार्यक्रम समापन के पहले मैं हम आपको बता दें कि आज विशेष फोन इन का कार्यक्रम होगा और समय होगा शाम 6:30 से शाम के 7:30 तक।
1: विषय रहेगा गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रखरखाव और विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष पुष्प विज्ञान एवं भूदृक संभाग IARI पूसा, और डॉक्टर ऋतु जैन, प्रधान वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग IARI। और विशेषज्ञ से सीधी बातचीत करने के लिए जो फोन नंबर हैं वो रहेंगे 0112342108 2, और दूसरा फोन नंबर है हमारा 0112342108 0।
0: जी हाँ, हम आपको अपना फोन नंबर फिर से बता दें। हमारा जो फोन नंबर होगा वो होगा 0112342108 2, और दूसरा नंबर होगा 0111। ये हमारा दिल्ली का पिन कोड है और नंबर होगा 2342108 0।
1: और ये तो आज का, ये तो हमने सूचना दी अगले कार्यक्रम के बारे में, और यही हमारा ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: प्रस्तुत करता थे तुषार पराशर और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल। यह आकाशवाणी दिल्ली का प्रस्तुत चैनल है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खेल खिलाड़ी, मैं हूं कविता, और आज इस पूरे ही कार्यक्रम में मेरे साथ रहेंगी मेरी साथी।
4: मैं हूं रेणु गुप्ता, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।
3: तो मैं और रेनू आज आपको लेकर चलेंगे खेल की सभी खबरों के उस सफर पर, जिनके साथ आज हम स्टूडियो में मौजूद हैं।

का सबसे बड़ा, अगर फुटबॉल का कहें, जैसे हम और खेलों के लिए हम कहते हैं कि एक महाकुंभ होता है वो है ओलंपिक, वैसे ही फीफा का महाकुंभ यानी फुटबॉल का महाकुंभ है फीफा, और जिसमें बचे हैं सिर्फ कुछ ही दिन का समय। तो जितने भी फुटबॉल लवर्स हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये फुटबॉल जो है उसका वर्ल्ड कप हमें देखने को मिलेगा, और बहुत सारे उलट फेर इस फुटबॉल वर्ल्ड कप में होने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं फीफा के वर्ल्ड कप के इस शानदार सफर पर, जिसमें आज हम बात करेंगे दो ग्रुप्स की। वो ग्रुप्स कौन से हैं, आइए सुनते हैं। फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ फीफा विश्व कप 2026 का आगाज 11 जून 2026 से होने जा रहा है। इस बार विश्व कप कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि पहली बार 48 टीमें खिताब के लिए मैदान में उतरेंगी। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की मेजबानी में होने वाला ये टूर्नामेंट पहले से कहीं बड़ा, भव्य और प्रतिस्पर्धी होने वाला है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम नजर डालेंगे दो बेहद दिलचस्प समूहों में, ग्रुप आई और ग्रुप जे। इन दोनों समूहों में विश्व चैंपियनों का अनुभव है, उभरती हुई ताकतें हैं और ऐसे देश भी हैं जो इतिहास रचने के सपने के साथ मैदान में उतर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप आई की। इसमें शामिल है फ्रांस, सेनेगल, नॉर्वे और इराक की टीम। ये शुरुआती दौर का सबसे रोमांचक समूह है, जिसमें दिग्गज दावेदार फ्रांस और असाधारण रूप से मजबूत सेनेगल के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि ये समूह सिर्फ दो टीमों की प्रतिस्पर्धा से कहीं अधिक है, क्योंकि एक बेहद खतरनाक नॉर्वे टीम विश्व स्तरीय आक्रमण क्षमता के साथ मैदान में उतर रही है, जो किसी भी रक्षात्मक चूक का फायदा उठा सकती है। वहीं इराक भी सेम खेल स्प्रिट के साथ मैदान में उतर रहा है। ग्रुप आई में दिग्गज खिलाड़ियों, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रतिभाओं को परिभाषित करने वाले आक्रमणकारी खिलाड़ियों और रणनीतिक दृढ़ता का शानदार मिश्रण देखने को मिलता है। फ्रांस, जिसके पास बेहद मजबूत और अनुभवी खिलाड़ियों की टीम है, डीडीआर के कुशल मार्गदर्शन में फ्रांसीसी टीम ने क्वालिफाइंग अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए उत्तरी अमेरिका में आसानी से अपनी जगह पक्की कर ली। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत उसका संतुलन है और मजबूत रक्षा पंक्ति। तो दूसरी ओर ऐसे स्टार खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच जिता सकते हैं, चाहे धैर्य के साथ खेलना हो या फिर बिजली की गति से पलटवार करना। फ्रांस हर परिस्थिति में खुद को ढालने की क्षमता रखता है, यही वजह है कि उसे समूह की सबसे प्रतिभाशाली टीम माना जा रहा है। बात करते हैं सेनेगल की। टेरांगा के शेरों के कंधों पर पूरे महाद्वीप का भार है। अनुभवी और सितारों से सजी ये टीम अफ्रीका के इतिहास में विश्व कप ट्रॉफी जीतने का सबसे बेहतरीन मौका है। अब सेनेगल सिर्फ क्वालिफाई करने वाली टीम नहीं, बल्कि उसके पास यूरोपीय क्लबों का शानदार अनुभव और अपार शारीरिक शक्ति का सही संतुलन है। सेनेगल की टीम एक बेहद डिसिप्लिन और वेल ऑर्गेनाइज्ड यूनिट मानी जाती है। उनकी स्ट्रेटेजी पहले विपक्षी टीम के खेल को रोकने और फिर तेज काउंटर अटैक के जरिए मौके बनाने की होती है। डिफेंस, मिडफील्ड और अटैक तीनों विभागों में टैलेंटेड और एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी मौजूद हैं। टीम में शानदार डेप्थ, कॉन्फिडेंस और विनिंग माइंडसेट देखने को मिलता है। यही वजह है कि सेनेगल को इस विश्व कप में एक स्ट्रांग कंटेंडर माना जा रहा है, जो किसी भी टीम को कड़ी टक्कर दे सकता है। बात करते हैं नॉर्वे की। नॉर्वे ने एक पीढ़ी के लंबे टूर्नामेंट के सूखे को खत्म करते हुए वैश्विक मंच पर एक बेहद रोमांचक और आधुनिक टीम को पेश किया है। नॉर्वे ने कठिन यूरोपियन क्वालिफायर से होकर विश्व कप में जगह बनाई है, और यही वजह है कि उसे इस ग्रुप का डार्क हॉर्स माना जा रहा है। भले ही उसकी डिफेंस को फ्रांस और सेनेगल जैसी मजबूत टीमों के खिलाफ कड़ी परीक्षा देनी पड़े, लेकिन उसकी अटैकिंग लाइन किसी भी मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखती है। नॉर्वे की सबसे बड़ी ताकत है उसका टेक्निकल मिडफील्ड और तेज अटैकिंग फुटबॉल। टीम छोटे और सटीक पासों के जरिए खेल पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करती है, और मौका मिलते ही अपने स्ट्राइकर को गेंद पहुंचाकर विपक्षी रक्षा पंक्ति पर दबाव बनाती है। अगर नॉर्वे अपनी लय में आ जाए तो ये टीम इस ग्रुप में सबसे बड़ा उलटफेर कर सकती है। बात करते हैं इस ग्रुप के लास्ट टीम की, इराक। मेसोपोटामिया के शेर उत्तरी अमेरिका में अप्रत्याशित जीत हासिल करने वाले एक शक्तिशाली देश के रूप में पहुंचे हैं। एक रोमांचक प्लेऑफ मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद इराक विश्व मंच पर वापसी कर रहा है, जहां उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए बहुत कुछ है। ग्रुप का असली धमाका फ्रांस और नॉर्वे के बीच होने वाला आखिरी मैच है। लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद के दौर में किलियन मम्बाप्पे और एर्लिंग हॉलैंड की प्रतिद्वंद्विता फुटबॉल जगत की सबसे बड़ी सनसनी मानी जाती थी। भले

0: ये रोमांच अब कम है, लेकिन ये मैच इन दोनों वैश्विक दिग्गजों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर पहली बार आमने सामने लाएगा। अब बात ग्रुप जे की। इस ग्रुप में शामिल है मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ऑस्ट्रिया और विश्व कप में पहली बार पहुंची जॉर्डन की टीम। सभी की नजरें स्वाभाविक रूप से अर्जेंटीना पर होंगी। 2022 में विश्व कप जीतने वाली टीम का बड़ा हिस्सा अब भी टीम के साथ है और सबसे बड़ी बात, फुटबॉल के महानायक लियोनेल मेसी अपने रिकॉर्ड छठे विश्व कप में उतरने जा रहे हैं। 38 वर्ष की उम्र में भी मेसी दुनिया भर के करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदों का केंद्र बने हुए हैं। अर्जेंटीना की टीम अनुभव, आत्मविश्वास और जीत की आदत के साथ इस विश्व कप में प्रवेश कर रही है। लेकिन ग्रुप जे केवल अर्जेंटीना की कहानी नहीं है। अल्जीरिया 12 वर्षों के बाद विश्व कप में वापसी कर रहा है। कप्तान रियाद महरेज के नेतृत्व में टीम के पास अनुभव और प्रतिभा दोनों मौजूद हैं। उनकी आक्रमण शैली बेहद विविध है और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर अल्जीरिया अपने सर्वश्रेष्ठ खेल का प्रदर्शन करता है तो वो किसी भी प्रतिद्वंदी को मुश्किल में डाल सकता है। बात करते हैं ऑस्ट्रिया की। ऑस्ट्रिया भी 28 साल बाद विश्व कप में लौटा है। जर्मन कोच राल्फ रंगनिक के मार्गदर्शन में ये टीम तेज आक्रमण और संगठित फुटबॉल खेलती है। और अब बात उस टीम की जो इस समूह की सबसे ज्यादा प्रेरणादायक कहानी है, जॉर्डन। कई असफल प्रयासों के बाद जॉर्डन ने पहली बार विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। पूरे देश के लिए ये एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। जॉर्डन के खिलाड़ी जानते हैं कि दुनिया उन्हें अंडरडॉग मान रही है, लेकिन यही स्थिति उन्हें अतिरिक्त प्रेरणा देती है। वो इस मंच पर अपनी पहचान बनाने और इतिहास लिखने के इरादे से उतरेंगे। ग्रुप जे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ हमें अनुभव और सपनों का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। एक ओर मेसी और अर्जेंटीना का विजय इतिहास है तो दूसरी ओर जॉर्डन जैसी टीम का पहला विश्व कप का सपना। तो कुल मिलाकर ग्रुप आई और जे दोनों ही रोमांच से भरपूर दिखाई देते हैं। कहीं विश्व चैंपियन अपनी बादशाहत बचाने की कोशिश करेंगे तो कई नई टीमें दुनिया को चौंकाने का प्रयास करेंगी। अगले कुछ ही दिनों में दुनिया की निगाहें इन मैदानों पर होंगी। इसका जवाब तो सिर्फ मैदान पर ही मिलेगा। तो बिल्कुल, इस फुटबॉल के ग्राउंड में कौन होगा विजेता, कौन किसको देगा चकमा, ये तो कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। रेनु, वैसे एक बात बताओ, आजकल तुम ना बहुत फिट लग रही हो, क्या कर रही हो अपनी फिटनेस के लिए? कहीं तुमने भी किसी स्पोर्ट्स को तो नहीं ज्वाइन कर लिया?
1: कविता, अगर मैं अपनी फिटनेस की बात करूं तो योगा इज माय ऑलवेज गो टू वर्कआउट। मतलब योगा एक ऐसी चीज है जो ना सिर्फ आपको फिजिकली बल्कि आपको इमोशनली और एक मेंटली स्टेबिलिटी भी देती है।
0: तो मतलब आप योगा करती हैं रेगुलर?
1: जी हाँ, बिल्कुल रेगुलर मैं योगा करती हूँ। और कविता, आपको पता होगा कि भारत में अभी पहली योगासन चैंपियनशिप भी हुई है, जिसकी मेजबानी भारत ने ही की है और भारत ने ही उसको जीता भी है।
0: जी हाँ, बिल्कुल मुझे इस बात का पता है और मुझे बहुत प्राउड होता है ये सोचकर कि जो योग है वो भारत की सबसे प्राचीन विधा है और इस विधा में भारत के पास काफी सारे धुरंधर योगाचार्य ऐसे थे और उसके बाद योग जो है वो एक फिटनेस के तौर पर और उसके बाद फिर खेलों के रूप में जो है पहचाना जा रहा है। तो उन सभी बच्चों को, उन सभी खिलाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जो योग करते हैं और योग के माध्यम से लोगों को अवेयर कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। तो ये जो पूरी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी रेनू, इसकी मेजबानी भारत ने की जैसे आपने बताया और इसमें इंडिया ने धमाकेदार परफॉर्मेंस किया है।
1: बिल्कुल।
0: तो क्या है पूरी रिपोर्ट, आप ही बताइए।
1: बिल्कुल कविता, मैं अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगी कि योग केवल एक व्यायाम नहीं है बल्कि भारत की वह अमूल्य धरोहर है जिससे पूरी दुनिया को स्वास्थ्य संतुलन और आत्मिक शांति का संदेश दिया है। और अब यही योगासन वैश्विक खेल मंच पर भी अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। अहमदाबाद के ईकेए अरेना में आयोजित पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में मेजबान भारत ने ऐसा प्रदर्शन किया जिसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। 5 दिनों तक चली इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता में 79 देशों के 522 खिलाड़ियों ने भाग लिया। इनमें से 31 देशों के खिलाड़ियों ने कम एक पदक जीता जबकि 10 देशों ने स्वर्ण पदक हासिल करने में सफलता प्राप्त की। मेजबान भारत ने प्रतियोगिता में 122 सदस्यीय दल उतारा और भारतीय खिलाड़ियों ने शुरू से लेकर अंत तक अपना दबदबा कायम रखा। परिणाम स्वरूप भारत ने कुल 114 पदक जीतकर प्रतियोगिता का समापन किया, जिनमें रिकॉर्ड 102 स्वर्ण पदक शामिल रहे। पदक तालिका में जापान दूसरे स्थान पर रहा। जापानी खिलाड़ियों ने 3 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक अपने नाम किए। तीसरे स्थान पर रहा अर्जेंटीना, जिसकी सफलता की सबसे बड़ी वजह बनी उनकी एकमात्र प्रतिनिधि नाबिला बर्राजा।

0: बरराजा ने अकेले 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक जीतकर अपनी टीम को शीर्ष 3 देशों में पहुंचा दिया। वह प्रतियोगिता की सबसे सफल एथलीट भी रही। हालांकि पदक तालिका में नेपाल 5वें स्थान पर रहा, लेकिन कुल पदकों की संख्या के आधार पर भारत के बाद दूसरा सबसे सफल देश साबित हुआ। नेपाल ने 1 स्वर्ण, 36 रजत और 15 कांस्य सहित कुल 52 पदक अपने नाम किए। उज्बेकिस्तान ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण, 13 रजत और 11 कांस्य पदक सहित कुल 25 पदक अपने नाम किए। दोस्तों, ये प्रतियोगिता केवल पदकों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के संगम का भी शानदार उदाहरण बनी। दुनिया भर से आए खिलाड़ियों ने भारतीय संस्कृति, योग की परंपरा और भारत की मेहमान नवाजी का अनुभव किया। विश्व योगासन के अध्यक्ष योगश्री स्वामी रामदेव जी ने भी अपने वीडियो संदेश में कहा कि विश्व योगासन चैंपियनशिप कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक वैश्विक आंदोलन की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि योग केवल एक खेल नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है, जो स्वास्थ्य, सामंजस्य, शांति और मानव एकता का मार्ग दिखाती है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यहाँ से शुरू हुई ये यात्रा एक दिन योगासन को ओलंपिक मंच तक पहुँचाएगी। आर्मेनिया की खिलाड़ी सोना सोंघायन, जिन्होंने 3 वर्ष पहले अपनी दूसरी गर्भावस्था के दौरान योग को अपनाया था, इस आयोजन से बेहद प्रभावित नजर आई। उन्होंने कहा कि भारत की अपनी पहली यात्रा से वे अनेक सुखद यादें लेकर जा रही हैं और अपने देश लौटकर योग के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगी। अब कविता, बात करते हैं कुछ मुख्य परिणामों
1: जी
0: की।
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें अगर हम बात करें तो आर्टिस्टिक पेयर स्पर्धा के सब जूनियर महिला वर्ग में भारत की इशिका गुच्छेत और ईशानवी की जोड़ी ने 90.89 अंक प्राप्त कर स्वर्ण पदक जीता। जाम्बिया की निया विजय वर्गीय और आरुही लोखंडे को रजत तथा जापान की रेंका आओकी और इचिका शिमुजी को कांस्य पदक मिला। जूनियर महिला वर्ग में भारत की दीपा लोढ़ी और सीमा नियोपाने ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि नेपाल और जाम्बिया की जोड़ियों ने रजत और कांस्य पदक हासिल किए। जूनियर पुरुष वर्ग में अगर बात करें तो भारत के आयुष भौमिक और ओम देहंकर की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं रिदमिक पेयर सीनियर महिला वर्ग में भारत की इंदु माठूरिया और देवी ने स्वर्ण पदक जीता। उज्बेकिस्तान को रजत पदक, जबकि श्रीलंका और ओमान की जोड़ियों को संयुक्त रूप से कांस्य पदक प्रदान किया गया। लेग बैलेंस इंडिविजुअल सब जूनियर महिला वर्ग में भारत की शालिनी डेने ने स्वर्ण पदक जीता। हैंड बैलेंस इंडिविजुअल सब जूनियर पुरुष वर्ग में भारत के अर्थव सिंह नेगी स्वर्ण पदक विजेता बने, जबकि सीनियर महिला वर्ग में शिल्पा दास ने भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जोड़ा। बैकबेंड इंडिविजुअल स्पर्धा की अगर हम बात करें तो भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा देखने को मिला। सब जूनियर पुरुष वर्ग में गोकर्ण शर्मा, सब जूनियर महिला वर्ग में ऋषा शेट्टी, जूनियर पुरुष वर्ग में राज काजोल और जूनियर महिला वर्ग में अनिका राणा ने स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया।
1: जी बिल्कुल, और ये जिस तरह से हमारे जो प्लेयर्स हैं, अगर हम मेडल की बात करें तो अंतर तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इंडिया ने टोटल 114 पदक है वो जीते हैं, तो उसके तो दूर दूर तक अभी कोई कंट्री नहीं। और ये इस बात का प्रमाण है कि भारत में योग को कितना पसंद किया जाता है।
0: भारत निसंदेह जो है वो योग गुरु है।
1: बिल्कुल, और इसी विषय में, क्योंकि ये पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, अब आगे के लिए क्या कुछ संभावना है इस चैंपियनशिप में, हमने बात की है उदित सेठ से, जो कि प्रेसिडेंट है योगासन भारत के। क्या कहना है उनका, लीजिए सुनिए।
2: चैंपियनशिप जो हमने करी है, हिस्ट्री बना रही है, मतलब कि जगत में पहली बार ये स्तर पर योगासन वर्ल्ड चैंपियनशिप हो रही है पहली बार। और मेरा सौभाग्य है कि हम ये चैंपियनशिप हमने अहमदाबाद के हेरिटेज सिटी में एका अरीना में करी, जो इंडिया का पहला पीपीपी प्रोजेक्ट था। चैंपियनशिप में लगभग 75+ कंट्रीज आए थे, एग्जैक्टली 78, और 550 से ज्यादा एथलीट्स आए थे। ये जो चैंपियनशिप यहाँ पे हुई थी मैडम, हमारे लिए बहुत ही सक्सेसफुल चैंपियनशिप हुई थी। बहुत सफलता से हमने इसको एग्जीक्यूट करा। हमारे पूरे फेडरेशन का यहाँ पे प्रयास हुआ था, जिससे काफी कुछ पहली बार जो गलतियां हो सकती थी हमने इसको निपटा दिया, ताकि प्लानिंग में ही ये हम कर सकते हैं। यहाँ चैंपियनशिप के सफलता के लिए काफी रीजंस हैं। हमारा तो प्रयास और तपस्या तो थी, लेकिन पहले तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत बहुत हृदयपूर्वक साधुवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने

0: योग को इतने बड़े स्तर पर 10 साल पहले यूएन में इसको डिक्लेयर किया था एज ए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा. योग सबसे सबके जीवन में आए और उनका मानना ये था कि अगर योग को हम एक नई दृष्टि से देखें तो यूथ के साथ भी हम जुड़ सकते हैं. हमारा मकसद था कि योगासन स्पोर्ट को हम तैयार करें, ग्लोबली यूथ में जाए, हर एक कंट्री में जाए, ये अरब नेशंस हो या अफ्रीकन नेशंस हो या यूरोपियन अमेरिकन नेशंस हो, तो सब सबके साथ मिलके हमने इसको करा है. और हमारे साथ जुड़े थे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया डॉक्टर मनसुख भाई मंडाविया जी के लीडरशिप में, गुजरात गवर्नमेंट, हमारे प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र पटेल जी के नेतृत्व में, और हमारे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर्ष भाई संघवी जी जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन भी कर रहे हैं. और फिर यहाँ पे जो हमारे पूरा हमने सोचा कि हमको एक दृश्य दिखाना है कि योग और योगासन हमारा फेडरेशन इसके बीच में एक अच्छा सा सेतु बन जाए, आश्रम आश्रम टू अरीना. तो ये पूरा सोच हमने तैयार किया कि हाँ हमारा 5000 साल का जो हेरिटेज है वो हेरिटेज को हम पैकेज करके स्पोर्ट के रूप में एक मॉडर्न फेस की तरीके से हम दिखाएं.
1: तो योग की बात तो हो गई और अब चलते हैं हम उस कोर्ट पे जहां पर एक जो तकदीर है वो पलटती है और खिलाड़ियों का दिन बदलता है. मैं बात कर रही हूं यहां पर टेनिस की और यहां पर फ्रेंच ओपन में एक उलटफेर हुआ है. उलटफेर है कुछ ऐसी चीजों का जो मुझे लगता है कि एक इतिहास ही बन जाते हैं कई बार. तो बात करते हैं जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव की, जिन्होंने अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है. फ्रेंच ओपन 2026 के पुरुष सिंगल फाइनल में दूसरी सीड ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो को बोली से हुआ. 5 सेट तक चले मुकाबले में 29 साल के ज्वेरेव ने 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, 6-1 से इस पूरे ही टूर्नामेंट को अपने नाम किया और फाइनल मुकाबला 4 घंटे और 16 मिनट तक चला. ये इतना लंबा लंबा खेल जो है रेनू खेलते हैं और इनकी जो ये स्टैमिना है ये बताता है कि जब ये लोग खिताब जीते हैं तो उसके बाद जो खुशी होती है, आंखों में आंसू आते हैं, लेट जाते हैं पूरा, तो ये इस स्टैमिना के बाद एक खुशी हर कोई खिलाड़ी महसूस करता है. 24 साल के कोबोली का ये पहला ग्रैंड स्लैम फाइनल था. 10वीं सीड फ्लेविया कोबोली के खिलाफ अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने पहले सेट को आसानी से 6-1 से जीत लिया. दूसरे सेट में इन्होंने जो उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी थे वापसी करते हुए जीत हासिल की. फिर तीसरा सेट ज्वेरेव ने जीता और चौथी में कोबोली ने कड़ी टक्कर दी. टाई ब्रेकर को 7-5 से जीतकर इटालियन खिलाड़ी ने यह सेट अपने नाम किया. आखिरी सेट के पहले ही गेम में ज्वेरेव ने कोबोली का सर्विस ब्रेक कर दिया. 2-0 की बढ़त लेने के बाद उन्होंने दूसरा सर्विस भी ब्रेक किया और कोबोली की उम्मीद पर पानी फेर दिया. अंत में उन्होंने सेट को 6-1 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया. अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 89 साल बाद कोई जर्मन पुरुष खिलाड़ी चैंपियन बना है. अलेक्जेंडर फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले ओपन एरा के पहले जर्मन खिलाड़ी हैं. 89 साल के पहले आखिरी बार रोलैंड गैरोस का चैंपियन कोई जर्मन पुरुष खिलाड़ी बना था, तब हेनर हेनकेल ने 1937 में खिताब जीता था.
2: और कविता, इसके साथ साथ आज एथलेटिक्स की दुनिया से भी एक ऐसी सनसनीखेज
1: खबर, ये जो है मुझे पता है कि आप बहुत उत्सुक हैं इसको सुनाने के लिए, लेकिन एथलेटिक्स के ग्राउंड में हम चलेंगे. लेकिन उससे पहले हम यहाँ सुनेंगे ज्वेरेव के उन इमोशंस को जो उन्होंने जीत के बाद
2: बताए. बिल्कुल बिल्कुल.
3: I mean, it's the world, as you said. This court has been with some of my most special memories, but some also my biggest heartbreaks. You know, laying on the floor with 7 broken ligaments and, you know, 2 fractured bones, and then also losing the final 2 years ago here against Carlos. These are all tough moments that you remember. And I felt like throughout the two weeks I was managing my emotions extremely well. I was playing well in important moments. I felt like today I didn't. I was a lot more nervous. I feel like the match was a lot more up and down from my side. But at the end of the day, the most important thing was the 5th set. And I won that. And I'm happy to be holding this.
2: बिल्कुल कविता, बहुत ही शानदार ये जो मैच था जिसकी आपने बात की. और एथलेटिक्स की दुनिया में अब हम कदम रख ही लेते हैं जैसा आपने कहा था, तो इस दुनिया में आ रही है एक ऐसी सनसनीखेज खबर जिसने खेल प्रेमियों को दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर कर दिया है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में आयोजित स्टॉकहोम डायमंड लीग 2026 की, जिसमें

0: वो हो गया है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने की थी। चलिए सीधे रुख करते हैं ट्रैक एंड फील्ड के उन ऐतिहासिक पलों की ओर जिसने इतिहास की किताबों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया है। महिला 800 मीटर दौड़ में स्टॉकहोम डायमंड लीग ने एथलेटिक्स जगत को एक ऐसा मुकाबला दिया जिसे वर्षों तक याद रखा जाएगा। स्विट्जरलैंड की 22 वर्षीय एथलीट आंड्रे वेरो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1:53.98 का समय निकाला और इतिहास रच दिया। यह समय पिछले 43 वर्षों में सबसे तेज प्रदर्शन माना जा रहा है और महिला 800 मीटर के इतिहास का तीसरा सर्वश्रेष्ठ समय है। इस रोमांचक दौड़ में ओलंपिक चैंपियन और ब्रिटेन की स्टार धाविका किली हास्किंसन भी पीछे नहीं रही। उन्होंने 1:54.33 का समय निकालकर नया ब्रिटिश राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दूसरे स्थान से ही संतोष करना पड़ा। हॉस्किंसन का यह प्रदर्शन भी इतिहास के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में गिना जा रहा है। आंड्रे वेरो की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि इसी वर्ष विश्व इंडोर चैंपियनशिप में उन्हें किली हास्किंसन से हार कर रजत पदक से संतोष करना पड़ा था। स्टॉकहोम में उन्होंने न केवल उसका बदला लिया बल्कि अपने करियर की सबसे बड़ी जीत भी दर्ज की। वहीं अगर एक और बड़े उलटफेर की बात करें तो वो है मोंडो डुप्लांटिस की चौंकाने वाली हार। पोल वॉल्ट के किंग और घरेलू दर्शकों के चहेते अरमांड मोंडो डुप्लांटिस को अपने ही घर में बड़ा झटका लगा। पिछले 3 सालों से लगातार 40 प्रतियोगिताओं में अजेय रहे डुप्लांटिस सिर्फ 5.80 मीटर ही कूद सके। ऑस्ट्रेलिया के कर्टिस मार्शल ने 5.90 मीटर की छलांग लगाकर मोंडो की बादशाहत को खत्म किया और एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। तो कविता, खेल के मैदान में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये इस बात का एक साफ संकेत है।
1: बिल्कुल, और इस संकेत के साथ हम अब लिए चलते हैं उस खेल की तरफ जिसे कहा ही ये जाता है कि वो अनिश्चितताओं का खेल है। जी हाँ, बात कर रही हूँ क्रिकेट की, और क्रिकेट में भी कुछ ऐसे ही रिकॉर्ड जो है वो कई बार बन जाते हैं जो कि हमेशा याद रह जाते हैं। भारत ने अफगानिस्तान को एकमात्र टेस्ट मैच में जो कि खेला गया था कल पारी और 300 रनों से हराया। भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित की थी और अफगानिस्तान की पहली पारी तीसरे दिन 152 रन पर ऑल आउट कर दिया। भारत को इस तरह 412 रनों की बढ़त मिल गई और टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को फॉलो ऑन दिया। अफगानिस्तान की दूसरी पारी में बल्लेबाजी बेहद खराब रही और टीम 112 रन ही बना पाई। अफगानिस्तान ने दूसरी पारी में 9 विकेट गंवाए थे लेकिन अशरफ बल्लेबाजी के लिए नहीं उतरे। भारत के टेस्ट पारी के अंतर से यह सबसे बड़ी जीत है और भारतीय टीम ने महज तीसरे ही दिन एकमात्र टेस्ट जो है वो अपने नाम कर लिया। भारत और अफगानिस्तान के बीच ये मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन अंक तालिका में जरूर यहां पर जो है थोड़ा सा फायदा मिल सकता है। और इस मैच में जो सबसे ज्यादा कारनामा किया है डेब्यू करने वाले स्पिनर गेंदबाज मानव सुथार ने शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने पहली पारी में 6 विकेट लिए और दूसरी पारी में 1 विकेट चटकाया। दूसरी पारी में भारत के लिए वॉशिंगटन सुंदर ने 4 विकेट झटके जबकि कुलदीप यादव को 3 विकेट मिले। सिराज भी 1 विकेट लेने में सफल रहे। अब अफगानिस्तान की बल्लेबाजी तो खराब रही जैसे मैंने बताया और अब इन दोनों टीमों के बीच 13 जून से जो है वो 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। इसी के साथ क्रिकेट की जो एक और खबर है उसको हम बताएंगे क्योंकि इंडिया ए और श्रीलंका ए का जो अभी फिलहाल मैच चल रहा है उसमें इंडिया ए ने अपनी फर्स्ट इनिंग में 277 रन बनाए थे 6 विकेट पर। और इसके बाद अगर हम श्रीलंका का खेल देखें यहां पर रेनू, तो श्रीलंका ऑलमोस्ट इस मैच को जीतने के नजदीक पहुंच गई है। श्रीलंका ने अभी अभी फिलहाल श्रीलंका के पास 19 बॉल बाकी हैं और 18 ही रन उनको बनाने हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि श्रीलंका ए इस मुकाबले को यहां पर जीत जाएगी क्योंकि अनिश्चितताओं का खेल भले ही कहते हैं लेकिन यहां तो लक पूरा पूरा और श्रीलंका ए के फेवर में ही जा रहा है क्योंकि इंडिया फिलहाल यहां हारने की सिचुएशन में ऑलमोस्ट पहुंच चुकी है और इनके पास विकेट भी बाकी है। तो 17 रन की और इनको जरूरत है, 18 बॉल्स बाकी हैं। चलिए चलते हैं हम यहां पर आर्चरी के तरफ और आर्चरी की खबर के लिए रेनू मेरे सहयोगी तैयार है।
0: जी हां बिल्कुल कविता, तुर्की के अंताल्या शहर से एक बड़ी रोमांचक खबर आ रही है। तीरंदाजी महाकुंभ यानी आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 स्टेज 3 का बिगुल बज चुका है। तुर्की के अंताल्या में आज से विश्व तीरंदाजी कप का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। यह प्रतियोगिता 9 से 14 जून तक चलेगी और एशियाई खेलों की तैयारी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर इसके शेड्यूल की बात करें तो 9 जून को कंपाउंड के क्वालिफिकेशन राउंड, 10 जून को कंपाउंड के टीम एलिमिनेशन और रिकर्व के क्वालिफिकेशन राउंड होंगे, 11 जून को रिकर्व के टीम एलिमिनेशन और कंपाउंड और रिकर्व के मिक्स्ड एलिमिनेशन राउंड होंगे, 12 जून को इंडिविजुअल एलिमिनेशंस होंगे कंपाउंड और रिकर्व के, 13 जून को फाइनल का कंपाउंड का फाइनल और 14 जून को रिकर्व का फाइनल होगा। अगर टीम की बात करें तो

भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो इसमें कंपाउंड मैन की अगर हम बात करें तो इसमें ऋषभ यादव, कुशल दलाल, साहिल जाधव, गणेश एमआर, थिरुमुरु होंगे। वहीं कंपाउंड वुमेन की अगर बात करें तो उसमें ज्योति सुरेखा वेन्नाई, वेन्नम, परनीत कौर, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तानी पार्थी रहेंगी। रिकर्व मैन की अगर बात करें तो उसमें धीरज बोमा देवारा, अतानु दास, यशदीप भोगे और नीरज चौहान रहेंगे। और रिकर्व विमेन में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत, कुमकुम अनिल मोहदो और कीर्ति शर्मा रहेंगी।

0: और खेलों का सिलसिला लगातार जारी है। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में बात करते हैं अब यहाँ पर रेसलिंग की। भारतीय पहलवानों ने उलन बतार ओपन 2026 कुश्ती टूर्नामेंट का शानदार समापन किया है। इसमें आखिरी दिन दिनेश धनखड़ ने 125 किलोग्राम और दीपक ने 61 किलोग्राम में अपने अपने पुरुष फ्री स्टाइल में स्वर्ण पदक जीता। 25 वर्षीय दिनेश धनखड़ ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया और फाइनल में कजाकिस्तान के अंडर-20 विश्व चैंपियन ये दिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण अपने नाम कर लिया। इससे पहले दिनेश ने क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के विश्व चैंपियन कांस्य पदक विजेता रॉबर्ट बारान को 5-1 से हराया था। इसके बाद सेमीफाइनल में तिमूर को ताएव को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर 11-0 से मात देकर फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दीपक ने भी अपने मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को 6-0 से हराकर पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारत ने 2 कांस्य भी अपने नाम किए। पुरुषों के 57 किलोग्राम में सुमित ने क्वार्टर फाइनल में हार के बाद शानदार वापसी करते हुए कांस्य पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के अबजल को 6-3 से हराया। इससे पहले सुमित ने शुरुआती मुकाबले में दक्षिण कोरिया के सागबोम हान को तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर हराया था। वहीं मोहित कुमार ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता। उन्होंने पदक मुकाबले में कजाकिस्तान के खिलाड़ी को हरा दिया। मोहित ने रेपचर्स राउंड में अमेरिका के क्रिस्टोफर को मेडल की रेस में खुद को बनाए रखा था। तो पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में एशियाई खेलों के लिए चयनित सागर जगलान ने 74 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। वहीं महिला कुश्ती की अगर बात करें तो यहां पर महिला कुश्ती में काजल ढोचक ने 76 किलोग्राम, मनीषा भनवाला ने 57 किलोग्राम, नेहा सांगवान ने 59 किलोग्राम में अपने अपने भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल करके भारत का दबदबा बनाए रखा। ग्रीको रोमन शैली में सुनील कुमार 87 किलोग्राम और नीतीश कुमार 97 किलोग्राम ने प्रतियोगिता के पहले ही दिन स्वर्ण पदक जीतकर भारत के अभियान की शानदार शुरुआत की थी। अब ये जो चैंपियनशिप है इसमें जो रैंकिंग का ये तीसरा टूर्नामेंट था और इसी के साथ क्योंकि जो ये कार्यक्रम है समाप्ति की ओर है और इसी के साथ मेरी सहयोगी तैयार है एक और खबर के साथ।
1: मैं उलान बतार वाली ही न्यूज में एक चीज ऐड करना चाहूंगी कविता कि ये जो रैंकिंग सीरीज है इस साल होने वाले 2026 एशियाई खेलों के लिए भारतीय पहलवानों के लिए एक बेहतरीन तैयारी का मंच भी साबित हुई है और इस ऐतिहासिक प्रदर्शन से न केवल देश के पहलवानों की विश्व रैंकिंग में सुधार होगा बल्कि आगामी वैश्विक प्रतियोगिताओं के लिए उनका मनोबल भी 7वें आसमान पर पहुंचेगा।
0: और मनोबल 7वें आसमान पर तो पहुंच ही रहा है जिस तरीके से हम लगातार यहाँ पर खेलों की बात कर रहे हैं। अब क्योंकि सबसे बड़ा रोमांच जो है वो होने वाला है क्योंकि महिला जो एक वर्ल्ड कप है वो भी आने वाला है, इसके साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप भी आने वाला है और दोनों ही इतने बड़े बड़े इवेंट का जो लुत्फ है हमारे जो खेल प्रेमी है वो लगातार उठाते हैं और हम भी अपने इस कार्यक्रम के द्वारा उन तक वो सभी जानकारी ताजा मैं कहूंगी लेटेस्ट अपडेट जो है वो लेकर अपने इस कार्यक्रम में आते हैं। तो अब क्योंकि समय जो है रेनू खत्म हो चुका है हमारे कार्यक्रम का ऑलमोस्ट, तो अपने सभी श्रोताओं को नमस्कार बोलने का समय है। तो अपने प्रोड्यूसर शहनवाज खान के साथ मेरी सहयोगी
1: रेनू गुप्ता
0: और कविता शर्मा को दीजिए अनुमति,
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा।

0: पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। यह 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। अमरीका के एक संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रस्तावित $1,00,000 के H-1B वीजा शुल्क को रद्द करते हुए इसे गैर कानूनी करार दिया है। इससे कई कुशल भारतीय पेशेवरों को फायदा होगा। पिछले साल सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा आवेदन शुल्क को लगभग 2,000 से बढ़ाकर $1,00,000 करने की घोषणा की थी। श्रीलंका के दामोला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 278 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में श्रीलंका ए ने ताजा समाचार मिलने तक 48 ओवर में 7 विकेट पर 268 रन बना लिए हैं। इससे पहले भारत ने ऋतुराज गायकवाड़ के 101 रन की बदौलत निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए थे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, External Affairs spoke.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 6:30 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: और उसके खूबसूरत जो फूल होते हैं वो पल भर में मुरझा जाते हैं। गर्मियों के इस कड़े मौसम में पौधों को किस तरह की एक्स्ट्रा केयर या कि रख रखाव की हम बात करें कि जरूरत होती है, उन्हें कब और कितना पानी देना चाहिए, तेज धूप से कैसे बचाना है, और इस मौसम में कौन सी खाद या उर्वरक का इस्तेमाल करना सही रहेगा, इन्हीं सब जरूरी बातों पर चर्चा करने के लिए आपके
1: जी
0: सीधे
1: हाँ,
0: सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं।
1: जी हाँ, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के पुष्प विज्ञान वृक्ष सज्जा विभाग से जुड़े हुए हैं। ये है डॉक्टर मार्किंड सिंह जी, और ये यहाँ पर अध्यक्ष है। और साथ ही हमारे जो दूसरे आज के जो दूसरे हमारे
0: विशेषज्ञ हैं
1: विशेषज्ञ हैं,
0: डॉक्टर
1: वो
0: ऋतु
1: डॉक्टर
0: जैन जी
1: ऋतु
0: हैं।
1: जैन,
0: जरूर
1: जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के पुष्प विज्ञान में भू भू दृश्य संभाग में ये
0: कार्यरत हैं
1: जी हाँ कार्यरत है,
0: और
1: और ये
0: इनके साथ
1: प्रधान वैज्ञानिक है,
0: बिल्कुल,
1: ये हम बताना आपको जरूर बोलना चाहेंगे। और आज
0: और
1: हाँ
0: कार्यक्रम का संचालन जो इनसे बातचीत कर रही है वो हमारे वरिष्ठ साथी नीलम मदान जी कर रही हैं। तो साथियों, अगर आपके मन में भी अगर घर के बगीचे, बालकनी के पौधे या फूलों की देखभाल को लेकर कोई भी सवाल है तो हमारे फोन नंबर्स पर तुरंत कॉल मिलाइए और उनसे सीधा हमारे जो एक्सपर्ट जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे उनके जो समाधान है वो पा सकते हैं आप। तो आज के हमारे जो फोन नंबर हैं वो हैं 2342-1080, और दूसरा हमारा फोन नंबर है 2342-1082।
1: जी, हम
0: यानी
1: आपको फिर से अपने फोन नंबर को रिपीट कर दें और बता दें, हमारा जो आज का जो फोन नंबर है वो है 2342-1082, और दूसरा जो नंबर है वो है 2342-1080। और हम आपको बता दें कि अगर आप दिल्ली का जो हमारा पिन कोड है वो है 011, तो जी हाँ ये है 011, आप हमें फोन कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल है फूलों से जुड़े, उनकी देखभाल से जुड़े, आप हमसे पूछ सकते हैं।
0: चलिए, आप अपने सीधे ना देर करते हुए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं और करते हैं अपने कार्यक्रम का आगाज।
2: नमस्कार, स्वागत है आपका। विशेष फोन इन कार्यक्रम है आज, और आज का विषय है कि गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रख रखाव हम कैसे करें। जी हाँ, शुरू में ही जो कहा गया था कि उफ ये गर्मी कब जाएगी, उफ ये गर्मी कब जाएगी, फूलों के मुख कुंभलाए हैं, जीव जंतु सब घबराए हैं, हर कोई पूछे यही सवाल, उफ ये गर्मी कब जाएगी। लेकिन हम सब जानते हैं, मौसम आते हैं चले जाते हैं, गर्मी जाएगी बारिश आएगी, बारिश जाएगी शरद ऋतु आएगी, फिर आएगा सर्दी, इस तरह से मौसम बदलते रहते हैं। जरूरी है कि हम हर मौसम के हिसाब से अपना भी ध्यान रखें और अपने फूलों का ध्यान रखें, बगीचों का ध्यान रखें, क्योंकि जब तक फूल रहेंगे धरती पर हम सब बने रहेंगे, ये भी सच है। और साथ में ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आज फूलों की खेती एक वाणिज्यिक खेती के रूप में उभर रही है, एक भरा पूरा व्यवसाय है जिसमें अपार संभावनाएं हैं बेरोजगार लोगों के लिए, अपार संभावनाएं हैं उन लोगों के लिए जिनके पास संसाधन भले कम हो लेकिन यदि वो चाहते हैं इसकी खेती करना तो कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और आज जो हमारा विषय है उससे संबंधित जो विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर मार्कंडे सिंह, आप अध्यक्ष हैं पुष्प विज्ञान एवं भू दृश्य निर्माण संभाग पूसा से, और साथ में डॉक्टर ऋतु जैन, आप प्रधान वैज्ञानिक है पुष्प विज्ञान एवं भू दृश्य निर्माण संभाग पूसा नई दिल्ली से। और एक बार आपको वैसे फोन नंबर बताए गए हैं, मैं बताना चाहती हूँ, 2342-1082, और दूसरी हमारी फोन लाइन खुली है 2342-1080। और पहले आप इससे अगर जो बाहर से फोन कर रहे हैं, दिल्ली का जो हमारा पिन कोड है वो लगाएं, वो है 011, 2342-1082, 2342-1080। तो हम शुरू करते हैं कि गर्मियों में हम फूल और बगीचों का कैसे उचित रख रखाव करें। डॉक्टर ऋतु, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर मार्कंडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद।
2: जी डॉक्टर ऋतु, आपसे शुरू करती हूँ कि जैसे कि देखिए जो अभी गर्मियाँ चल रही हैं, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस समय कौन से फूल खिले हुए हैं।
3: जी नीलम जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आजकल अगर हम बात करें फूलों की, तो जो हमारे गर्मी के मौसम के फूल हैं उनमें सबसे प्रमुख हैं सूरजमुखी, कोचिया, जीनिया, टिथोनिया, कॉस्मोस, केलाडिया, इस तरह के जो ये हमारे वार्षिक फूल या सीजनल फ्लावर जिसे हम कहते हैं मौसमी फूल, तो गर्मी के मौसम के ये फूल हैं और ये आजकल

0: पुष्पन हो रहा है क्योंकि तापमान बहुत बढ़ गया है, इसलिए सब फूल फ्लावरिंग में आ गए हैं। और ज़्यादा गर्मी होने की वजह से क्या है कि आपको पानी का जो रख रखाव है इस समय बहुत ज़्यादा उचित प्रबंधन करने की आवश्यकता है। और ये जो फूल हैं ये हम सिर्फ खेत में ही या क्यारी में ही नहीं लगाते, जबकि जो शहर में रहने वाले लोग हैं उसको ज़्यादातर गमलों में लगाते हैं। तो गर्मी में इन फूलों को गमलों में जो जिन्होंने लगा रखे हैं वो उनसे छायादार जगह पर रखेंगे तो भी गर्मी से उन फूलों को बचाया जा सकता है।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ऐसे ही जो हमारे बगीचे हैं, जी हेलो,
0: हेलो,
1: क्या
0: हाँ
1: हेलो, हाँ
0: जी,
1: हम जी देखिए कितनी अच्छी बात है, हमसे हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो
0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका?
0: मैम गीता शर्मा, जिला संभल से यूपी से बोल रहे हैं सर। मैम, हाँ
1: अच्छा गीता जी, पूछिए क्या प्रश्न है आपका।
0: मैम, प्रश्न ये है कि हमारे घर गुलाब का मतलब पेड़ लगे हुए हैं
1: अच्छा
0: मैम, फूल नहीं आ रहे हैं इस समय, तो
1: हाँ, जी डॉक्टर
0: पत्ते
1: मार्कंडे
0: झुलस रहे हैं, मतलब जल से रहे हैं पत्ते। जी
2: गीता जी, अभी शुरुआती दौर में ही बताया गया कि दिन प्रतिदिन जो है कि वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है,
0: जी
2: और गुलाब यदि देसी गुलाब होगा या हाइब्रिड गुलाब होगा, दोनों गुलाब में ये देखा गया है कि इस तापक्रम पे जो आपको सामान्य ये दिख रहा है कि इसकी पत्तियां जो है कि झुलस रही हैं, उसका सिर्फ कारण ये है कि तापमान जो है कि बहुत बढ़ता जा रहा है। तो इसके लिए मैं सुझाव दूंगा कि यदि गमले में आपके पौधे हों या क्यारी में पौधे हों, तो उसमें एक तो नमी बना करके आप रखें, और यदि संभव हो ज़्यादा पत्तियां जल रही हो, तेज धूप उसके ऊपर पड़ रही हो, तो 25% का जो है शेडिंग नेट, ग्रीन कलर का आता है, यदि उसके ऊपर डाल देंगी तो ये इस जून के लास्ट में जो है कि मानसून दिल्ली के अंदर आ जाएगा, संभावना है। उसके बाद नेट को आपको हटा देना है। फिर अक्टूबर का जब महीना आएगा तो आप प्रूनिंग कीजिए, और प्रूनिंग करने के 60 से 70 दिन के बाद देखेंगी तो आपको अच्छा पुष्पन उस पर मिलेगा।
0: एक चीज मैं भी इसमें ऐड करना चाहूंगी,
1: जी
0: अगर इन्होंने ये जो पौधे हैं गुलाब के बाहर लगा रखे हैं तो ये एक जो पलवार जिसे कहते हैं मल्चिंग भी पौधों
1: हाँ
0: में कर सकते हैं, ताकि जो मॉइस्चर लॉस है पानी दें तो पानी का जो वाष्प बनकर उड़ जाता है वो कम हो, तो पानी का वाष्पीकरण कम होगा, पानी ज्यादा देर तक पौधों में अवेलेबल रहेगा तो आपके पत्ते मुरझाएंगे नहीं और झुलसेंगे नहीं।
1: तो वो
0: और
1: जब
0: पानी जो है वो ज्यादातर ध्यान रखें कि सुबह और शाम के वक्त पानी दें, दिन के वक्त पौधों को बिल्कुल भी पानी ना दिया जाए।
1: जी, वरना आप सूरज को पानी दे रहे हैं
0: जी
1: जी। तो और ये बताए, देखिए अगर वो जो आप मल्चिंग की बात कर रही हैं
0: जी
1: तो वो अक्सर घरों में वो कैसे, मतलब उनके पास कोई जैसे सूखे पत्ते हों उनसे
0: हाँ,
1: कैसे
0: सूखे
1: करें?
0: पत्ते हैं, घास है,
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: फिर
1: हाँ
0: वो चावल की जो पराल होती है उससे,
1: अच्छा
0: तो इस तरह की जो ऑर्गेनिक मल्चिंग है वो कर सकते हैं। नहीं तो आजकल तो कोकोनट के फाइबर की भी, कॉयर की भी मल्चिंग मिलती है, अवेलेबल होती है, तो वो
1: अच्छा
0: भी यूज कर सकते हैं।
1: हाँ
0: और
1: हाँ
0: अगर
1: हाँ
0: बड़े स्केल पे लगा रखा है तो प्लास्टिक के मल्च भी आते हैं सिल्वर कलर के, जिससे कि रिफ्लेक्शन अच्छा होगा, पानी आपका मॉइस्चर अच्छा रिटेन रहेगा और गर्मी से आपके पौधे जो हैं वो प्रताड़ित नहीं होंगे।
1: जी, जो व्यावसायिक रूप से फूलों की खेती कर रहे हैं, क्यों मार्कंडे साहब
2: हाँ
1: जी, जो व्यावसायिक रूप से कर रहे हैं तो उन्हें क्या, मतलब बड़ा खेत है उन्हें कैसे ध्यान, जैसे मैम कह रहे हैं कि वो एक प्लास्टिक की भी आजकल एक मल्चिंग आती है।
2: बिल्कुल, देखिए मल्चिंग जैसे यदि व्यवसायिक तरह से जो है कि गुलाब के फूल की बात की जाती है, तो वो एक खुले खेत में होती है और एक पॉली हाउस में होती है।
1: जी।
2: पॉली हाउस के अंदर जब हम गुलाब की खेती करते हैं तो वो कट फ्लावर्स टाइप के गुलाब होते हैं, और उसमें हम मल्चिंग को नहीं करते हैं। उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे जो है कि उसमें हम प्लांट्स को लगाते हैं,
1: जी
2: और एक बार जो प्लांटेशन होता है लगभग जो है 6 से 7 साल के लिए चलता है।
1: जी
2: लेकिन जो ओपन फील्ड में गुलाब को लूज फ्लावर्स के लिए
1: जी
2: या कट फ्लावर्स के लिए लगाते हैं, तो उसमें हम मल्चिंग ऑपरेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं।
1: जी
2: जी
1: जी हम फिर इस पर चर्चा करेंगे,
2: जी
1: हमारे साथ श्रोता जुड़ रहे हैं। हेलो
0: हेलो, नमस्कार मैम।
1: नमस्कार जी, नाम बताएं, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: मैं गोपाल भारद्वाज, जिला मालवा से बोल रहा हूँ।
1: अच्छा गोपाल जी, पूछिए।
0: मैं मेरे 3 क्वेश्चन थे छोटे। मैं
1: हाँ,
0: पहला क्वेश्चन है, तुलसा जी कहा रहे हैं मैम, तुलसी हमारे यहाँ तो मैम उसमें मैम वो झुलस रहे हैं, पत्ते जल रहे हैं और हम कुछ खास पत्ते भी नहीं आ रहे।
1: अच्छा
0: दूसरा मैम ये है कि हमारे यहाँ पहाड़ी पर लगे, तो मैम उसके पत्ते बढ़ने रहे हैं जहाँ जा रहे हैं,
3: और तेजस

0: जैसे कि हम व्यवसाय खेती करना चाहें तो मैं हमें ये नहीं पता कि फूल कहाँ बेचेंगे या कुछ इस बारे में कुछ बताएं।
1: अच्छा जी, पहला सवाल आपका तुलसी के बारे में था जी।
2: गोपाल जी, अभी पहले भी बताया गया कि इस समय जो है कि तापमान बहुत बढ़ता जा रहा है, और जैसे गुलाब पे बताया गया कि उस पे आप सुबह शाम जो है कि पानी दें और उसकी देख रेख करने के लिए यदि ग्रीन नेट आपके पास हो तो थोड़ा सा उसके ऊपर डाल दें। और तीसरा जो है कि जैसे हमारे साथी डॉक्टर ऋतु जैन ने बताया कि मल्चिंग के लिए जो है, तो मल्चिंग भी यदि सूखी पत्ती हो और या पुआल हो तो उसके जड़ के आसपास सुखा सकते हैं और उसको डाल देंगे तो उसमें नमी बनी रहेगी। लेकिन सिर्फ ध्यान ये देना है कि इस टाइम पे यदि आप मल्चिंग कर देते हैं, नमी नहीं देंगे, तो चांसेज होता है कि टर्माइट जो दीमक होती है नीचे से ऊपर आ जाती है। तो मल्चिंग जब भी करें तो नमी बना करके रखें, और नहीं तो उस सूखे पत्तों को खाने के लिए दीमक जो है कि जमीन से ऊपर आ जाएगी। तीसरा आपका सवाल था कि यदि किसी भी फूल का खेती व्यवसायीकरण करना है तो आपको कहाँ पे बेचना है, कैसे इसकी खेती करना है, इन सब चीज़ों के लिए आप प्रशिक्षण जरूर लें। आपके आसपास जो कृषि विज्ञान केंद्र हो या कोई कृषि विश्वविद्यालय हो या कोई कृषि महाविद्यालय हो, वहाँ के उद्यान विभाग में जो है कि आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली या ICR की जो कुछ संस्थान हैं जो फ्लोरिकल्चर के ऊपर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती हैं, उस प्रशिक्षण में भी भाग लेकर के फूलों की खेती करने के तरीके से लेकर के उसका पैकेजिंग कैसे होगा, उसका मार्केट आपको कहाँ पे मिलेगा। जैसे यदि मार्केट की यदि हम बात करते हैं तो इंडिया में सबसे बड़ा जो फूल का मार्केट है गाजीपुर मार्केट है जो है, वहाँ पे भी आप इसके लूज फ्लावर्स को, कट फ्लावर्स को, उसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे माला बना करके ये सारी चीज़ों को बेच करके और अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर मार्कंडे ने सारी वो कड़ियाँ बताई हैं जो आप प्रशिक्षण के जरिए आप सीख सकते हैं। आपने पूछी अंतिम कड़ी जो कि मार्केटिंग था।
2: मार्केटिंग
1: जी
2: करनी
1: जी
2: है
1: और वाकई हम जब भी खेती करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि उसके लिए बाजार हो, हमारी सारी मेहनत सफल हो। और अब हम डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हमारे साथ श्रोता और जुड़े, हम जानना चाहेंगे कि जो गुलदाउदी है उसके लिए अभी हमें उसके लिए जो प्लांटिंग मटेरियल या प्रवर्धन सामग्री है वो कैसे तैयार करनी है।
3: जी। क्योंकि अब बरसात का मौसम आने वाला है तो अब ये बिल्कुल उचित समय है कि हम गुलदाउदी का प्रवर्धन करना शुरू कर दें। तो गुलदाउदी का प्रवर्धन जो है वो कटिंग से होता है, टर्मिनल कटिंग उसे बोलते हैं,
1: जी
3: और 6 इंच की टर्मिनल कटिंग जो है वो हम जब रूट हो जाती है तो हम उसको खेत में लगा देते हैं तैयार होने के बाद। तो इसके लिए क्या करना है कि जो पौधा है, जो मदर ब्लॉक जिसे हम बोलते हैं, जो कि हमने स्पेशली कटिंग के लिए ही पौधे रखे होते हैं जिससे सिर्फ कटिंग बनाते हैं, तो
1: जी
3: मदर ब्लॉक से आप टॉप वाली जो कटिंग है पिंचिंग करके टॉप से कटिंग निकाल लेंगे, और उसको निकालने के बाद उसे हम ग्रोथ रेगुलेटर NAA या IBA किसी से भी ट्रीट करके उसे हम मीडिया में लगाते हैं। या तो हम रेत में लगा सकते हैं, नहीं तो कोकोपीट वर्मिकुलाइट और परलाइट का मीडिया होता है 1:1:1 के रेशो में, तो
1: जी
3: उसमें हम उसका कटिंग को लगा देते हैं रूटिंग हार्मोन में डिप करने के बाद। और जहां पर भी हम इस कटिंग को लगाएंगे वहां हम ये सुनिश्चित करें कि वहां पर पानी का प्रबंधन अच्छा हो, पानी रुके नहीं और पानी की कमी भी ना हो। तो हम जो है कटिंग लगाते हैं जनरली शेड नेट स्ट्रक्चर्स में लगाते हैं जहां पर हमारे पास मिस्टर्स की फैसिलिटी होती है। अगर मिस्टर नहीं भी है तो भी हमें इन्हें टाइम टू टाइम जो पानी है वो देखते रहना है कि पानी की अधिकता भी ना हो और कमी भी ना हो।
1: जी हम डॉक्टर ऋतु जैन इसके बारे में अभी चर्चा करेंगे।
3: जी
1: बहुत महत्वपूर्ण है ये। और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं, उनसे जान लेते हैं। हेलो
0: हेलो, नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार।
0: मैम मैं गोपाल बोल रहा हूँ मैम, बागपत से। मैम
1: अच्छा जी, बताएं।
0: दो सवाल है मेरे, छोटे छोटे बहुत।
1: अच्छा जी, पूछिए।
0: मैम कड़ी पत्ते के बारे में मैम, दादा
1: कड़ी
0: तो
1: पत्ते में क्या मुश्किल है।
0: मैम कहते हैं ये है कड़ी पत्ता है हमारे अच्छा भाव हो यार, लेकिन मैम उसके पत्ते अब मैम जुलूस आया गिर रहे हैं। और
1: जी
0: मैम जुलूस
1: जी
0: सवाल एक और है, जुलूस सवाल मैम पहाड़ी पालक है एक,
1: क्या दूसरा सवाल क्या है आपका।
0: मैम पहाड़ी पालक है, पहाड़ी पालक
1: पहाड़ी पालक।
0: जी, तो मैम उसके पत्ते बढ़ रहे हैं जहाँ से तहाँ रह रहे हैं मैम, बढ़ रहे हैं उसके पत्ते।
1: अच्छा बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है जी।

0: गोपाल जी, जो पहला सवाल आपका है कि कढ़ी पत्ते के पौधे के जो पत्ते हैं, पत्ते का आकार जो है कि छोटा हो रहा है, तो इसमें जैसे हम लोग शुरुआती दौर में ही बोले कि तापमान जो है कि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, ये देखेंगे कि मानसून जैसे जून के महीने में आ जाएगा तो जो पत्ते का आकार है वो जो है कि बड़ा हो जाएगा, और जो रंग भी उसका जो है डल कलर इस टाइम दिख रहा है, ग्रीन नहीं है, वो भी हो जाएगा। दोनों चीजें जो है कि वातावरण से बनी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, और इसमें आप नमी बना करके पौधे का जो है कि थाला बनाइए, और थाले बना करके उसमें नमी बना करके रखिए जो है, और इंतजार कीजिए जैसे मानसून आएगा इसके पत्ते का आकार बड़ा हो जाएगा। सेम चीज यही कहूंगा पहाड़ी पालक के लिए भी, ये भी तापमान से जो है कि बिल्कुल ही रिलेटेड है, और इसमें भी नमी बना करके रखें। अब मानसून आने पे दोनों जो आपको चीजें दिख रही हैं, कड़ी पत्ते में और पहाड़ी पालक में, दोनों में जो है कि समस्या का समाधान हो जाएगा।
1: जी बिल्कुल सही बात है, हम सब जान रहे हैं, देख रहे हैं और बार बार हम यही कह रहे हैं कि अपने पौधों में हम नमी बनाए रखें। और डॉक्टर ऋतु जैन, चर्चा चल रही थी कि कैसे गुलदाउदी की कटिंग से हम प्रवर्धन कर सकते हैं इस समय जो लोग व्यावसायिक रूप से खेती कर रहे हैं।
2: जी, तो जैसे मैंने बताया आपको कि मदर प्लांट्स
1: हाँ
2: प्लांट्स
1: जी
2: ये शीर्ष सिनोचन करके ऊपर वाली जो कटिंग है, कोमल कोमल कटिंग है, 4-5 इंच तक की कटिंग आपको तोड़ लेनी है, और तोड़ने के बाद उसे हमें इमीडिएटली, एक तो पहले तोड़ने के बाद उसको छाया वाली जगह पे रखना है। ये ध्यान रखना है हमें कि
1: जी
2: ज़्यादा तापमान ना हो, क्योंकि अधिक तापमान वाली जगह पे रखेंगे तो कटिंग खराब हो जाएगी। तो
1: जी
2: इसके लिए हम कटिंग को छाया वाली जगह पे रखेंगे, किसी गीले कपड़े में रखेंगे, और उसके बाद जो हमारा मीडिया है उसको हम पहले से ही तैयार करके रखेंगे। तो मीडिया के लिए हम रेत का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर हमारे पास आर्टिफिशियल मीडिया है जैसे कोकोपीट परलाइट और वर्मिकुलाइट है, वो उसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं।
1: मैं आपको फिर रोकना चाहूंगी,
2: जी
1: माफी चाहती हूँ। हेलो हेलो
3: नमस्ते मैम,
1: जी, नमस्ते, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है?
3: अशोक कुमार शर्मा, बुलंदशहर।
1: अच्छा अशोक जी, पूछिएगा।
3: मेरा सवाल मैम ये, सूरजमुखी लगा रखी,
1: जी सूरजमुखी लगा रखी है आपने जी।
3: तो उनके फूल बड़े आते थे काफी, लेकिन अब छोटे
1: अच्छा जी,
3: हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये है, इंग्लिश गुलाब हैं ये तंदुरुस्त है, लेकिन उनके
1: आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक।
0: दूसरा
3: सवाल मेरा ये, फूल
1: कि इंग्लिश गुलाब
3: गुलाब
1: है।
3: उन पे लेकिन
1: जी
0: ठीक है अशोक जी, दोनों सवाल मुझे समझ में आ गया है
1: जी
0: कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो सनफ्लावर आपने लगाया है उसमें फ्लावर का साइज जो है कि छोटा आ रहा है, और जो इंग्लिश गुलाब आपने लगाया है उसमें फ्लावरिंग नहीं कर रहा है जो है। तो देखिए सन फ्लावर्स हम लोग स्टार्टिंग प्रोग्राम से ही ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर जब अधिक होगा तो किसी भी फ्लावरिंग प्लांट्स का जो फ्लावर का साइज होता है वो छोटा हो जाता है जो है। तो यही सेम चीज जो है कि सन फ्लावर्स के अंदर भी हो रहा है, तापमान अधिक होने के कारण जो है उसके फ्लावर का आकार छोटा हो रहा है। दूसरा जो इंग्लिश गुलाब है, इंग्लिश गुलाब में इस टाइम पे कहीं कहीं आपको जो है कि छोटे छोटे आकार के फ्लावर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर एक आकार नहीं होगा। इसमें ये देखा गया है कि मैदानी क्षेत्रों में जो नवंबर दिसंबर से फ्लावरिंग शुरू होती है उसमें रेगुलर आपको फ्लावर्स मिलेगा, फ्लावर का आकार भी बड़ा होगा। तो अभी सुझाव ये है कि गुलाब के पौधों को आप जो है किस तरीके से हेल्दी रखें, हेल्दी रखने के लिए सही समय पे उस पे पानी आप देते रहें, और कीड़े मकोड़े से जो है कि उनका बचाव रखना है जो है। और सनफ्लावर्स में भी नमी बना करके रखेंगे, जैसे तापमान थोड़ा सा कम होगा तो जो नई कली आएगी उसके फ्लावर का साइज थोड़ा डिफिनेटली जो वर्तमान जो फ्लावर साइज है उससे बड़ा हो जाएगा।
1: जी जी जी
0: जी
1: जी और हम चर्चा कर रहे थे ऋतु जैन मैम
2: जी
1: की, जो भी था आपने कटिंग भी ले ली, उसका उपचार भी
2: जी
1: कर लिया।
2: कटिंग उपचार करने के बाद उसको हम मीडिया में लगा देंगे, और साथ ही साथ हम उसमें पानी दे देंगे। और हम जो पानी देने के बाद हम ये ध्यान रखेंगे कि एक तो छाया हो उस स्थान पे, डायरेक्ट धूप नहीं पड़नी चाहिए, और दूसरा पानी का प्रबंधन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गुलदाउदी है वो पानी के प्रति बहुत ज्यादा सहनशील है।

0: थोड़ा सा भी ज्यादा सहनशील नहीं है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो थोड़ा सा भी पानी अगर ज्यादा डल गया तो वो जल्दी मर जाता है।
1: हाँ
0: तो इसलिए
1: हाँ
0: पानी का ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। और दूसरा ये भी, क्योंकि कटिंग बहुत ही नाजुक है, बहुत ही मुलायम है, क्योंकि ऊपरी भाग से हमने पौधे के लिए
1: लिया
0: है,
1: है।
0: तो उसको जो समय समय पे पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए। तो इसके लिए या तो हम शेड नेट बना सकते हैं, कमर्शियल तौर पे जिन्होंने करना है वो जो शेड नेट है उसमें मिस्टर लगाए हों और वहां पर इनको लगा सकते हैं कटिंग को, और कम से कम 25 से 30 दिन के अंदर अंदर कटिंग में जो जड़ है वो अपनी जड़ पकड़ लेती है, और 30 दिन के बाद आप इसको खेत में परिवर्तित कर सकते
1: तो
0: हैं।
1: अब खेत की क्या तैयारी करनी है?
0: जी, खेत की तैयारी करना, ये बहुत ही जरूरी सवाल पूछा आपने, बहुत ही अच्छा
1: जी।
0: सवाल है नीलम जी। देखिए, जहाँ हम कटिंग की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ हमें खेत की भी तैयारी करनी पड़ेगी। खेत की तैयारी के लिए इस समय ये है कि हम खेत में ढेंचा जैसी कुछ जो फसलें हैं जो उनको उगा दें, ताकि जो बायो फर्टिलाइजर है वो हमारे खेत को मिल जाए, हमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर देने की आवश्यकता ना पड़े, तो ऑर्गेनिक मेन्योरिंग जिससे हो जाए। तो इस टाइम खेत को जोत कर उसमें ढेंचे का सीड डाल दिया जाए और ढेंचे को उगने दिया जाए,
1: जी
0: और जब ढेंचा उग जाएगा तो उसके बाद उसको दोबारा से ट्रैक्टर चलाकर खेत में ही मिला दिया जाए,
1: हाँ
0: ताकि
1: हाँ
0: जो जितने भी आपको न्यूट्रिएंट्स हैं उसके वो खेत में आ जाएं,
1: जी
0: और उसके बाद जो है आप खेत की 2-3 जुताई करके खेत की तैयारी कर सकते हैं।
1: जी तो मतलब उसके बाद जो आप 20-25 दिनों के बाद वो जो कटिंग तैयार हो गई है उसकी जड़ें वो रोप सकते हैं
0: जी
1: फिर
0: जी
1: वो।
0: जी जी वो कटिंग जो है, रूटेड कटिंग उसे बोलते हैं,
1: जी
0: उसको हम रोप सकते हैं। और उसके लिए जो है हम रेज्ड बेड
1: हाँ
0: बनाएंगे, ऊंची उठी हुई क्यारियां बनाएंगे, क्योंकि गुलदाउदी में जैसे मैंने आपको बताया पानी नहीं भरना चाहिए, पानी भरता है तो गुलदाउदी सड़ जाता है।
1: जी, बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि जो भी गुलदाउदी की वाणिज्यिक खेती करते हैं, व्यावसायिक खेती करते हैं, उनके लिए जानकारी बहुत उपयोगी है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी एक प्रश्न आया था गुलाब का, पर आपने कहा था कीट मकोड़ों से भी, रोगों से इस समय गुलाब को बचाना चाहिए, तो फिर
0: बिल्कुल।
1: क्या मतलब आप जो व्यावसायिक खेती करते हैं क्या आप सुझाव देंगे उनके लिए?
0: इस टाइम पे देखें तो गुलाब में सबसे अधिक कीड़े में यह समस्या आती है तो लाल मकड़ी की समस्या आती है जो है, और लाल मकड़ी के कारण जो है कि ये देखेंगे तो गुलाब के जो बाग हैं या व्यवसायिक खेती करने के जो खेत हैं, चाहे ग्रीन हाउस में हो चाहे खुले खेतों में हो,
1: जी
0: जब तापमान बढ़ता है और नमी कम होती है तो उस टाइम पे लाल मकड़ी का प्रकोप हो जाता है। इसका
1: जी
0: सबसे बड़ी पहचान होती है
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: लाल मकड़ी जिस पत्ते के ऊपर या पौधों के ऊपर अटैक करता है, वो पत्तियों से जो क्लोरोफिल, जो हरा भाग है, उसके रस को चूस लेता है, फिर धीरे धीरे पत्तियां जो है कि सफेद दिखने लगती हैं।
1: जी
0: और
1: जी
0: जब मकड़ी का प्रकोप बहुत अधिक हो जाता है तब उसके ऊपर जाला सा बन जाता है। तो हमें इसको नियंत्रित करने के लिए कुछ तरीके हैं। पहले तो जो है कि यदि स्प्रिंकलर सिस्टम हो तो
1: जी
0: उससे यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो पत्तियों पे जो है जब नमी जाती है तो उसके जो अंडे होते हैं वो एडल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं जो है, तो उससे एक पॉपुलेशन इनका कम हो जाता है।
1: जी
0: दूसरा जो है कि होता है कि इसमें आप एक्रीसाइड, जो लाल मकड़ी को मारने के लिए जो दवा है मार्केट में, उसका हम छिड़काव करते हैं। उसमें मार्केट में जो है कि कई नामों से दवा मिलती है, जैसे हिलफोल है, डाइकोफोल है, ओमाइट है, सल्फर की डस्टिंग है, इन
1: जी
0: सबके जो है डोज जो है कि अलग-अलग हैं जो है। जैसे हिलफोल या डाइकोफोल की बात करते हैं तो 1 ml 1 लीटर पानी में पड़ना चाहिए। इसका
1: जी
0: मतलब 15 लीटर की जो टंकी है स्प्रे करने का, उसमें 15 लीटर दवा पड़ना चाहिए जो है, और उसको अच्छी तरह से मिला लें। अब मिलाने के बाद जो है कि पौधे के ऊपरे पत्ती के ऊपरी सतह पे तो छिड़काव करें ही, लेकिन उसका गन ऐसा होना चाहिए कि जो पत्ती के नीचे भी दवा जाए, क्योंकि मकड़ी तो नीचे है पत्ते के जो है,
1: हाँ हाँ
0: यदि नीचे
1: हाँ
0: दवा पत्ती के निचले सतह पे नहीं जाएगी तो मकड़ी मरेगी नहीं जो है। और जो दूसरी दवा मैं बताया ओमाइट, ओमाइट जो है 15 लीटर पानी में जो है 5 ml हम डालते हैं जो है, उससे भी जो है कि इसको कंट्रोल किया जा सकता है।
2: यदि माइट का प्रकोप बहुत अधिक हो गया हो तो ये कभी भी संभव नहीं हो पाता कि एक छिड़काव से माइट को कंट्रोल किया जा सके। जो है
1: जी
2: कम से कम 2 से 3 छिड़काव की जरूरत होती है, और एक छिड़काव से दूसरे छिड़काव के बीच का जो अंतराल हो, कम से कम 2 सप्ताह का अंतराल, 14 से 15 दिन का अंतराल होना चाहिए। और दवा को यदि इस बार आपने कोई और दवा

0: किया है, तो दूसरी बार जो दवा करें वो दूसरी जो है कि एक्रीसाइड जो कंपनी की हो, केमिकल कंपाउंड दूसरा हो, उसका यदि इस्तेमाल करते हैं तो उस कीड़े में जो है कि इस दवा के प्रति जो है कि सहन शक्ति जो है होती है वो पैदा नहीं हो पाएगी, और वो मारने का एक अच्छा तरीका होता है। केवल इसी के लिए ही नहीं, चाहे आप इंसेक्ट इंसेक्ट को मार रहे हो, फंगस को मार रहे हो, बैक्टीरिया को मार रहे हो,
1: जी
0: दवा चेंज कर करके जरूर करना चाहिए।
1: जी जी
0: जी
1: जी जी
0: जी
1: मतलब पहले तो जरूरी है कि जो हमारे बागवान भाई हैं, जो खेती कर रहे हैं, वो सजग रहें, सचेत
0: बिल्कुल
1: रहें,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: निरंतर देखते रहें,
0: बिल्कुल
1: ताकि अगर वो निरंतर देखते रहेंगे, अगर थोड़ा सा ही प्रकोप हुआ है तो एक ही उसमें ठीक हो
0: बिल्कुल
1: जाएगा।
0: उसी को हम लोग कहते हैं स्पॉट स्प्रे जो है,
1: हाँ
0: या
1: हाँ
0: जहां
1: हाँ
0: पे आइडेंटिफाई हुआ
1: जी
0: यदि वहीं पे यदि हम उसको पहचान लेते हैं और उतने पे ही ये छिड़काव कर देते हैं तो पूरे खेत में नहीं फैलता है,
1: लागत बचेगी।
0: लागत बचेगी जो है, और दूसरा जो है कि पौधों अन्य पौधों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा।
1: बिल्कुल लागत बचेगी, मेहनत बचेगी, समय बचेगा
0: बिल्कुल
1: आपका।
0: बिल्कुल
1: मगर ये इसके लिए सजगता बहुत जरूरी है, ताकि जो गुलाब के फूल हैं वो खुशबूदार हों, बड़े सुंदर सुंदर स्वस्थ फूल आपको मिले। और हम बात तो अभी ऋतुचंद मैम, हम और भी करना चाहते हैं कि जो रजनीगंधा है
0: जी
1: हमारा, है ना, तो रजनीगंधा फूल तुम्हारे, ये हम सुना करते हैं गाना, रजनीगंधा के जो फूल हैं स्वस्थ हों, अच्छी फसल हो, इस समय हमें उसमें क्या शस्य क्रियाएं करनी है?
2: जी देखिए, रजनीगंधा जो है हमने मार्च या अप्रैल में खेत में बो दिया था,
1: जी
2: और
1: जी
2: रोपाई करने के बाद अब पौधे उसके बड़े हो चुके हैं, तो अब निरंतर उसके एक तो निराई गुड़ाई और
1: जी
2: एक सिंचाई का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो उसमें हो सके तो मल्चिंग का वो प्रयोग किया जाए तो बहुत अच्छा है,
1: जी
2: और साथ ही साथ उसमें हम पानी का हम ये ज़रूर ध्यान रखें कि सुबह या शाम के वक्त उसमें हम पौधों को पानी देते रहें, तो इस
1: जी
2: समय यही मेजर क्रियाएं हैं, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा है तो हम कोई खाद उसमें नहीं डाल सकते, और कीट पतंगे का इस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा तापमान है तो रजनीगंधा में इस समय कोई भी कीट पतंगा होने का आशंका नहीं है,
1: नहीं
2: तो बस
1: रहती।
2: यही ध्यान रखें हम कि पानी के जो है पानी का प्रबंधन जो है उचित प्रबंधन करते रहें, अगर हम पानी का प्रबंधन अच्छा करेंगे तो हमारा जो है रजनीगंधा अच्छा पुष्पन देगा।
1: जी बिल्कुल सही बात है, बड़ी बात है कि निरंतर रख रखाव, बड़ी बात है सजगता और सचेत रहना, बड़ी बात है कि कैसे हम अपनी लागत को कम कर सकें और अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि अगर हमें किसी चीज़ का नहीं पता है तो हम जानकारी लें, उसके बारे में समुचित प्रशिक्षण लें। हम इसके बारे में बात करेंगे एक छोटे से अंतराल के बाद, क्योंकि अब हम सुनेंगे समाचार।
3: तो अभी हम बात कर रहे थे, अभी फोन इन विशेष कार्यक्रम हमारा चल रहा था जिसमें हम विषय था गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रख रखाव, जहाँ बातचीत कर रही थी, बातचीत विशेषज्ञ के साथ बातचीत कर रही थी नीलम मदान, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य संभाग
1: और
3: IARI पूसा नई दिल्ली।
1: जी हाँ, और इस ये कार्यक्रम जारी रहेगा, और आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, फ़ोन नंबर बता दें 011-2342-1082 और 80। अब सुनिए हिंदी में समाचार।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहार के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
5: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी

0: विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की जरूरत पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है। ये कमी सोने पर आयात शुल्क में बढ़ोतरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कम से कम एक वर्ष तक सोना न खरीदने की अपील का परिणाम है। रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी, जिससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए थे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:05 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम कृषि जगत।
4: कार्यक्रम कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान बहनों भाइयों को राम राम, राम। तो सरिता बहन फिर दोबारा से हाजिर हैं हम लोग और कार्यक्रम हमारा वही और विषय भी वही रहेगा, गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रख रखाव, जिसमें हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली पूसा।
5: जी हाँ, डॉक्टर ऋतु जैन, प्रधान वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग IARI पूसा नई दिल्ली से, और कार्यक्रम का संचालन कर रही है नीलम मदान।
4: और हमारे जो फोन नंबर है एक बार हम अपने श्रोताओं को बता देते हैं, अपने किसान भाइयों को बता देते हैं।
5: विशेषज्ञ से सीधे बातचीत करने के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा जो फोन नंबर है वो है 2342108 2, और जो दूसरा नंबर है वो है 2342108

0: शून्य, और जी हाँ दिल्ली का पिन कोड है 01 01। तो भाई आप हमें तुरंत फ़ोन कर सकते हैं और अपने जो भी फूलों से संबंधित, बागवानी से संबंधित सवाल है वो अपने हमारे जो आए हुए आमंत्रित विशेषज्ञ हैं उनसे आप पूछ सकते हैं।
1: चल तो अब तो चलते हैं अपने अपने विशेषज्ञों के पास और करते हैं अपनी जो समस्या है उनका समाधान।
2: हाँ डॉक्टर मार्कंडे, डॉक्टर ऋतु जैन, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चल रहा है हमारा फोन इन कार्यक्रम, गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रख रखाव कैसे करें। हमने चर्चा की कि कैसे हम रजनीगंधा में हमने सस्य क्रियाएं क्या करनी हैं, और हमने गुलदाउदी के लिए क्या इस समय प्रवर्धन कार्य करना है ताकि उनका अच्छा प्रवर्धन हो, कैसे खेत की तैयारी करनी है और कैसे फूलों का रख रखाव करना है। और हमने कहा था कि अब हम चर्चा करेंगे कि जो हमारे बगीचे हैं उनमें हमें इस समय क्या काम करने हैं डॉक्टर मार्कंडे, ताकि स्वस्थ रहें वो।
3: जी हर वर्ष हम लोग 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं,
2: बिल्कुल
3: और उसमें हम लोगों का प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक जो है कि पौधों को लगाएं और जिससे हमारा वातावरण जो है कि शुद्ध बना रहे।
2: जी
3: और इसी के साथ साथ हम लोगों का जिम्मेदारी का ये बोध होता है कि जो हमारे वर्तमान में
2: जी
3: पौधे हैं उनको हम रख रखाव किस तरीके से अच्छा करें कि जिससे कि उनकी बढ़वार जो है अच्छी हो। जी इसके
2: जी जी बिल्कुल, हम इस पर जरूर चर्चा करेंगे। एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। जी हेलो,
4: जी मैम
2: जी
4: नमस्ते। जी
2: नमस्ते, कहाँ से बोल रही हो, क्या नाम है आपका?
4: मेरा नाम कृष्णा है, मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ मैम।
2: हाँ कृष्णा जी पूछिए।
4: मैम मेरा ये पूछना है कि जो हम पेड़ पौधे लाते हैं मार्केट से,
2: हाँ
4: गमलों में लगाते हैं, तो
2: हाँ
4: धूप में, गर्मियों में लू पड़ती है, गर्मियों में धूप है, उससे बचाने के लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या उपाय करें, और मतलब और गर्मियों में जो पेड़ों पे फूल हैं वो कम आते हैं, थोड़ा बहुत आगे मतलब ऐसी चिपक जाती हैं उनकी कलियां, तो उनके लिए आप मतलब वो बताएं
2: जी
4: सॉल्यूशन।
5: जी कृष्णा जी, देखिए आपने बात की कि जो आप मार्केट से पौधे खरीदते हैं वो गर्मियों में झुलस जाते हैं और उनकी अच्छी जो है अच्छे दिखाई नहीं देते। तो अगर हम बात करें गर्मियों के पौधों की या हम कोई भी पौधों की बात करें, तो खासकर मुझे लगता है आप गमले वाले पौधों की बात कर रहे हैं। तो इस समय गमले वाले पौधों को संरक्षित रखना एक बहुत अपने आप में ही बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हम किस प्रकार का गमला इस्तेमाल कर रहे हैं, घर में गमले को हमने किस स्थान पे रखा है, हम कितना पानी दे रहे हैं, किस समय पानी दे रहे हैं, और उस जगह पर कितनी धूप आती है, कितनी छाया आती है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा महत्व रखती हैं गमलों के प्रबंधन के लिए। तो सबसे बड़ी बात है कि पहले तो अगर हम मिट्टी के गमलों का इस्तेमाल करें तो हमारे पौधे जो हैं वो ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि जो अगर हम प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता है तापमान बढ़ रहा है, तो प्लास्टिक के गमलों में जो तापमान है वो बढ़ जाता है, जिससे कि मिट्टी जो है गर्म हो जाती है, उसकी जो पौधे की जड़ें होती हैं वो भी उससे प्रभावित होती हैं। दूसरी बात ये है कि आप पौधों को सिंचाई जो है सुबह और शाम के समय करें, दिन के वक्त पौधों को सिंचाई ना करें, क्योंकि दिन में अगर सिंचाई करेंगे तो आपका पौधा ज़्यादा से ज़्यादा झुलस जाएगा। तीसरी बात, पौधे जो गमले में लगा रखे हैं उसमें निराई गुड़ाई समय समय पर करते रहें, ताकि उसमें जितने भी खरपतवार हैं वो समय समय पर अगर आप निकालते रहेंगे तो उनकी बढ़वार अच्छी होगी और जो पौधे को पोषण मिलना है वो खरपतवार नहीं खाएगा। चौथी बात ये है कि आप पौधे को जब भी लगाते हैं उसमें हम गोबर की गली सड़ी खाद, पूरी अच्छे से जो गली हुई सड़ी हुई खाद हो उसको मिलाकर लगाएंगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत ही अच्छा चलेगा। और साथ ही साथ एक और चीज कि हो सके तो आप पौधों को गर्मियों में छाया वाले स्थान पर रखिए, और 1 साल अगर आपके पौधे को आपका पौधा चल गया है, एक थोड़ी आवाज कम कर लीजिए, मुझे थोड़ा बताने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो जो पौधे हैं आपके, तो उनको आप हर साल जो है या 2 साल के बाद गमले को परिवर्तित कर लेंगे तो आपका पौधा जो है वो बहुत अच्छा चलेगा। कई बार क्या होता है कि हमने गमले में जो पौधा लगाया है और उसको हमने उसी 2 3 साल तक उसी गमले में रहेगा तो वो उसकी जड़ें जो है वो मिट्टी को जकड़ लेती हैं और जिसकी वजह से पौधे की बढ़वार नहीं होती, तो उसको बड़े साइज के गमले में लगाना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके जो पौधे हैं वो बहुत अच्छे तरह से चलेंगे और बहुत सुंदर दिखेंगे और आपका मन भी प्रसन्न रहेगा।
2: जी थैंक यू। मैं कहूँगी शुक्रिया आपका कृष्णा जी, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा ना, मुझे लगता है

0: बहुत डॉक्टर रितु जैन ने इतने विस्तृत तरीके से बताया है कि अब किसी को भी कोई मुश्किल नहीं होने वाली अपने गमलों का रख रखाव करने में।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम।
0: जी आपका भी धन्यवाद। और अब हम जानकारी ले रहे थे कि अपने बगीचों का रख रखाव कैसे करें।
2: जी तो मैं बता रहा था कि जैसे बगीचे में ये देखेंगे तो कई तरह के जो है कि पौधे आपको दिखेंगे।
0: जी
2: जैसे कुछ हो सकते हैं कि ट्री हो, कुछ क्लाइंबर्स होंगे, कुछ श्रब्स होंगे, कुछ हेज होंगे, कुछ बहुत पुराने पौधे होंगे, कुछ नए पौधे होंगे। तो ये देखा गया है कि जिन पौधों के जड़ों का विकास कम हुआ रहता है
0: हाँ
2: उनको जो है कि पानी की जो है कि आवश्यकता गर्मी में अपेक्षाकृत जो पौधे ओल्ड एज के होते हैं उनसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो डीप रूटेड होते नहीं है, तो
0: जी
2: उनमें जो है कि ऊपरी सतह पे पानी नहीं रहता है तो उसमें खींचने की शक्ति नहीं होती है। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि पानी का प्रबंधन जितना आपके पास हो पा रहा है तो यंग प्लांट को, जो नए पौधे रोपित हैं, उनको सबसे पहले दीजिए। और जो बिल्कुल इस्टैब्लिश प्लांट हैं जिनकी ये क्षमता है कि जमीन से पानी को खींच सकते हैं,
0: हाँ
2: उससे वो
0: हाँ हाँ
2: सरवाइव कर सकते हैं,
0: जी
2: उनको जो है कि पानी जो है कि सबसे बाद में दीजिए।
0: जी
2: दूसरी चीज है कि ये देखा गया है कि गर्मी में जब नमी कम होती है तो कुछ पौधों के ऊपर टर्माइट चढ़ जाती है, दीमक चढ़ जाती है, तनों के ऊपर दीमक आ जाती है और वो धीरे धीरे बार्क को खा जाती है। अब बाद में पौधा जा करके सूख जाता है।
0: जी
2: तो हमें ये करना चाहिए कि टर्माइट को यदि मारना है
0: हाँ
2: तो
0: हाँ
2: उसके लिए ऑर्गेनिक जो हमारे इंसेक्टिसाइड हैं, जैसे नीम बेस, नीमेगान के नाम से
0: हाँ हाँ
2: इंसेक्टिसाइड आता है, उसका 3 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके यदि हम छिड़काव तने के ऊपर कर देते हैं और थोड़ा सा जड़ के आसपास कर देते हैं, उससे जो है कि टर्माइट मर जाती है। और
0: जी
2: वहां पे नमी यदि बना देते हैं तो जो टर्माइट जमीन की ऊपरी सतह पे आई रहती है वो नीचे की तरफ चली
0: चली
2: जाती
0: जाती
2: है।
0: है बिल्कुल।
2: जी
0: हमसे श्रोता जुड़ रहे हैं।
2: जी
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ
1: नमस्कार।
0: जी नमस्कार।
1: मेरा एक सवाल था सर से।
0: अच्छा
1: सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं गुलाब के फूल लगाती हूँ छत पे, तो उनके जड़े, पता नहीं वो छोटे से जड़े क्यों सूख जाती है। मैं कई बार उसमें पौधे में खाद भी डालती हूँ, सभी सभी प्रकार के जो भी खाद आते हैं उसको इस्तेमाल करती हूँ, और दरअसल उसको उसमें पानी वगैरह भी डालती हूँ, फिर भी वो पनपते नहीं। इसकी क्या वजह हो सकती है?
0: आपने फूल का नाम तो बताया,
2: गुल
0: अपना नहीं
1: गुलाब का फूल।
0: बताया। आप अपना नाम
1: मेरा नाम,
0: बता। हाँ
1: अच्छा माफ कीजिएगा, मेरा नाम संगीता है, मैं दिल्ली से बात कर रही थी।
0: जी संगीता
1: मैं काफी
0: जी।
1: समय से ये प्रोग्राम सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप
0: हाँ
1: लोगों का वार्तालाप बहुत ही अच्छा है और
0: जी
1: बड़ा ही एक ज्ञानवर्धक प्रोग्राम भी है। तो
0: जी
1: बस उनसे मैं सर से ये जानना चाहती थी कि कृपया मुझे बताने की चेष्टा करें कि ये वजह क्या है।
2: संगीता जी, जैसे गुलाब के जो लगाने का टाइम है या दिल्ली के उसमें देखें तो अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है वो सबसे अच्छा माना जाता है टेम्परेचर को देखते हुए।
1: जी
2: तो
1: हाँ
2: जब आप गमले में गुलाब को लगाती हैं तो सबसे पहले ये देखना कि गमले का आकार कम से कम 10 इंची का आकार होना चाहिए, मिट्टी का गमला होना चाहिए। और उसमें जो आप मीडिया डालते हैं, जैसे गोबर की सड़ी हुई खाद, मिट्टी और बालू, उसको हम लोग सुझाव देते हैं कि एक भाग गोबर की सड़ी खाद हो, एक भाग मिट्टी हो, एक भाग बालू हो, ताकि यदि
1: जी
2: ऐसा मिक्सचर यदि आप बनाएंगी तो लगभग ये 3 से 4 साल तक वो गुलाब का पौधा 10 इंची के गमले में जो है बढ़वार ले सकता है।
1: ओहो, दरअसल सर मेरे साथ परेशानी क्या है कि मैं उसमें रेडीमेड खाद डालती हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कहीं कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि
2: जी
1: समय समय के साथ साथ मैं उसको जब मौका मिलता है पानी डालती हूँ, और एक अजीब सी बात होती है कि उसमें कलियाँ आती हैं और वो कलियाँ पूरी तरह से फूल की प्रकार में नहीं बदल परिवर्तित होती, तो मुझे लगता है कहीं पे कुछ ना कुछ
2: बिल्कुल
1: गलत है।
2: बिल्कुल, इस तरह से आप मिक्सचर बनाइए और नीचे जहाँ पे ड्रेनेज है वहाँ पे कंकड़ पत्थर रख दीजिए, इसको भर करके अक्टूबर के महीने में आप लगाइए। देखिएगा कि 1 साल के बाद इस पौधे का बढ़वार अच्छा होगा और इसमें पुष्पन भी अच्छा होगा। इस तरह से ध्यान आप रखिए जो है। जी
0: बिल्कुल सही बात है। और हम चर्चा कर रहे थे फिर से कि
2: जी
0: कैसे बगीचों का रख रखाव रखना, और जैसे मानसून हमारी आस और विश्वास है, हम
2: बिल्कुल।
0: उसका इंतजार कर रहे
2: हाँ, मैं बता रहा था
0: हैं।
2: कि
0: जी
2: जैसे दीमक का जब प्रकोप होता है तो उसका निदान के लिए मैं बताया कि वो जैसे नीम बेस इंसेक्टिसाइड नीमेगान 3 ml प्रति लीटर पानी में डाल करके छिड़काव करते हैं, तने पे भी करते हैं, मिट्टी के जो तने के आसपास की मिट्टी है उसमें भी डाल देते हैं, नमी बना के रखते हैं, तो इससे जो है काफी बचाव हो जाता है।
0: हाँ जी।
2: इसी के साथ

0: मैं ये कहूंगा कि जो लोग बालकनी में अपनी बागवानी को किए हुए हैं, इस टाइम देखा गया है कि पानी की बहुत अधिक आवश्यकता होती है, तो गमलों के नीचे जो है एक प्लास्टिक की ट्रे आती है, जो है यदि उसमें भी हम पानी को भर देते हैं तो जो पेड़ों की जो आवश्यकता होती है उसको तो लेता ही है, इसी के साथ उसके वातावरण में नमी बनी रहती है।
1: जी डॉक्टर साहब,
0: जी
1: हमारे से श्रोता जुड़ रहे हैं।
0: जी जी
1: हेलो,
2: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है?
2: मेरा नाम नीरज कुमार, बावलीकोट जिला बुलंदशहर से बात कर रही हूँ।
1: हाँ नीरज जी, पूछेगा। हाँ
2: मैं बोल रहा हूँ, जो हम फूल लगाना चाहते हैं
1: हाँ
2: ये खुशबू के लिए, तो घर का दरवाजा है उसे पूरे कर।
1: आपकी आवाज हमें समझ नहीं आई है, इतना ही समझ आया कि आप फूल लगाना चाहते हैं खुशबू
3: खुशबू
1: के,
3: वाले
1: खुशबू वाले। जी
2: मैं लगाना चाहता हूँ लगाऊं, और अच्छा लगे
1: अच्छा, सुंदर भी लगे और खुशबूदार भी हो।
2: जी।
0: नीरज जी, ये तो नहीं पता लगा आप कहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन
2: बुलंदशहर,
0: जी
1: बुलंदशहर से।
0: बुलंदशहर से, तो आप खुशबूदार यदि फूल लगाना है तो अभी जैसे मानसून आ जाता है, किसी भी नर्सरी से आप बेला का पौधा लेकर के लगा सकते हैं, हरसिंगार का जो प्लांट होता है उसको लेकर के लगा सकते हैं, अक्टूबर नवंबर के महीने में आप जो देसी गुलाब है उसका आप लेकर के पौधे लेकर के आप लगा सकते हैं, और जो आने वाला मार्च होगा, मार्च के महीने में रजनीगंधा का जो पौधा है उसके ट्यूबर्स मिलेंगे उसको भी लेकर के लगा सकते हैं। तो ये चार पांच तरह की चीजें आपको बताया है, यदि इनको लगाएंगे तो आपके बाग बगीचे के अंदर जो है सुगंधित पेरेनियल, जिसको हम बहुवर्षी प्लांट बोलते हैं, ये आपके बाग बगीचे में जो है कि इकट्ठे हो जाएंगे और खुशबू जरूर फैलाएंगे।
1: जी, धन्यवाद आपका। और हम बात कर रहे थे कि बगीचों में हमने ध्यान रखना है कि दीमक
0: जी
1: ना लगे, और उसके लिए हमें जो नीम वो है जन्ने वो है, बना हुआ है पेस्टिसाइड, उसका
0: जी
1: इस्तेमाल करना है।
0: जी
1: और उसके अलावा बारिश की हम बात कर रहे थे, आने वाली है, इंतजार है, उसके लिए हमें क्या करना है?
0: जैसे अभी ये तो हो गया कि जो हमारे ऑलरेडी प्लांट लगे हुए हैं उनके
1: जी
0: लिए ये रख रखाव की बात हो रही थी,
1: जी
0: अभी है कि कुछ किसान भाई बागवानी को जो है कि नई बागवानी अपना लगाना चाहते हैं, तो हम लोग ये सुझाव देते हैं कि जून के महीने में आप अपने मिट्टी के जो है कि मिट्टी में जहाँ पे भी खेत की आपने तैयारी की है वहाँ पे गड्ढे जो है आप खोद दें। गड्ढे का आकार इस बात पे निर्भर करता है कि किस तरह के पौधे को आप लगाना चाहते हैं,
1: जी
0: तो जनरली ये सुझाव दिया जाता है कि उसका 1 फीट जो है कि चौड़ाई हो, 1 फीट गहराई हो, और इसी आकार के आप गड्ढे लगाएं, और जिस तरीके से बताया गया है कि पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, उसी अनुसार आप गड्ढे को जो है कि बना करके और मिट्टी को जो है ऊपर की तरफ जो है कि खोल दें, जो है कुछ दिनों के लिए जो है कि मिट्टी जो है कि खुली रहती है, तो उससे ये होता है कि जो हानिकारक जीवाणु और कवक होते हैं वो बढ़ते हुए तापमान में जो है कि मर जाते हैं, और फिर उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद और जो रासायनिक उर्वरक आपके मिट्टी की जांच के बाद जो है कि जो निर्धारित मात्रा दी गई है उसको मिक्स करके मानसून आने से पहले जो है उसको फिर हम भर देते हैं, और फिर जो है जैसे पहला मानसून आ जाता है और तापमान जो है कि मिट्टी का जो है कि कम हो जाता है, फिर ये सुझाव दिया जाता है कि आप प्राइवेट नर्सरी या सरकारी नर्सरी से जो है उस पौधे को ले आइए, लगाइए और
1: जी
0: उसका थाला बनाइए और उसको सिंचाई कीजिए, तो उसमें देखा गया है कि ऐसा यदि करते हैं तो पौधों की बढ़वार भी अच्छी होती है
1: जी
0: और उनका मृत्यु दर जो है कि काफी कम हो जाता है, जो है
1: हाँ
0: जी
1: हाँ और हम बताना चाहेंगे कि चल रहा है हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम, और आज का विषय है कि गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रख रखाव कैसे करें। स्टूडियो में हमारे साथ विशेषज्ञ हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं कोई भी सवाल जो आपके मन में आ रहा है कि कैसे बगीचों की रख रखाव करें, फूलों का रख रखाव करें। और नंबर है हमारा 2342-1082, दूसरी फोन लाइन है 2342-1080, और एक श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, नाम क्या है? नमस्कार,
2: मेरा द्वारा क्वेश्चन है जी, मैं अशोक कुमार शर्मा, गुदावली खुर्द बुलंदशहर।
1: आपने अपना रेडियो चलाया हुआ है साथ में?
2: हाँ रेडियो बंद कर दिया जी।
1: हाँ आप बताएं।
2: मेरा दूसरा क्वेश्चन ये

0: सेम हम गेंदा और गुलाब दोबारा लगा सकते हैं स्टाइल में।
1: अच्छा अच्छा,
0: पर कौन सा लगाएं गेंदा?
1: ठीक है जी।
2: यदि अशोक जी आपको गेंदा लगाना है तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली ने 3 किस्मों को निकाला है, जिसमें पूसा दीप, पूसा पर, पूसा उत्सव। ये जुलाई के महीने में इसकी नर्सरी पड़ेगी जो है, और ये लगभग जो है कि मान के चलिए कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई से, जुलाई के अंतिम सप्ताह से लेकर के अगस्त के पहले सप्ताह में इसका ट्रांसप्लांटिंग हो जाएगा। और ये दिवाली के टाइम पे, ये फेस्टिवल जो होता है दिवाली, उस टाइम पे जो है कि इसमें पुष्पन आता है और इसके फूल की बड़ी अच्छी कीमत जो है कि अपने घरेलू पुष्प बाजार में मिलती है। रही बात जो दूसरा जो गुलाब है, गुलाब को भी आप लूज फ्लावर प्रोडक्शन के लिए, हम लोगों के यहाँ रोज शरबत है, पूसा अल्पना है, रोजा चाइनेंसिस है, इनके पौधे जो है कि 15 अक्टूबर के बाद मिलना शुरू होंगे। 15 अक्टूबर से लेकर के और लास्ट वीक ऑफ नवंबर तक इस पौधे को ले सकते हैं और इसको आप लगा सकते हैं। तो ये 3 किस्में जो है कि गेंदा में हैं, और 2 किस्में और 1 स्पेसीज जो है कि गुलाब के अंदर है, जो आपको व्यवसायिक खेती के लिए जो है कि चुन सकते हैं।
1: जी बिल्कुल सही बात है। और देखिए, जो भी हमारी मांग है, फूलों की मांग है, वो लगातार बढ़ रही है। और खुशी की बात यह है कि जो रकबा है जिसमें खेती की जा रही है वो भी प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, फूल करने वाले भी आगे आ रहे हैं। और हमारे देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी भारत के फूलों की मांग है, निर्यात भी बढ़ रहा है। तो अब ज़रूरी ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस व्यवसाय में आए, और उसके लिए सबसे ज़रूरी, डॉक्टर मार्कंडे, आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर ऋतुजन, आप बताएं पहले कि क्या है ज़रूरी, वो कुंजी क्या है?
3: जी, सबसे पहले जो हम बात करते हैं कि अगर हम बात करें कि कमर्शियल तौर पे जो,
1: मैं माफी चाहती हूँ, अभी मुझे लगता है ये सीक्रेट आपको भी नहीं बताना है, तो हमारे श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
4: हाँ जी, नमस्ते मैडम जी।
1: जी नमस्कार, नाम बताएं।
4: मैं योगराज बोल रहा हूँ, गुड़गांव से।
1: जी जी, बताएं योगराज साहब।
4: एक तो जैसे जामुन के पेड़ में अब की बार फल नहीं आ रहा है।
1: अच्छा जी।
4: और एक दूसरा सवाल है मेरा, जैसे चंद्रमुखी का जो फूल होता है
1: जी,
4: ये जैसे हरिद्वार के आसपास लगता है, कि हम यहाँ लगा सकते हैं इसको?
2: योगराज जी, पहला आपका सवाल है कि जामुन के पौधे में इस बार फल नहीं लगा है, तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि हमारे यहाँ भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के अंदर एक फ्रूट डिपार्टमेंट ही है। तो फ्रूट डिपार्टमेंट में यदि एक बार आप संपर्क कर लें, और वहाँ पे डॉक्टर ओपी अवस्थी जी जो है उस विभाग के अध्यक्ष हैं, तो उसका हो सकता है कि समाधान मिले कि भविष्य में जो है कि उसमें फलत हो। और जो चंद्रमुखी का पौधा है, हमें लग रहा है कि आप रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं जो है।
4: क्या जी?
2: रुद्राक्ष की बात कर रहे हैं क्या?
4: चंद्रमुखी का ये फूल होता है जो पेड़ लगता है, ये हरिद्वार में के आसपास जैसे क्षेत्र में कुछ जगह पे होता है, जैसे इसमें कुछ ऐसे भी बताया गया आंखों की रोशनी के लिए अच्छा है।
2: देखिए, जैसे आप यदि वहाँ के वातावरण में, यदि मान लीजिए आप मंसूरी के तरफ की बात करते हैं जहाँ पे तापमान थोड़ा कम होता है, यदि उसको यहाँ पे ले आकर के लगाएंगे तो हो सकता है कि उसमें पुष्पन ना हो, लेकिन पर्टिकुलर यदि हरिद्वार के आसपास हो रहा है तो 2-4 पौधे ले आकर के ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं उसको जो।
4: ये पूसा में इसका बीज मिल जाएगा?
2: नहीं, चंद्रमुखी का तो नहीं मिल पाएगा जो है।
1: जी
2: जी,
1: धन्यवाद आपका। और डॉक्टर ऋतु जैन, हम वो रहस्य, वो कुंजी जानना चाह रहे हैं जो कृषि को, पुष्प कृषि को व्यावसायिक रूप से करने के लिए जरूरी है।
3: जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है नीलम जी, क्योंकि व्यावसायिक रूप से जब आप फ्लोरिकल्चर करने जा रहे हैं, फूलों की खेती करने जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको बहुत अच्छा फूल चाहिए जिसकी मार्केट बहुत अच्छी हो, और मार्केट अच्छी होने के साथ साथ उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छी हो। तो सबसे पहले, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि प्लांटिंग मटेरियल अच्छा हो। जो भी हम क्रॉप लगाएं उसकी हम अच्छी वेराइटीज लगाएं, अच्छा उसका गुणवत्ता वाला प्लांटिंग मटेरियल हो, किसी विश्वसनीय जगह से हम वो बहुत खरीदें जिसे भी हमने लगाने। दूसरी बात, कभी भी हमें फूलों की खेती करनी है या कोई भी खेती करनी है, तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप प्रशिक्षण ज़रूर लें।
1: जी।
3: तो एक प्रशिक्षण जब तक आप नहीं लेंगे तब तक

0: आप अच्छी फूलों की खेती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में समझ होना बहुत जरूरी है। तो किसी भी अच्छे संस्थान से उसके लिए प्रशिक्षण लीजिए, और प्रशिक्षण लेने के बाद आपको जो भी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं उन सब योजनाओं का फायदा लीजिए, और साथ ही साथ मार्केट देखिए कि मार्केट कहाँ पर है। फूलों का बाजार आपको बहुत ज्यादा पता होना चाहिए, और बाजार में किस फूल की डिमांड है। ये थोड़ी सी चीजें हैं, दो तीन महत्वपूर्ण चीजें हैं जिनका आपको पता होगा तो आप फूलों की खेती कर पाएंगे और बहुत सारा मुनाफा भी आप कमा सकते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल सही बात डॉक्टर मार्कंडे, मैं जानना चाहती हूँ कि इन सब कड़ियों को जोड़ने में प्रशिक्षण कैसे सहायक है।
2: बिल्कुल, प्रशिक्षण बहुत लाभकारी सिद्ध होता है, और प्रशिक्षण के माध्यम से जैसे डॉक्टर रितु ने बताया किस फसल का चुनाव करना है, किस वैरायटी का चुनाव करना है, खेती करने का क्या तरीका है,
1: अच्छा
2: प्लांट प्रोटेक्शन क्या है, पैकेजिंग क्या है, मार्केट, ये सारी जानकारी वहां मिलती है, और ये जो है कि सभी युवा के लिए काफी लाभकारी
1: जी
2: रहेगा।
1: बिल्कुल, धन्यवाद आपका डॉक्टर ऋतु जैन, डॉक्टर मार्कंडे, वाकई ये जानकारी उपयोगी रहेगी, और हम चाहेंगे कि जो हमारे युवा हैं वो इससे जुड़ें और प्रशिक्षण के साथ जुड़ें, और इस समय हमें अपने बगीचों का, अपने फूलों का पूरा रखना है रख रखाव।
3: तो इसी के साथ आज का हमारा विशेष फोन इन कार्यक्रम गर्मियों में फूल एवं बगीचों का उचित रखरखाव यहीं समाप्त होता है, और आशा है कि हमारे विशेषज्ञों द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी।
4: कार्यक्रम में जो जानकारी दे रहे थे विशेषज्ञ डॉक्टर मार्कंडेय सिंह, अध्यक्ष पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, वहीं दूसरे विशेषज्ञ थे डॉक्टर ऋतु जैन, प्रधान वैज्ञानिक पुष्प विज्ञान एवं भूदृश्य निर्माण संभाग, ये भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, और कार्यक्रम का संचालन कर रही थी हमारी वरिष्ठ साथी नीनम मदान।
3: जी हाँ, और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। सभी सुनने वाले भाई बहनों को राम
4: राम,
3: राम।
4: कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे नरेश, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे
3: जी कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पराशर, और इस कार्यक्रम के संयोजक थे शिव नंदन लाल।
4: तो कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का, सभी किसान बहनों और भाइयों को राम राम
3: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। सात बजकर 30 मिनट होने को है। अब सुनिए गजल।

गजलों के इस कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। कहते हैं कि गजल और शामे गजल फर्क है। क्या फर्क है? क्योंकि वक्त ऐसा होता है जब आप शांत और ऐसे वक्त में जहां पर आप हर काम से निवृत्त हो जाते हैं और बैठते हैं एक चाय की चुस्की लेकर और जब गजल सुनते हैं तो वो समा इतना खूबसूरत हो जाता है कि गजल का मज़ा दुगना हो जाता है। तो गजलों के कार्यक्रम को शुरू करते हैं और सबसे पहले सुनते हैं अनिल विश्वास का ये गजल।

एक ऐसा मुकाम आता है जहाँ पर वादे भी होते हैं, यकीन भी होता है, लेकिन यकीन तभी होता है जब हमें ये भरोसा हो जाए कि हमने जो सोचा क्या वो सही था। लेकिन यकीन किस पर करते हैं? जी हाँ, किसी ने बहुत खूब कहा है, तुम चाहे लाख गुनाह करो, हमने तो एतवार कर लिया। यकीन ऐसे ही नहीं, वादे सवा कर लिया।

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 7:45 होने को हैं। अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं। आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी की जोन ओ में बसी कॉलोनियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा, इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण गिराए नहीं जाएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने मॉनसून पूर्व तैयारियों के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बरसाती जल निकासी नालों की गाद निकालने का काम लगभग 70% पूरा कर लिया है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में लगभग 1,25,000 यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी के जोन ओ में बसी कॉलोनी

0: कंपनियों को लेकर दिल्ली सचिवालय में एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जानकारी दी गई कि इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण को गिराए जाने की कार्रवाई नहीं होगी। बैठक में शामिल जनप्रतिनिधियों ने जोन ओ क्षेत्र में बसी कॉलोनियों में शासन द्वारा लगाए गए नोटिस बोर्ड का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि बोर्ड संदेश में लोगों में भ्रम पैदा हो रहा है। जनप्रतिनिधियों ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश और सरकारी रिकॉर्ड के अध्ययन से पाया गया है कि इन कॉलोनियों के पुराने निर्माण पर किसी तरह का खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि जो आदेश है वो नए चल रहे निर्माण को ध्वस्त करने को लेकर है। नई दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आज करौल बाग मंडल भाजपा के पदाधिकारियों के साथ क्षेत्र से जुड़े विभिन्न जनहित विषयों और स्थानीय समस्याओं के समाधान को लेकर विस्तृत चर्चा की। बैठक के दौरान नागरिक सुविधाओं, आधारभूत ढांचे और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श हुआ। श्रीमती स्वराज ने पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों और शिकायतों को संबंधित विभागों के सामने प्रभावी रूप से उठाने और उनके समयबद्ध समाधान के लिए निर्देश दिए। दिल्ली नगर निगम के आयुक्त संजीव खिरवार ने आज सिविल लाइंस क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्वच्छता और प्रदूषण की रोकथाम के लिए निगम द्वारा किए जा रहे कामों की समीक्षा की। इसके अलावा श्री खिरवार ने जहांगीरपुरी स्थित 2000 टीपीडी क्षमता वाले सीएनडी वेस्ट प्लांट का निरीक्षण किया। आयुक्त ने धूल की रोकथाम के लिए सीएनडी वेस्ट प्लांट के चारों तरफ शीट्स लगाने और वाटर स्प्रिंकलर लगाने के भी निर्देश दिए। साथ ही प्लांट के मुख्य मार्ग पर झाड़ियां लगाने और संयंत्र का सौंदर्यकरण करने के भी निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज कहा कि सजग समाज और दूरदर्शी विधानमंडल ही विकसित भारत 2047 के दो सशक्त स्तंभ हैं। ये बात श्री गुप्ता ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन के दूसरे दिन आयोजित द्वितीय पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही गई। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक समृद्धि नहीं है, बल्कि मजबूत संस्थाओं, नागरिकों और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की साझा संस्कृति से है। संबोधन के दौरान श्री गुप्ता ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और जनसेवा वितरण के क्षेत्रों में देश की उपलब्धियों का उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने भारत की लोकतांत्रिक संस्थानों की गरिमा, पवित्रता और मजबूती पर बल दिया। दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा की जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: अदालत में सीबीआई ने कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार मनीषा वाघमारे ने पैसे के बदले छात्रों को परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक किए। जांच एजेंसी ने उम्मीदवारों के बयानों का हवाला दिया है। इसमें उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्रों के लिए पैसे दिए गए थे। इस मामले में सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर 12 मई को प्राथमिकी दर्ज की थी। सीबीआई के अनुसार मनीषा छात्रों को जुटाने में लगे बिचौलियों में शामिल थी। आरोप है कि इन छात्रों ने विशेष कोचिंग सत्रों में शामिल होने के लिए लाखों रुपए का भुगतान किया था। यहां परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को बताया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए 21 जून को पुनर्परीक्षा आयोजित करेगी। एडमिट कार्ड 14 जून तक जारी होने की उम्मीद है। प्रादेशिक समाचार के लिए शक्ति सिंह।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। नई दिल्ली स्थित एनटीए मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस प्रक्रिया में आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए खुफिया ब्यूरो और केंद्रीय जांच ब्यूरो सहित सभी साइबर सुरक्षा संसाधनों को लगाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट

0: newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने आज दिल्ली परिवहन निगम DTC के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान राजधानी में बसों के रोजाना के संचालन और यात्री सेवाओं की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर बनाने पर विशेष बल दिया गया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के दौरान परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने निर्देश दिए कि सभी बसें अपने निर्धारित बस स्टॉप पर अनिवार्य रूप से रुकें और यात्रियों के लिए सुरक्षित और सुगम तरीके से बसों में चढ़ने और उतरने की सुविधा सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि यात्रियों, विशेषकर महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार और लापरवाही का कोई भी मामला सामने आने पर बेहद सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री सिंह ने DTC के सभी अधिकारियों को बसों की समय सारणी, रूट ऑपरेशन और सर्विस के समय के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। इसे भूमि पत्तनों के बीच एकीकृत प्रणाली कायम करने के लिए बनाया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह प्रणाली आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि मॉनसून की तैयारियों के तहत अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले तूफानी जल निकासी नालों की गाद निकालने का लगभग 70% काम पूरा कर लिया गया है। प्राधिकरण के अनुसार गाद हटाने का काम काफी पहले ही शुरू कर दिया गया था, जिसका उद्देश्य वर्षा जल की सुचारू निकासी सुनिश्चित करना, सड़कों पर बाढ़ को रोकना, यातायात जाम को कम करना और राष्ट्रीय राजधानी में मॉनसून के मौसम के दौरान सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के समग्र रखरखाव में सुधार करना था। प्राधिकरण ने कहा कि समय पर काम पूरा होने और गुणवत्ता मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए DDA अधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण और निगरानी की जा रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने शेष कार्य मॉनसून शुरू होने से पहले इस महीने की 15 तारीख तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सरकार ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और 2 डॉक्टरों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी किया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस नीति से समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार के अनुसार मामले की जांच जारी है और अनियमितताओं में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने बताया है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर अब तक सबसे अधिक दैनिक राइडरशिप रिकॉर्ड की गई है। NCRTC ने बताया कि एक दिन में लगभग 1.25 लाख से अधिक यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। NCRTC ने कहा कि उपलब्धि NCR में लोगों के यात्रा करने के तरीके में आ रहे बड़े बदलाव को दिखाती है। निगम ने बताया कि दिल्ली NCR में भीषण गर्मी के बीच नमो भारत ट्रेनें यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के माध्यम से देशभर में मातृ और शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया है। श्री नड्डा ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरा होने के अवसर पर राष्ट्रव्यापी समारोह का शुभारंभ करते हुए ये बात कही।

0: उन्होंने बताया कि मातृ मृत्यु दर में 86% की कमी आई है।
1: समय रहते हुए इलाज हो सके इसकी व्यवस्था हमने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत किया है। इसके नतीजे भी बहुत अच्छे आए हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 आया है उसमें ये ध्यान में आया, और यूनाइटेड नेशंस के जो हमारी रिपोर्ट है उसमें हमारे को ध्यान में आया कि MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेशियो मातृ मृत्यु अनुपात यह भारत का 86% डिक्लाइन आया।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज भगवान बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि जनजातीय अस्मिता तथा जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध भगवान बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ ऐतिहासिक उल गुलान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक अमर अध्याय है। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का अदम्य साहस, संघर्ष और सर्वोच्च बलिदान कृतज्ञ राष्ट्र सदैव स्मरण रखेगा। वहीं दिल्ली के समाज और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री रविन्द्र इंद्राज सिंह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन, सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध संघर्ष करते हुए जनजातीय समाज को स्वाभिमान, संगठन और अधिकारों की शक्ति का परिचय कराया। उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा केवल एक स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि सामाजिक चेतना, सांस्कृतिक अस्मिता और जनजातीय स्वाभिमान के प्रतीक हैं। राजधानी में दोपहर में गर्मी का कहर जारी है। वहीं शाम के समय कई इलाकों में तेज हवा के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राजधानी की जोन ओ में बसी कॉलोनियों पर उच्च स्तरीय बैठक की। कहा, इन कॉलोनियों में पुराने निर्माण गिराए नहीं जाएंगे। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने दिल्ली परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने बताया कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर एक दिन में लगभग 1.25 लाख यात्रियों ने नमो भारत सेवाओं का उपयोग किया। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। रात्रि के 8 बज चुके हैं। समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। गीत मालिका कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ पूजा भारती।

फिल्म संगीत गीत मालिका सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और जब हम किसी से भी मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप कैसे हैं, लेकिन जब बातें बढ़ती है तो शोर चारों बगल हो जाता है। और मोहब्बत की अगर बात हो, ये छुपे कभी नहीं छुपती। और दूसरा है कि इस सवाल का जवाब कुछ और तरीके से भी मिल जाता है। वैसे तो अगर गीतों का देखा जाए तो गीतों को इस तरीके से ही बनाया गया है जिसमें मोहब्बत में क्या क्या हो सकता है और किस तरीके से मोहब्बत रंग लाती है। इस तरीके के गीत कई सारे बने, उनमें से एक गीत ये भी है। आइए सुनते हैं फिल्म यस बॉस से ये गीत।

कुछ लोग तो जान से अपने महबूबा की तुलना कर देते हैं और कहीं कहीं अपनी महबूबा को चांद ही समझ लेते हैं। और गीतों में भी इन बातों को खूब अच्छी तरीके से बताया गया है। कौन सा वो गीत है जहाँ महबूबा को चांद बताया गया है? बहुत सारे ऐसे गीत हैं, लेकिन उनमें से खूबसूरत गीत ये भी है। आइए सुनते हैं इसे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत मालिका मेरी यानी कि पूजा भारती के साथ। और जब फिल्मों की बात होती है तो कई ऐसे फिल्म ऐसे भी आए हैं जिसमें फिल्म तो हिट नहीं हो पाई लेकिन गाने हिट हो गए। उनमें से कई ऐसे गीत हैं जो आज भी हम गुनगुनाते हैं। गीतों का यह सिलसिला, ये सफ़र तभी बरकरार रहता है जब वो गीत आप सुन सकें जो आपके हमेशा जुबां पर रहता है, यानी आप उसे गुनगुनाते रहते हैं। गीतों के सफर में सुनते हैं अगला गीत फिल्म लव से।

फिल्म संगीत गीत मालिका सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि पूजा भारती के साथ। और गीत मालिका में कुछ गीत इस तरीके से बने हैं, उसे भी लिया गया है, जिसमें ये कहा जाता है कि कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं लेकिन जवाब हर किसी का नहीं होता। जी हाँ, ऐसे गीत बहुत सारे बने हैं लेकिन उनमें से जो प्यारा सा गीत है वो आपके लिए अभी जस्ट हम प्ले करेंगे। लेकिन आपको ये जरूर कहेंगे, कुमार सानू की आवाज में इस गीत को सुनने का आनंद कुछ अलग ही है। सुनते हैं इस गीत को, फिल्म पापा कहते हैं।

गीतों की खूबसूरती उसके बोल से, उसमें रचे हुए आवाज़, और फिर आता है म्यूज़िक। और कई गीत ऐसे बने हैं जहाँ इन तीनों का समावेश इतनी खूबसूरती से किया गया जिससे कि गीत हिट हो गए। वैसे तो देखा जाए तो आवाज़ का जादू हर एक गीत को खूबसूरत बना देता है, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं उस पे म्यूज़िक इतनी खूबसूरत आ जाती है जिससे कि आप सुनते ही उसके उस ताल पर, उस धुन पर बिल्कुल फिदा हो जाते हैं। ऐसे ही गीत हैं जो अब आप सुनेंगे जिसमें आवाज़ का जादू तो जो है सो है, लेकिन उसकी धुन इतनी खूबसूरत और इतनी शांत, इतने सलीके से हैं कि गाना बहुत ही खूबसूरत लगता है।

जीवन में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनसे मिलकर ऐसा लगता है कि जीवन पूरा हो गया। जी हाँ, और जीवन में बहुत संजोग से ही ऐसे लोग मिलते हैं। सभी की किस्मत में कहाँ ही होते हैं, लेकिन जिन्हें मिल जाते हैं उनकी किस्मत सबसे खूबसूरत होती है। आइए और सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी नगमा।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत कार्यक्रम गीत मालिका। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को है। अब कुछ ही पलों में सुनिए हिंदी में समाचार संध्या।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। और रक्षा मंत्रालय दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानव अधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान

0: अटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: अफगानिस्तान की जनता के कल्याण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए श्री जायसवाल ने कहा कि भारत खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और दवा सहायता से संबंधित उपायों के माध्यम से अफगानिस्तान की सहायता जारी रखे हुए है। श्री जायसवाल ने बताया कि एमटी मैरीमैक्स जहाज के चालक दल के सभी 24 सदस्यों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।
0: जब ये हादसा हुआ उसमें तुरंत ही हमारे भारतीय दूतावास जो कि ओमान में है तुरंत एक्शन में आए और वहां ओमानी अधिकारियों से उन्होंने संपर्क किया, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की और 2400 भारतीय नागरिक को सुरक्षित वहां से निकाला गया। ये सभी नागरिक, हमारे नागरिक सुरक्षित हैं।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि उन्होंने विदेश नीति और कूटनीति, सामाजिक सुरक्षा, राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई हैं।
2: हमने उन देशों के साथ लगातार बातचीत जारी रखी जो तेल, गैस, एलएनजी, एलपीजी तथा उर्वरकों के उत्पादक हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीय हित का विषय है। इसलिए विदेश नीति पूरी तरह से उस समय के प्रमुख राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप संचालित होती है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भर को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिन के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों के आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद्य और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं।
1: रक्षा मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 250 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये 850 एकड़ की रक्षा भूमि पर स्थापित की जाएगी। रक्षा मंत्रालय की अपनी तरह की पहली परियोजना में रक्षा भूमि पर एकीकृत बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहायता के साथ बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा उत्पादन होगा। इससे रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए पारंपरिक ग्रिड बिजली की खरीद पर खर्च में काफी कमी आने की उम्मीद है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा

0: तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ से ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। सरकार ने मनरेगा के स्थान पर विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण की गारंटी अधिनियम जी रामजी को सुचारू रूप से लागू करने को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
2: विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम 1 जुलाई से लागू होने वाला है। कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन का प्रस्ताव किया, 95,692 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रस्तावित किया गया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार मोदी सरकार के 12 वर्षों के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को काफी मजबूत किया है, जिससे यह पहले की तुलना में अधिक सुलभ, किफायती और बेहतर गुणवत्ता वाली बन गई है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर गरीब परिवारों को हर साल प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 44 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और 1,80,000 करोड़ रुपए से अधिक का इलाज उपलब्ध कराया गया। सरकार ने अक्टूबर 2024 में योजना का विस्तार करते हुए आयुष्मान भारत व्यय वंदन योजना की शुरुआत की, जिसके तहत 70 वर्ष से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को भी स्वास्थ्य बीमा कवर दिया गया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने बताया कि इस कार्ड से अब वे निजी अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
4: आयुष्मान कार्ड से मुझे बहुत फायदा होगा, क्या होता है मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे।
3: सरकार ने हर मोहल्ले में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा देने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भी लोगों को सस्ती और अच्छी गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही है। बिहार के दिलीप कुमार ने बताया कि जन औषधि केंद्रों पर दवाइयां बहुत कम कीमत पर मिल जाती है।
5: यहां पर बहुत ही सस्ता है, 100 का दवाई 10 रुपए में मिल रहा है, बहुत ही हमको रिलीफ मिल रहा है, दवाई काम भी कर रहा है और हमारा रुपया का बहुत बचत हो रहा है। मैं गरीब आदमी आराम से दवाई खाके ठीक ठाक रह रहा हूँ।
3: सरकार ने मेडिकल शिक्षा का भी विस्तार किया है। 2014 में जहां सिर्फ 8 एम्स थे, अब वह बढ़कर 23 हो गई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी 387 से बढ़कर 818 हो गई है। वहीं पारंपरिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 में आयुष मंत्रालय की स्थापना की। देश भर में अब तक कुल 942 आयुष संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं। पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर व्यक्ति तक अधिक सुलभ और बेहतर बनाया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ोन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला।

0: हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने विश्व स्तर पर प्रतिष्ठित 3 विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों का आज स्वीकृति पत्र जारी किए। ये संस्थान ब्रिस्टल विश्वविद्यालय, यॉर्क विश्वविद्यालय और न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय महाराष्ट्र और कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों में स्थापित किए जाएंगे। मंत्रालय ने बताया कि ये विश्वविद्यालय व्यवसाय, कंप्यूटर विज्ञान और साइबर सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में कार्यक्रम उपलब्ध कराएंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत ए के 278 रन के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। मौसम विभाग ने कल पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कल लू चलने का अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर घातक कार्रवाई में 30 नागरिकों की मौत पर गहरी चिंता व्यक्त की। पाकिस्तान पर मानवाधिकार उल्लंघनों को छिपाने के लिए फर्जी खबरों का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, पिछले 12 वर्षों में मोदी सरकार की विदेश नीति देश के मूल लक्ष्यों के अनुरूप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की। सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों का बोझ कम करने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी। गृहमंत्री अमित शाह ने सीमा पार माल और यात्री आवागमन को डिजिटल और सुव्यवस्थित करने के लिए भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली का उद्घाटन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. India expresses grave concern over killings of 30 civilians in deadly crackdown on protesters in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. Accuses Islamabad of using fake news to mask severe human rights violations. External Affairs Minister S. Jayashankar says foreign policy under Modi-led government during past 12 years is in sync with its core national goals. Prime Minister Narendra Modi holds telephone conversation with Emir of Kuwait on evolving security situation in West Asia. Government gives financial support of 1.23 lakh crore rupees to oil marketing companies to ease burden of rising crude oil prices. Home Minister Amit Shah inaugurates land port management system to digitize and streamline cargo processing and passenger movement across land borders, and Defence Ministry to establish 250 megawatt solar power project with battery energy storage system in Uttar Pradesh for strengthening long-term energy security. And now the news in detail. The Ministry of External Affairs today acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi, spokesperson at the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are

0: JAAC पर पाबंदी आयद करने के बाद खित्ते में कशीदगी बढ़ गई है। JAAC ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में इक्तसादी और सियासी वजूहात की बिना पर मुजाहिरों की शुरुआत की है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत की खारजा पॉलिसी अब अपने बुनियादी कौमी मकासद के साथ हम आहंग है। जनाब जयशंकर ने कहा कि खारजा पॉलिसी और सिफारती अमल अब हुकूमत की जानिब से समाजी तहफ्फुज और कौमी तरक्की पर तवज्जो मरकूज करने को तरजीह देने के मकसद के साथ मुंसलिक हो गया है। डॉक्टर जयशंकर DD न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कौमी सलामती आज के दौर में महज सरहदों की हिफाजत करना ही नहीं बल्कि इसमें माशी तवानाई सेहत फर्टिलाइजर्स और साइबर ताकत का तहफ्फुज भी शामिल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत खलीजी खित्ते में अपने मजबूत स्ट्रेटेजिक और इक्तसादी मफादात का तहफ्फुज करने के साथ साथ ईरान अमरीका और इसराइल के साथ अपने आजादाना ताल्लुकात भी बरकरार रखे हुए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ती हुई जुग्राफियाई सियासी कशीदगी के दरमियान कलीदी खित्तों में भारत के मुतवाजन रवाबित पर भी जोर दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की गुज़िश्ता 12 साल के दौरान दूरंदेश क़यादत में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के तहत भारत में खातिरख्वाह तब्दीली आई है। इस मुद्दत के दौरान मोदी सरकार ने गरीबों किसानों ख़वातीन और नौजवानों की फलाह बहबूद और उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए हैं। आकाशवाणी न्यूज़ गुज़िश्ता 12 बरसों के दौरान अहम शोबों में हुकूमत की तरफ से किए गए इकदाम के बारे में एक खसूसी फीचर पेश कर रहा है। आज हम हिफ्ज़ान सेहत की खिदमात से मुतालिक हुकूमत की जानिब से किए गए इकदाम के बारे में बात करेंगे।
1: पिछले 12 वर्षों में हुकूमत ने मुल्क के हिफ्ज़ान सेहत के निज़ाम को नुमाया तौर पर मुस्तहकम किया है। अब ये खिदमात ज़्यादा काबिल रसाई कम खर्च और मेयारी हो गई हैं। साल 2018 में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे बड़ा सेहत बीमा प्रोग्राम आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की थी। इस स्कीम के तहत सामाजिक व इक्तसादी तौर से पसमानदा कुंभों को सालाना 5 लाख रुपये तक मुफ्त सेहत बीमा की सहूलत फराहम की जाती है। आकाशवाणी के खबरों के शोबे से बात करते हुए दिल्ली के रोहित सिंह ने कहा कि इस कार्ड की मदद से अब वो प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा सकते हैं।
2: फायदा होगा, क्या मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज करवा सकूंगा अपना और अपनी फैमिली का। इससे मुझे मतलब 5 लाख रुपए मिलेंगे और कार्ड से क्या होता है मेरा परिवार भी स्वस्थ रहेगा और अच्छा इलाज हो सकेगा।
1: इसके अलावा हुकूमत ने हर एक नज़दीकी मकाम पर बुनियादी सेहत की सहूलत फराहम करने के लिए 1,86,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर भी कायम किए हैं। इसके अलावा तिब्बी कॉलेजों की तादाद 387 से बढ़ाकर 818 हो गई है। नीज साल 2025 तक 942 आयुष इदारे भी शुरू किए जा चुके हैं। आकाशवाणी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दोपहर कुवैत के अमीर शेख मिशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया में बदलती हुई सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर नजरियात का तबादला किया। वज़ीर आज़म ने मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार किया और कुवैत के इक्तदार आला और इलाकाई सालमियत पर हमलों की भारत की जानिब से सख्त मजम्मत का इरादा किया। उन्होंने कशीदगी कम करने जल्द अज जल्द अमन इस्तेहकाम की बहाली के लिए मुजाकरात और सिफारती अमल शुरू किए जाने का इरादा किया। जनाब मोदी ने कुवैत में कसीर तादाद में भारतीय बिरादरी की बहबूद और सेफ्टी के लिए मुसलसल जाती तवज्जो के लिए कुवैत के अमीर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हफ्ते के रोज़ फ्रांस और स्लोवाकिया के 6 रोज़ा सरकारी दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर आज़म मोदी इतवार के रोज़ फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों से नाइस शहर में दो तरफा मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों रहनुमा भारत फ्रांस दो तरफा ताल्लुकात के सभी पहलुओं का जायजा लेंगे। इन ताल्लुकात को इस साल खुसूसी आलमी स्ट्रेटेजिक साझेदारी का दर्जा दिया गया है। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर आज़म 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया जमहूरिया के सरकारी दौरे पर रहेंगे। साल 1993 में स्लोवाकिया की आज़ादी के बाद से किसी भारतीय वजीर आज़म का स्लोवाकिया का ये पहला दौरा होगा। दौरे के तीसरे मरहले में वजीर आज़म 16 और 17 जून को फ्रांस के एवियन में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ये आकाशवाणी है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। हुकूमती जराए के मुताबिक तेल मार्केट

0: शिपिंग कंपनियों को दी गई ये माली मदद मगरबी एशिया तनाजे के पहले 78 दिनों के लिए है। इस साल माली मदद में एक्साइज ड्यूटी कटौती भी शामिल है। जराये ने बताया कि सोने की बरामद में कमी देखी गई है। जराये ने यह भी कहा कि कम से कम एक साल तक सोना न खरीदने की वजीर आजम की अपील और इम्पोर्ट ड्यूटी में किया गया इजाफा सोने की बरामद में कमी की वजह बना है। जराये ने मजीद बताया कि मईशत की तरक्की दबाव का शिकार नहीं है और तेज रुझान इस बात का इशारा है कि घरेलू मईशत से मुल्क को मदद मिल रही है। जराये के मुताबिक बैन अलाक्वामी बाजार में खाद की कीमतों में काबिल जिक्र इजाफा हुआ है, लेकिन हुकूमत किसानों को बेहद रियायती कीमतों पर खाद फराहम कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भारत की जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से आज नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS विनिमय का इफ्तिताह किया। ये निजाम जमीनी बंदरगाहों को मरकजी निजाम के तहत मरबूत करने की कार्रवाइयों के लिए डिजाइन किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगा। ये हवाई अड्डों और बंदरगाहों के लिए पहले से मौजूद डिजिटल निजाम को जमीनी बंदरगाहों के लिए दस्तयाब कराते हुए लॉजिस्टिक्स और इंजिबाती मालूमात के महफूज और हकीकी वक्त पर मबनी तबादले को मुमकिन बनाएगा। जनाब शाह ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ये पहल जदीद और टेक्नोलॉजी पर मबनी सरहदी इंतजाम के निजाम की तामीर की जानिब अहम कदम है। जनाब शाह ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म विकसित भारत 2047 के नजरिए से हम आहंग है और ये तिजारत में आसानी, कनेक्टिविटी और कौमी सलामती को मुस्तहकम करेगा।
1: हमारी स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना में लैंड पोर्ट अथॉरिटी का बहुत बड़ा योगदान आने वाले दिनों में है। ये जो लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम और स्मार्ट बॉर्डर की संकल्पना, ये दो मिलकर एक प्रकार से अभेद और सुरक्षित बॉर्डर का निर्माण करेंगे, इसमें मेरे मन में कम से कम कोई शंका नहीं है।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि हुकूमत डिजिटल टेक्नोलॉजीज और मौसर इंतजामी निजाम को अपनाने के जरिए सरहदी सलामती के तहत अहद बस्ता है। वजीर दाखिला ने मजीद कहा कि विनिमय प्लेटफॉर्म का आगाज सरहदी सलामती को मजीद मुस्तहकम करने और जमीनी बंदरगाहों की मजमुई कारकर्दगी को बेहतर बनाने की मुल्क की कोशिशों में अहम संग मील साबित होगा। वजारत दिफा ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर एक्स कंटोनमेंट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS के साथ 250 मेगावाट के शमसी तवानाई प्रोजेक्ट के क्याम को मंजूरी दे दी है। ये निजाम महकमा दिफा की तकरीबन 850 एकड़ खाली जमीन पर कायम किया जाएगा। ये अपनी नौयत का पहला प्रोजेक्ट है जिसे वजारत दिफा के जरिए अंजाम दिया जा रहा है, जिसे महकमा दिफा की खाली जमीन पर बड़े पैमाने पर शमसी तवानाई पैदा करने की सहूलत के लिए BESS का तावुन हासिल है। हुकूमत ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की मनरेगा से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी की जानेब आसान मुंतकली के लिए 95,692 करोड़ रुपए का उबूरी बजट मुख्तस करने की तजवीज रखी है। VBG रामजी कानून मुल्क भर में 1 जुलाई 2026 से नाफिज हो जाएगा। देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के देही तरक्यात के वजीरों के साथ आज नई दिल्ली में वर्चुअल मीटिंग के इनका के बाद मीडिया से बात करते हुए यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने इस कानून के नफाज के पेश नजर रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से सभी जरूरी तैयारियां करने को कहा है। ब्रिक्स जरई कॉन्फ्रेंस आज से मध्य प्रदेश के इंदौर में शुरू हो गई है। इस कॉन्फ्रेंस में 21 मुल्कों के नुमाइंदे यकजा होंगे और दुनिया भर में ज़राअत को दरपेश कुछ अहम तरीन चैलेंजों पर तबादला ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस की मेजबानी भारत कर रहा है, जिसके पास इस साल ब्रिक्स की सदारत भी है। 13 जून तक चलने वाली ब्रिक्स ज़रई कॉन्फ्रेंस के दौरान खुराक की यकीनी फराहमी, ज़रई तिजारत, माहौल दोस्त ज़रई तरीक़ेकार और ज़राअत के शोबे में जिद्दत तराजी जैसे मौजूदात पर वसीतर तबादला ख्याल किया जाएगा। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने आज नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेडक्वार्टर का दौरा किया और इस माह की 21 तारीख को नीट के दोबारा इम्तहान मुनक़द कराने से मुतालिक तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में NTA हेडक्वार्टर के बाहर नामानिगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकज ने इस बात को यकीनी बनाया है कि सवालिया पर्चों की तैयारी से लेकर इम्तहान के बाद के तमाम मराहिल तक मुकम्मल राजदारी बरकरार रखते हुए तमाम जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। जनाब प्रधान ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि इम्तहान के मवाद दुरुस्त तरीके से बर वक्त इम्तहान के मराकज तक पहुंचें। सेहत और खानदानी बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में हुकूमत प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के जरिए हमल के दौरान खवातीन के लिए सेहत की देखभाल के निजाम

0: को लगातार मुस्तहकम कर रही है। जनाब नड्डा ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुल्कगीर पैमाने पर तकरीबात का आगाज करते हुए ये बात कही। भारतीय महकमा मौसमियात ने शिमाल मशरकी भारत, ज़ेली हिमालयी मगरबी बंगाल और कर्नाटक के बाज़ हिस्सों में कल के लिए शदीद से इंतहाई शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में भी अगले 2 दिन के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। महकमे के मुताबिक शिमाल मशरकी रियासतों के बकिया हिस्सों में जुनूब मगरबी मानसून ने मजीद पेश कदमी कर ली है। मर्दों के क्रिकेट में भारत ए ने आज रंगेरी दम्बोला इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए सैफ अफ्रीकी सीरीज के इफ्तिताही मुकाबले में मेजबान श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दी। भारत की जानिब से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ की शानदार सेंचुरी ने टीम को मुकर्रा 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 277 रन स्कोर करने में अहम रोल अदा किया। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन पर की गई सख्त कार्रवाई के दौरान 30 शहरियों की मौत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत ने इस्लामाबाद पर फर्जी खबरों की आड़ में इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को छुपाने का इल्जाम आयद किया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में गुज़िश्ता 12 साल के दौरान मुल्क की खारजा पॉलिसी अपने असल कौमी अहदाफ से हम आहंग रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया की बदलती हुई सलामती की सूरत हाल पर कुवैत के अमीर से टेलीफोन पर बात की है। मरकजी हुकूमत ने खाम तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से सारिफीन को राहत देने के मकसद से तेल मार्केटिंग कंपनियों को तकरीबन 1.23 लाख करोड़ रुपए की माली मदद फराहम की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने जमीनी सरहदों पर कार्गो कार्रवाई और मुसाफिर आमदोरफ्त को आसान बनाने और उसे डिजिटाइज करने के मकसद से लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया। और वजारत दिफा तवानाई की यकीनी फराहमी के तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए उत्तर प्रदेश में बैटरी तवानाई जखीरा निजाम वाला 250 मेगावाट शमसी बिजली प्रोजेक्ट कायम करेगी। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मनी टॉक। This is Akashvani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on understanding RBI's monetary policy, supporting growth amid inflation risks. The participants are Dr. S.P. Sharma, economic analyst, and Rajesh Lake, anchor.
2: Good evening and welcome to Money Talk. Today's episode couldn't be more timely. The Reserve Bank of India finds itself navigating one of the most delicate balancing acts in recent memory, keeping the engine of growth running while keeping the fires of inflation from spreading. Interest rates, liquidity, currency pressures, global headwinds, all of it converging at once. To help us make sense of this complex landscape, we have with us Dr. S.P. Sharma, a seasoned economist. A warm welcome, Dr. Sharma.
3: Thank you.
2: Dr. Sharma, before we get into these specifics, could you give our listeners a broad picture? Where does RBI's monetary policy stand today? Is the central bank in a tightening mode, an easing mode, or somewhere in between? And what is driving that stance?
3: I would like to mention that RBI has kept the status quo for its recent policy review, monetary policy review regarding the repo rate. Repo rate is now at the same pace of 5.25%. And the stance is also very clear, accommodative stance will continue. And they have kept the overall growth of the Indian economy at 6.6%. And inflation is anticipated at 5.1% for the current financial year. So I would say this is a calibrated step to support the economy, because the economy is facing many headwinds from the geopolitical developments like conflict, West Asia conflict. So to mitigate all this impact, RBI has considered the same pace of repo rate, because the inflation, though at 3.5%, but may increase in the coming months because of the high fuel prices. So, but considering the nature of the inflation, that inflation has come from the supply shock.

0: Mannheim.
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने पर एक राष्ट्रव्यापी अभियान की आज से शुरुआत हुई है। आज हम कार्यक्रम में इस राष्ट्रव्यापी अभियान और देश भर में जो आज से जागरूकता और अन्य गतिविधियां इस अभियान के तहत चल रही हैं, उन पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करने जा रहे हैं और साथ ही किस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ने देश में जन स्वास्थ्य में अपनी एक बड़ी भूमिका निभाई है, इस बारे में भी आज हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ी हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन डायरेक्टर आराधना पटनायक। बहुत बहुत स्वागत है मैम आकाशवाणी में आपका।
3: नमस्कार।
2: तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत जो आज से एक देश भर में विशेष आउटरीच अभियान शुरू किया गया है, इसका मुख्य मकसद क्या है?
3: आज से जो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की 10वीं वर्षगांठ को आज हम मुख्य रूप से उसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। आपको जानकारी होगी कि ये प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 9 जून 2016 से प्रारंभ किया गया और इस अभियान में प्रत्येक माह के 9 तारीख को जो भी गर्भवती माताएं हमारी हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको विशेषज्ञ की सेवाएं दी जाती है। जो हमारे स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन वो इस दौरान होती है और साथ ही साथ जो उनका प्रसव पूर्व जांच किया जाता है वो निःशुल्क किया जाता है। साथ ही साथ विशेषज्ञ संपूर्ण रूप से उनकी जांच करते हैं ताकि स्वस्थ माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, ताकि गर्भावस्था के दौरान उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो।
2: जी, तो जैसा कि आपने बताया कि 10 वर्ष पूरे होने पर ये विशेष राष्ट्रव्यापी अभियान है, तो हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी वो गतिविधियां या जागरूकता के कार्यक्रम हैं जो अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इस अभियान के तहत जो संचालित किए जाएंगे, उस बारे में भी हमें बताएं।
3: सभी हमारे जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर है वहां पर आयुष्मान आरोग्य शिविर आयोजन किया जा रहा है। तो लगभग 1,80,000 हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर है जहां पर डॉक्टर्स और हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स वो प्रसव पूर्व जांच करते हैं और उसके साथ साथ जितने हमारे जिला अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल और हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, फर्स्ट रेफरल यूनिट्स है, वहां पर गायनेकोलॉजिस्ट के प्रेजेंस में उनका

0: प्रसव पूर्व जांच होता है। इसके साथ साथ इसी दौरान हम लोग हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई करते हैं। वैसे महिलाएं जिनको शारीरिक कोई ना कोई कठिनाई है जिसके कारण उनको हम एक हाई रिस्क कैटेगरी में लेते हैं, तो वो जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज है उनका स्पेशल फोकस रहता है इस 9 तारीख को, और उनका स्क्रीनिंग और उनका फॉलोअप। और इसको लेकर एक हम लोग अभियान भी चालू किए हैं जिसमें हम अवेयरनेस ला रहे हैं। तो हमारी जो आशा बहनें हैं वो गांव गांव घर घर जाके महिलाओं को जागरूक कर रही हैं कि आप अपना प्रसव पूर्व जांच के लिए नियमित रूप से प्रत्येक माह के 9 तारीख को जरूर अपना जांच कराने के लिए जाएं। उसके अलावा हमारी जन आरोग्य समिति है, जितने हमारे VHSND विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटीज हैं, वहां पर हम लोग फिर माताओं की हम लोग बैठकें आयोजित करते हैं। तो उन सभी में जितनी पंचायती राज हमारी संस्थाएं हैं, इन सभी को जितने भी सामुदायिक ऐसे हमारे प्लेटफॉर्म्स है, कम्युनिटी बेस्ड प्लेटफॉर्म्स,
1: जी
0: वहां पर हम अवेयरनेस की एक्टिविटीज करते हैं।
1: बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का जो ये एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम है, इसमें एक और विशेष पहलू है कि 9 ऐसी निशुल्क सेवाएं गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाई जाएंगी। कौन सी वो 9 सेवाएं हैं और किस तरह से जो गर्भवती महिलाएं हैं या परिवार हैं इन निशुल्क सेवाओं का फायदा ले सकते हैं?
0: स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, तो एक विशेषज्ञ वहां पर रहेंगे जो
1: जी
0: गायनेकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन जो इनकी जांच करेंगे। दूसरा है अल्ट्रासाउंड की सुविधा रहेगी, तो सोनोग्राफी उनकी हो सकती है। तीसरा हमारा है हाई रिस्क प्रेगनेंसी का डिटेक्शन और मैनेजमेंट, तो उनको चिन्हित करना। चौथा है हर एक इंडिविजुअल को ट्रैक करना और उसको फॉलोअप करना। पांचवा है ट्रांसपोर्टेशन इंसेंटिव, तो उनको आने जाने के लिए जो PMSMA सेशन के लिए वो आते हैं उसके लिए जो उनको सुविधा चाहिए ट्रांसपोर्टेशन की वो हम उसमें देंगे। छठा है उनको हम नियरेस्ट हमारे जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है जहां पर डिलीवरी हो सकती है उससे हम टैग कर देंगे। तो ये सातवा है जो उनकी मुख्य जांचें होती है जैसे खून की जांच, यूरिन की जांच, वो सारा है। फिर आठवा है आयरन फॉलिक एसिड, कैल्शियम सप्लीमेंटेशन और TD वैक्सीनेशन जो उनका होता है वो कराना। और नौवा है काउंसलिंग करना उनको, न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट, फिर उसके बाद फैमिली प्लानिंग। तो पूरे
1: जी
0: प्रसव के दौरान उनको, क्योंकि अपने खाने पीने पर बहुत ध्यान देना है, क्या क्या उनको खाना है, कैसे पौष्टिक
1: जी
0: आहार लेना है, और फिर साथ ही साथ परिवार नियोजन कि
1: जी
0: अगला बच्चा फिर कैसे प्लान कर सकते हैं
1: जी
0: उस पर। तो ये 9 प्रकार की सेवाएं हम मुफ्त में सभी गर्भवती माताओं को देते हैं।
1: बिल्कुल। तो इस अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि 2016 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, अब किस तरह से इन 10 सालों में इस अभियान से जो देश भर की करोड़ों गर्भवती महिलाएं उनको लाभ हुआ है, क्या कुछ महत्वपूर्ण नतीजे और इस अभियान का फायदा हमें इन 10 सालों में देखने को मिला है?
0: इन 10 सालों में मैंने बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगी, 7.5 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ये जो प्रत्येक माह के 9 तारीख में आती हैं उनको प्रसव पूर्व उनका जांच किया गया है, तो उनको एंटीनेटल केयर चेकअप मिला है। और हम लोगों ने लगभग 1.2 करोड़ हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन को आइडेंटिफाई किया, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को आइडेंटिफाई किया और उनका मैनेजमेंट करके उनका इंश्योर कराया कि सेफ डिलीवरी हो। तो ये एक काफी बड़ी
1: बिल्कुल
0: उपलब्धि है। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी, 9 तारीख तो एक फिक्स्ड डे है जहां पर हम सर्विसेज देते हैं। वैसे हमारे सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं और ANM बहनें हैं और आशा बहनें प्रेग्नेंट वुमेन को लाती है, वो प्रतिदिन उनको ये सेवा मिल सकती है कि वो ANC चेकअप के लिए आ सकते हैं जब भी उनको आवश्यकता हो।
1: बिल्कुल
0: और 9 तारीख को स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन, वो एक मेजर एड ऑन हम लोगों ने किया है।
1: बिल्कुल। एक जो विशेष इस अभियान ने भूमिका निभाई है कि जो प्रसव से पूर्व की जांच होती है जो प्रेगनेंसी के दौरान, तो उस जांच की पूरी एक व्यवस्था इस अभियान के तहत स्थापित हुई है। तो हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जो भारत का एक पूरा स्वास्थ्य ढांचा है वो कैसे अब बदला है, कैसे लोगों में, महिलाओं में खासतौर पर, प्रसव पूर्व जांच को लेकर इस खास अभियान से एक जागरूकता आई है, तो कैसे इस मामले में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है?
0: पहले हम लोग जो ये कार्यक्रम चलता रहा है, हमारे सभी स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव पूर्व जांच के लिए 4 ANCs, मतलब 4 बार महिला को, गर्भवती माता को अपने 9 महीने के दौरान कम से कम 4 बार उनको आके अपना जांच कराना था। ये मैं 2016 के पहले की बात कर रही हूँ। 2016 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान आया, इसमें हम लोग सभी गर्भवती माताओं के लिए सुविधा रखी कि प्रत्येक माह के 9 तारीख को आप एक अतिरिक्त, मतलब फिफ्थ ANC,
1: बिल्कुल
0: पांचवा अपना चेकअप कराने के लिए आप एक विशेषज्ञ की सेवा ले सकते हैं, वो उनकी सेवा मुफ्त में आपको उपलब्ध है। और उसके बाद जब इसमें हम लोग को सफलता हासिल हुई तो हम लोगों ने 2022

0: यही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को एक्सटेंडेड पीएमएसएमए करके
1: जी
0: लॉन्च
1: जी
0: किया, जिसमें जो ये गर्भवती माताएं जो हाई रिस्क कैटेगरी में आती, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज के लिए 3 अतिरिक्त चेकअप्स, तो मतलब टोटल 8 हो गया। तो एक नॉर्मल महिला के लिए जो हाई रिस्क नहीं है, नॉर्मल उसका डिलीवरी होना है, 4 ANC प्लस 1 विशेषज्ञ की सेवा, तो
1: जी
0: 5 हुआ। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी के लिए ये 5 प्लस 3 और, मतलब 8 टोटल ANC चेकअप होगा। तो
1: बिल्कुल
0: ये एक मेन बदलाव हुआ। तो इसमें जो हमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो मुझे लगती है कि क्योंकि अब हम हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमेन चिन्हित कर पा रहे हैं और चिन्हित करके उनका फॉलोअप कर पा रहे हैं, उनका हम लाइनअप करें कहाँ डिलीवरी होना है और उनको आने जाने के लिए, उनको बाकी सारे जांच के लिए मुफ्त सारा। हाई रिस्क फैक्टर्स करीब हमारे 25 कैटेगरीज हैं, जैसे सीवियरली वो एनीमिक डायबिटिक है, तो इस तरह कई प्रकार के हैं हमारे हाई रिस्क फैक्टर्स, और हम समय पर उनको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन को, तो उनको वो विशेष सेवाएं जो उनको विशेषज्ञ की आवश्यकता है, उनको बेहतर सेवा देने की आवश्यकता है, वो हम पहले से कर पा रहे हैं। तो
1: बिल्कुल,
0: इससे हमारे मातृत्व मृत्यु दर में भी कमी आई है और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है।
1: ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे श्रोताओं को बताई। इस पर ही मैं अगला प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जो अभी हमारे पास आंकड़े भी हैं कि हाल ही में पहले की तुलना में हमारे पास जो मातृ मृत्यु दर है उसमें बहुत बड़ी संख्या में कमी आई है, तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान एक सफल अभियान रहा है, कैसे प्रसव पूर्व जांच या जो पूरी सुविधाएं इस अभियान के तहत दी गई हैं उसने मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में एक बड़ी कमी लाने में मदद की है, इस बारे में भी आप थोड़ा सा और प्रकाश डालना चाहें तो।
0: अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो मातृत्व मृत्यु दर 2014-16 का अगर हम डाटा लें, जो SRS का है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है,
1: जी
0: उसमें 130 था, और आज वो 2022-24 का अभी हाल ही में SRS डाटा आया है, वो 87 हो गया है, तो 87 हो गया है। और अभी 2023 में जो यूनाइटेड नेशंस के मेटर्नल मोर्टालिटी एस्टिमेशन इंटर एजेंसी ग्रुप है, UNMMEIG, उन्होंने हमें ये बताया कि हमारा इंडिया का डिक्लाइन करीब 86% हुआ है 1990 से लेकर अब तक, जबकि ग्लोबल एवरेज है पूरे विश्व में ये मात्र 48% डिक्लाइन हुआ है MMR में, और इंडिया में वो डिक्लाइन मैंने ऑलमोस्ट डबल, आप कह सकते हैं 86% डिक्लाइन हुआ है पिछले 2 दशकों में। उसी तरह अगर नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट की, जो नवजात शिशु में मृत्यु दर होता है, वो हमारा 26 प्रति 1,000 लाइव बर्थ्स था 2014 में, वो घट के अभी 18 प्रति 1,000 लाइव बर्थ 2024 का जो लेटेस्ट SRS आया है उसमें आया है। उसमें भी जो UN इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन 2025 का उनका रिपोर्ट है, UNIGME रिपोर्ट हम कहते
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: उसमें इंडिया का डिक्लाइन 70%, मतलब 70% डिक्लाइन हुआ है नवजात शिशु मृत्यु दर में, और ग्लोबल डिक्लाइन है 54%। तो इसमें भी हम लोग की उपलब्धि विश्व के सापेक्ष बहुत बेहतरीन हुआ।
1: जी निश्चित तौर पर, और क्योंकि ये ऐसी योजना रही है जिसने धरातल पर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने में स्वास्थ्य में मदद की है, हम आपसे यही समझना चाहेंगे कि जो धरातल पर दूर दराज गांवों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, आशाएं हैं, ANM हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनकी किस तरह से भूमिका को सुनिश्चित किया गया है, कैसे वो इसमें अपना महत्वपूर्ण रोल निभा रहे हैं।
0: आशा वर्कर्स हैं, ये सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। आशा बहनों को पता है कि उनके गांव में कितनी गर्भवती माताएं हैं, तो
1: जी
0: वो एक एक के घर जाके उनसे संपर्क करके फिर उनको लेकर आती हैं हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर और स्वास्थ्य केंद्रों में, जहां पर उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद उनका फॉलोअप करना, बार बार उनके से संपर्क में रहना, कि डिलीवरी को प्लान करना, मतलब कहाँ पर वो प्रसव के लिए जाएंगी, जब जब वो चेकअप के लिए आती हैं, जब जब अपने प्रसव पूर्व जांच के लिए आती हैं, आशा बहन उनको साथ में लेकर आती है,
1: जी
0: प्रसव के दौरान भी वो उनके साथ में रहती है। तो आशा बहनों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। उसी के साथ साथ हमारे जो ANM दीदी हैं, मुख्य रूप से उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है, और हमारा एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिसमें
1: जी
0: हम ये पूरा ट्रैक करते हैं। हाल ही में एक जननी पोर्टल लॉन्च किया गया माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा 30 अप्रैल को, जिसमें हम एक-एक गर्भवती माता का ट्रैकिंग करते हैं, और जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन होता है तो उनका जब नेक्स्ट उनका ड्यू रहता है, आशा बहन के साथ साथ यहाँ से एक मैसेज भी जाता है, डिजिटल से एक मैसेज उनको जाता है कि आज आपका ड्यू डेट है चेकअप के लिए, तो आप जरूर आए। उसी तरह 9 तारीख के लिए उनको फिर मैसेज जाता है कि आप 9 तारीख को अपने जांच के लिए स्वास्थ्य केंद्र में जरूर आए। तो ये सारा फॉलोअप करना और सभी सुविधाएं पहुंचे, जागरूकता लाना, कैसे वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रह सकती है, खान

0: में क्या उनको विशेष ध्यान देना है, ये सभी हमारी आशा बहने और एएनएम दीदी वो करती है। उसके अलावा जो आंगनवाड़ी दीदियां हैं, आंगनवाड़ी में हम लोग का विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन
1: जी
0: डे मनता है,
1: जी
0: हर महीने मनाया जाता है, एक दिन होता है, वो एक आउटरीच कैंप के रूप में होता है। तो उसमें आंगनवाड़ी में भी यही सेवा जो हम स्वास्थ्य केंद्र में प्रतिदिन देते हैं, एएनसी चेकअप और उनका टीकाकरण, उनके खाना पीने के ऊपर क्या ध्यान देना, ये सारी चीजें भी VHND में जो आंगनवाड़ी केंद्र में महीने में एक दिन वो भी होता है। तो वहां पर आंगनवाड़ी सेविकाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है।
1: बिल्कुल। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान पिछले 10 वर्षों में हमारे देश की जो मेटरनल हेल्थ है, मातृ स्वास्थ्य है, उसमें एक अपनी बड़ी भूमिका निभा रहा है और उसके बहुत सारे नतीजे हमें इन वर्षों में देखने को भी मिले हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप कार्यक्रम में जुड़ी और आपने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी भी दी और महत्वपूर्ण बातें हमारे साथ साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को मेरा नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्षों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की मिशन निदेशक आराधना पटनायक के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
3: मंथन।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए और लगभग 200 अन्य लोग घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉ जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉ जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। डॉक्टर जयशंकर ने बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के बीच प्रमुख क्षेत्रों में भारत की संतुलित भागीदारी पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के आमिर शेख मिशाल अल अहमद अल जोबर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पतन प्रबंधन प्रणाली विनियमन का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पतनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और व्यय नियामक संबंधी सुरक्षित और पलपल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह आधुनिक और प्रौद्योगिकी संचालित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक

0: सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनपीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने आज नीट यूजी पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा वाघमारे की जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने अदालत में कहा कि पुणे स्थित शिक्षा सलाहकार वाघमारे ने पैसे के बदले विद्यार्थियों को परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक किए। केंद्र सरकार ने कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बोझ से उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,23,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की है। सरकारी सूत्रों के अनुसार ये सहायता पश्चिम एशिया संघर्ष के शुरुआती 78 दिनों के लिए दी गई है। इसमें उत्पाद शुल्क में कटौती भी शामिल है। सूत्रों ने बताया कि सोने के आयात में कमी आई है और अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर पर कोई दबाव नहीं है। श्रीलंका के दाम्बुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए 269 रन ही बना सकी। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आपने गजलें सुनी विजय गुरदासपुरी जी की आवाज में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज हम सुनेंगे राग चंद्र कौस पर आधारित ध्रुपद गायकी। कलाकार हैं श्री सुप्रिया मैत्रा। पखावज पर संगत दी है हरीश चंद्रपति जी ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रंजन, जिसमें आज राग चंद्रकौस पर आधारित ध्रुपद गायन आपने सुना। कलाकार थे श्री सुप्रिया मैत्रा। पखावज पर संगत दे रहे थे हरीश चंद्रपति। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़।

0: श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं। आर्थिक और राजनीतिक शिकायतों को लेकर विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रहे संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगने के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान से लगातार आ रही फर्जी खबरों और वीडियो के बारे में भी बताया।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, भारत दुनिया को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर आज कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भूमि पत्तन प्रबंधन प्रणाली विनिमय का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य डिजिटल माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है। भूमि पत्तनों के बीच संचालन के लिए बनाई गई इस प्रणाली से रसद और विनियामक संबंधी सुरक्षित और पल पल की जानकारी का आदान प्रदान किया जा सकेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
3: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए की डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओं, चलते हैं अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओं, मैं रचना अग्निहोत्री आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आइए चलते हैं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं आपकी फरमाइश पर भेजे गए इस प्यारे से गीत के साथ।

श्रोताओ, इस गीत को हमने लिया था फिल्म गाइड से। आवाज थी लता मंगेशकर जी की और इस गीत की फरमाइश हमारे पास आई थी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा जी की। साथ में थे ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। साथ ही में अगला मैसेज हमारे पास आया है राजीव नगर हिसार से राजेंद्र सैनी, राहुल सैनी जी का, जो कि हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है सनावद से शेख मोसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है गाँव शोभापुर से बाईपास मेरठ से दिग्दर्शन और कविता गौर जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया का। छोटे छोटे बच्चों का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, कुमार गौरव मंदूरकर का। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इससे पहले कि मैं आपके बहुत सारे मैसेजेस और पढ़ूं, चलते हैं कार्यक्रम के अगले आप ही के पसंदीदा गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म द ग्रेट गैम्बलर से। आवाजें थी अमिताभ बच्चन, आशा भोसले और शरद कुमार जी की। इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय महोबिया, कविता महोबिया, पेंटर बाबू, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आया है रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, और श्रोता है उदयबान पाल, जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल, दिव्यांश बघेल और पूरा परिवार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है गोल्डन रेडियो श्रोता संघ से, राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा का, शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास

आया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, अपार ढिंगिया का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आया है मजनू का टीला से कमल बालूजा जी जो कि सुन रहे हैं, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक के साथ आप सभी का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है पटेल नगर मलोट से जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया जी के साथ गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू जाजोरिया और गुड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यशप अब्बासी, रसीद वारसी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन जी सुन रहे हैं हमारा कार्यक्रम, उषा मोहन जी भी सुन रही हैं हमारा कार्यक्रम, तीलो नायक और मधु नायक जी का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आया है फजिल का, पंजाब से भूषण खेड़ा, विशु खेड़ा, विशाल खेड़ा, शालिनी खेड़ा, दिवानशी खेड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मारहरा दरवाजा एटा से लगातार हमारे साथ बने हुए नबी हसन अब्बासी जी आपका स्वागत है कार्यक्रम में। चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी, बिमला अनेजा जी के साथ हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत। कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक जी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, साथ में है कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस डाक बाबू, बेगम इशरत अकरम, वसीम अकरम, रूबीना वसीम, आरिज वसीम, नदीम अकरम, शमीम अकरम, ममता रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, कलेर बिहार से मोहम्मद आरिफ आसिफ खान और निकहत परवीन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आया है छोटी बलिया फिल्म सिटी मुंबई से अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जूही इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, कापसहेड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया मंतशा, आशु अहमद फूल वाले और समस्त फूल वाले फैमिली आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि आया है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, प्रेम पूर्वक आदाब के साथ हमारे पास मैसेज आया है। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल नहावकर, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान तायड़े, आशीष मुहरेकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा और मैंडी शर्मा हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्री नगर बीड शहर से आशा सपकाल, किशन सपकाल, सोनिया सपकाल, साईराज सपकाल और विशाल सपकाल जी का भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगला मैसेज हमारे पास आया है ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा का आप सभी का

गीत और अपने नाम के साथ। और हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। एक बार मैं पुनः बता दूं, ipradiodelhi@gmail.com। आप सुन रहे हैं आपकी फरमाइश मेरे यानी रचना अग्निहोत्री के साथ। आइए चलते हैं अगले मैसेज की तरफ जो कि हमारे पास आया है। गांव कल्याण मल्लका जिला भटिंडा पंजाब से अमृतपाल सिंह रामगढ़िया परमिंदर सचनूर और मनिंदर जी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल जी लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं, हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके आने से प्रोग्राम में रौनक आ गई है, हमें निराश और नजरअंदाज मत करना। बिल्कुल हम आपको कतई नजरअंदाज तो कतई नहीं कर सकते। आपका कहना है छोटी बलिया करजत मुंबई से अहमद भाई फूल वाले जी हमारे पास ये मैसेज भेज रहे हैं जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन जी भी हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी लवली और आरती अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा जी बिमला अनेजा जी का आया है जो कि लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कस्बा गन्नौर यूपी से फारूक अली खान फैजी फराज फरहीन फरहान फारिया और ताहिरा भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगला मैसेज हमारे पास आया है मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज गिरिडीह झारखंड से, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लो जी हम भी आ गए, कहना है गुरमीत सिंह मीता का साउथ एक्सटेंशन से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून निशा शबिस्ता मोहम्मद नसीब पलक लुबना और यश मंसूरी का आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा जी लगातार हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं सीटी दीवाना जी के साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृष्णा पार्क दिल्ली से लगातार हमारा कार्यक्रम सुनने के लिए। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा पूनम गगनेजा विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा जी भी हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आया है कनेरा मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता जी का जो कि कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं नीलम बत्ता निहारिका हार्दिक और वंश बत्ता के साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मित्रनगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े रेखा बंसोड़े अदिति बंसोड़े वैभव शिंदे हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बनो एलिजा नायब और लड्डू भी हमारा कार्यक्रम सुन रहा है, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दिलावर खान जी श्रोता रघुवीर नगर से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पीटीआई संसद मार्ग से अनिल मोहन जी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ चलते हैं जो कि आया है दतरिंगी से भागवत वर्मा जी का जो कि कार्यक्रम सुन रहे हैं शांति देवी के साथ लीलावती विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा के साथ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

तो ये गीत हमने लिया था फिल्म आम्रपाली से, आवाज थी लता मंगेशकर जी की। और इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है अस्तुपुरा जिला मऊ से, मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद जी का। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मित्र नगर बीड शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास आया है राम बालक दास, कोलकाता हुगली गुराप से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आया है पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से, जिसमें अनिल मोहन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कार्यक्रम चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहीन और तूबा आफरीन जी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आया है क्लासिक रेडियो श्रोता संघ की तरफ से, राजेश कुमार मेहरा, नंद किशोर, विनोद अर्जुन, दुर्गा शंकर, सिकंदर, राहुल चंदू, देवराज, लक्ष्य एवं समस्त ग्रामवासी, ग्राम बकानी खुर्द, पोस्ट आंवली कला, वाया भवानी मंडी, जिला झालावाड़, राजस्थान से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी का, जो कि हमारा कार्यक्रम सुन रहे हैं प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। अस्तुपुरा जिला मऊ से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं मजहर अली अंसारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। श्रोता रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायब लड्डू के साथ हमारा कार्यक्रम लगातार सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्या आरव खुराना और एसके पप्पी जी भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो

चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा जी का, जो कि लगातार हमारे कार्यक्रम में बने हुए हैं। श्रोता नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख फारूक, शबनम नहर, शबनम शहनाज भी हमारे कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारे पास आया है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से श्रीमती रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और अन्विका का, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की तरफ।

मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं।

0: यूं ही साथ साथ चलते।
1: मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें। हां हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म सिलसिला से। आवाजें थी लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन जी की। इसके साथ ही चलते हैं अगले मैसेज की तरफ, जो कि हमारे पास आया है नाभा जिला पटियाला पंजाब से। सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु का आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से हमारे साथ शामिल हो चुके हैं श्रीमती रेखा देवी शॉ, अजय कुमार गुप्ता जी, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता और अनविका के साथ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। श्रोता नजफगढ़ जय विहार से शाहरुख, फारूक, शबनम, शहनाज भी लगातार हमारे कार्यक्रम के साथ बने हुए हैं। और इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत की तरफ।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया था फिल्म कटी पतंग से। आवाज थी किशोर कुमार जी की। और इसी गीत के साथ मुझे यानी रचना अग्निहोत्री को इजाजत दीजिए कार्यक्रम आपकी फरमाइश कार्यक्रम को समेटने की। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही देर में 12 बजने को हैं।

सभी मीटरों पर हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज 24x7 पर हमारे प्रसारण जारी रहेंगे। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में उसके पश्चात अंग्रेजी में। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता शीघ्र बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज जल डम रू मध्य के पास अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल

दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: India has evolved as a leading voice on global matters. Union Home Minister Mr. Amit Shah yesterday inaugurated the Land Port Management System LPMS Vinimay in New Delhi, marking a major step towards digitizing and streamlining cargo processing and passenger movement across India's land borders. Addressing the gathering, Mr. Shah said the initiative reflects the government's commitment towards building a modern, technology-driven border management system. He said the platform is aligned with the vision of Vikasit Bharat 2047 and will strengthen trade facilitation, connectivity and national security. And that's the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 12:10 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ पूजा भारती। कार्यक्रम होता है बेस्ड उन कलाकारों पर जिन्होंने हमारे जीवन में या यूं कहें हमारे जीवन को एक नया मोड़ दिया। जी हाँ, इस कार्यक्रम के माध्यम से आज हम बात करेंगे उन जोड़ियों के बारे में जिन्होंने बचपन में ही संगीतकार बनने का सपना देख लिया था। हालांकि उन्होंने किसी उस्ताद से ये कहें तो किसी बहुत बड़े जानकार से संगीत की शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन फिर भी अपने सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने पूरी जी जान लगा दी, उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मशहूर संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के बारे में।

सुरों के सफ़रनामा में आज हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी के बारे में। इनके पिता वीर जी शाह मुंबई के गिरगांव में राशन की दुकान चलाते थे। एक संगीत शिक्षक थे जो इनके पिता के उधार को चुका नहीं पा रहे थे, जिसके बदले उसने दोनों भाइयों को मुफ्त में संगीत की शिक्षा दी। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए कल्याण जी मुंबई आ गए। बॉलीवुड में कदम रखने से पहले दोनों ने मिलकर भारत का पहला सफल लाइव म्यूजिक बैंड कल्याण जी वीर जी एंड पार्टी बनाया। इस ऑर्केस्ट्रा ने पूरे भारत में लाइव कॉन्सर्ट्स के जरिए मन सजाने की नई परंपरा शुरू की थी और उसी के बाद से ये परंपरा कायम रहा।

कल्याण जी के इस ग्रुप ने कहीं कहीं अपनी छाप छोड़ी तो कहीं कहीं उन्हें कम सा महसूस हुआ, लेकिन एक अच्छाई ये निकली उसमें, उनके साथ कई लोग हो लिए। उसी में मुलाकात हुई उनकी हेमंत कुमार से, और जब संगीतकार हेमंत कुमार से मुलाकात हुई तब कल्याण जी का जीवन का नया अध्याय शुरू हो गया। हेमंत कुमार के सहायक के तौर पर काम करने का मौका मिला। बतौर संगीतकार सबसे पहले 1958 में प्रदर्शित फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त में उन्हें संगीत देने का मौका मिला, लेकिन फिल्म की असफलता के कारण वे कुछ खास पहचान नहीं बना पाए। अपना वजूद तलाशते कल्याण जी को बतौर संगीतकार पहचान बनाने के लिए लगभग 2 वर्ष और लग गए। फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करना पड़ा इन्हें। इस दौरान उन्होंने कई बी और सी ग्रेड की फिल्मों में काम किया। समय बीतता गया। वर्ष 1960 में उन्होंने अपने छोटे भाई आनंद जी को भी मुंबई बुला लिया और फिर जीवन के नए अध्याय को शुरू करने में दोनों भाई आपस में जुड़ गए।

आप सुन रहे हैं सुरु का सफरनामा कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं कल्याण जी आनंद जी के बारे में। मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। कहते हैं कि जब समय अच्छा होता है तो सब अच्छा होता है, यही साबित हुआ कल्याण जी आनंद जी के साथ। जब आनंद जी कल्याण जी के पास मुंबई आ गए तो यूं कहें कि एक ही परिवार के भाइयों का एक ही सपना। अपने सपने को साकार करने के लिए कल्याण जी ने आनंद जी के साथ मिलकर फिल्मों में संगीत देना शुरू किया। और इस साल जिस साल दोनों जोड़ी ने साथ मिलकर फिल्में बनाई जिसमें संगीत दिया, उन्होंने अपनी पहचान भी बना ली थी उसी साल। जी हाँ, 1960 में ही प्रदर्शित हुआ फिल्म छलिया। इसकी कामयाबी बतौर संगीतकार कुछ हद तक कल्याण जी आनंद जी ने

अपनी पहचान बनाने में सफल हो गए थे। फिल्म छलिया के गीत छलिया मेरा नाम या फिर डम डम डिगा डिगा श्रोताओं के बीच आज भी लोकप्रिय है। सफलता से खुशी तो थी लेकिन पहुंचना बुलंदियों की ओर था। कौन सी वो फिल्म थी जिसके कारण ये जोड़ी सफलता की बुलंदी तक पहुंच सके, जानेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं इस फिल्म से ये गीत।

इनकी सफलता के कारण लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया, दीवाने हो गए थे इनके। संगीतकार जोड़ी के प्रति दीवानगी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि महान गायिका लता मंगेशकर उनके लिए तेज बुखार में भी रिकॉर्डिंग करने स्टूडियो पहुंच जाया करती थी, क्योंकि जो मेहनती होते हैं उनके साथ लोगों को भी मेहनत करना पड़ता है, और किसी काम में कोई पीछे ना हटे तो साथ चलने वालों को उसी तरीके से माहौल बनाना पड़ता है। और यही रहा कल्याण जी आनंद जी के साथ। वर्ष 1965 में प्रदर्शित संगीतमय फिल्म हिमालय की गोद में इसकी सफलता के बाद कल्याण जी आनंद जी शोहरत की बुलंदियों पर जा पहुंचे। फिर क्या था, इस जोड़ी ने खूब नाम कमाया, कई फिल्में उनकी झोली में आ गई, जिन्हें अपने संगीत से उन्हें सजाना कल्याण जी आनंद जी के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ। यानी कि बुलंदियों का वो समय जहाँ कोई भी उन्हें छू नहीं सकता था, वहाँ पहुँच गए कल्याण जी आनंद जी।

सिने करियर के शुरुआती दौर में उनकी जोड़ी निर्माता निर्देशक मनोज कुमार के साथ बहुत जमी। मनोज कुमार ने सबसे पहले इस संगीतकार जोड़ी से फिल्म उपकार के लिए संगीत देने की पेशकश की। इस फिल्म में इंदिवर रचित गीत कस्मे वादे प्यार वफा, इसके लिए दिल छू लेने वाला संगीत देकर कल्याण जी आनंद जी ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया।

वर्ष 1970 में विजय आनंद निर्देशित फिल्म जॉनी मेरा नाम में वो गीत नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो, या फिर वो वाला गीत पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जैसे रोमानी गीतों को संगीत देकर कल्याण जी आनंद जी ने श्रोताओं का दिल जीत लिया था। मनमोहन देसाई के निर्देशन में फिल्म सच्चा झूठा के लिए कल्याण जी आनंद जी ने बेमिसाल संगीत दिया। कल्याण जी आनंद जी के लिए कुछ लोग बहुत ही खास थे। कौन से ऐसे लोग थे जो उन्हें प्रमुख लगते थे? उनके संगीत से सजा हुआ वो गीत जो उन लोगों को बहुत पसंद था, और कल्याण जी आनंद जी को वो लोग पसंद थे, जानेंगे। लेकिन पहले सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत से सजा ये गीत।

कल्याण जी आनंद जी के उनके पसंदीदा निर्माता निर्देशकों में सबसे पहला नाम आता है प्रकाश मेहरा, मनोज कुमार, फिरोज खान, ये तो प्रमुख थे। कल्याण जी आनंद जी के सीने करियर पर नज़र डालने पर पता लगा कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर फिल्माए उनके गीत काफ़ी लोकप्रिय हुए थे और इसीलिए वो अपने अधिकतर फिल्मों में अमिताभ बच्चन से गवाने की भी कोशिश करते थे। वर्ष 1989 में सुल्तान अहमद की फिल्म दाता में उनके कर्णप्रिय संगीत से सजा वो गीत बाबुल का ये घर बहना एक दिन का ठिकाना है, आज भी श्रोताओं की आंखों को नम कर देता है। इस दिग्गज जोड़ी ने कई नए गायकों को ब्रेक दिया जो आगे चलकर इंडस्ट्री के सुपरस्टार बने। इसमें उदित नारायण, कुमार सानू और अलका याग्निक भी शामिल हैं। तो आइए सुनते हैं कल्याण जी आनंद जी के संगीत से बद ये गीत।

0: लगभग 250 फिल्मों में बेहतरीन संगीत देने के लिए उन्हें 1975 में फिल्म कोरा कागज़ के लिए फिल्म फेयर और 1992 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इतने महान कलाकार जिनके हर एक धुन पर दुनिया थिरकने लगी, तो फिर उन्हें ऐसे अवार्ड्स तो मिलने ही चाहिए। खूब नाम कमाया और समय रहते अपने जीवन के उन उपलब्धियों को प्राप्त किया जहाँ इतने कम उम्र में कोई भी नहीं पहुँच सकता।
1: रूठे रूठे पिया।
0: फिल्म कोरा कागज से ये गीत।

जिनके लिए कुछ भी कहो कम है। समय बीतता गया, समय वो भी आया जब इन जोड़ियों में से एक ने अलविदा कहा। जी हाँ, 24 अगस्त 2000 को कल्याण जी इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपने जीवन के 80 वसंत देख चुके आनंद जी इन दिनों बॉलीवुड में सक्रिय नहीं है, और ऐसा ना हो तो क्या हुआ। वो संगीत, वो धुन जो आज भी हम सुनते हैं, जिस पर आज भी हम थिरकते हैं, जिसके गीत आज भी हम गुनगुनाते हैं, वो तो आज भी हमारे साथ जीवित है। फिलहाल सुरों का सफरनामा में इतना ही। अगली बार आपसे फिर किसी एक नए कलाकार के साथ मुलाकात होगी। तब तक मुझे पूजा भारती को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज 24x7 से। एक बजने को है

0: अब कुछ ही पलों में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप है। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
1: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि होर्मुज डल डमरू मध्य के पास अमेरिकी सैन्य हेलीकॉप्टर को गिराने के लिए ईरान जिम्मेदार है और अमेरिका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में की गई, जब एक ड्रोन ने रणनीतिक जलमार्ग के पास दुर्घटनाग्रस्त हुए अपाचे हमलावर हेलीकॉप्टर के चालक दल को बचाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विज्ञान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार, केरल, माही, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामुला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। भारत ए के 278 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका ए

0: Eight runs in the opening fixture of the Tri Nation A series at the Rangiri Dambola International Stadium yesterday, and that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24x7। 1:10 हो चुके हैं, समय है कार्यक्रम गीत सुनहरे, गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। जी हाँ, पुराने गीतों का वो सफर शुरू हो रहा है मेरी यानी कि पूजा भारती के साथ। उन सफर को आइए तय करते हैं जिस सफर से हम चलना शुरू किए थे, यानी कि वो समय जब फिल्म संगीत में कम ही लोग आगे आ पा रहे थे और जो आगे आ रहे थे वो हिट हो रहे थे, क्योंकि लोगों के पास एक खूबसूरत सोच, खूबसूरत नज़रिया और नया कुछ करने की तमन्ना उस वक्त पनप रही थी। और वही समय लेकर आया ये गीत।

रास्ते चाहे जैसे भी हों, लेकिन महबूब का वो रास्ता जहाँ से दिल चलकर दिल तक पहुँचता हो, वो सबसे प्रिय होता है। ये गीत कुछ इसी तरीके के बोल बोल रहा है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

और प्यार करने के बाद जब ये एहसास हो कि मेरा मोहब्बत सबसे प्यारा है, तब गीतों के बोल कुछ अलग होते हैं। और जब ये एहसास हो कि मोहब्बत जिससे की है, ये मैंने क्या किया, तब गीत कुछ और होते हैं। गीतों के बोल, उनके राग और संगीत, सब कुछ गीतों को एक अलग मोड़ दे देता है। आइए सुनते हैं अगला गीत, इसमें क्या कहा जा रहा है।

जब इन गीतों को सुनते हैं, वो आवाज जो मुकेश की थी, वो आवाज उस जमाने में संगीत के नाम पर इतना कुछ दिया हमें कि उन गीतों को याद करके आज भी हम उस राग को अपनाने की कोशिश करते हैं। वो बोलने का तरीका, वो गीत गाने का तरीका, सब कुछ सभी से भिन्न था। इसलिए मुकेश ने अपने गीतों से लोगों को बहुत खुश किया।

जहां पर मुकेश के इस गीत को सुना, तो वहां पर वो गीत जहां पर अपनी महबूबा की तारीफ करते हुए वो शब्द बोले गए, कुछ इस अंदाज में।

कहते हैं कि जब मोहब्बत है जहाँ पर, वहाँ पर तकरार भी है। और फिर पहले तुम का चक्कर हर जगह होता है। जी हाँ, मोहब्बत के बनाए हुए उन गीतों को इतने खूबसूरती से सजाया गया है। राग के साथ साथ धुन, धुन के साथ साथ गीत के बोल। यूँ कहें कि गीत के बोल ही इतने खूबसूरत हैं, जिसे अगर खूबसूरती से गाया जाए, खूबसूरती के धुन से सजाया जाए, तो गीत और भी खूबसूरत हो जाते हैं।

कहीं कहीं मोहब्बत में बहुत मशक्कत है, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि दिल में आखिर क्या है, तो क्यों ना दिल की आवाज़ ही सुना दी जाए।

या जब बात आती है कि दिल से दिल तक बात पहुंच चुकी है, तब ख्वाब सिर्फ एक ही देखता है, ये दिल अपने महबूब के साथ वो बिताए हुए पल, या फिर वो बिताने के लिए वो पल ढूंढता है। ख्वाब ऐसे होते हैं जिसे पूरा करने के लिए दिल का तड़पना जरूरी हो जाता है, और गीतों में इसे बहुत खूबसूरती से बताया गया है।

कहते हैं कि जब मोहब्बत की राहें बहुत तकलीफ भरी होती है, तब भी मोहब्बत करने वाले भटकते नहीं हैं। राहों को जितनी भी तकलीफ क्यों ना बना दो, ये दिल मोहब्बत के नाम पर धड़कता रहेगा।

0: तो मोहब्बत का ये जादू कोई एक ही तरफ थोड़ी ना होता है, दूसरी तरफ भी यही जादू चल रहा है। अपना महबूब कितना प्यारा लग रहा है, और वो तारीफ, वो अदाएं, वो शोखियाँ, सब कुछ उस तारीफ में जब एक साथ सिमट कर आ जाए तो गीत कुछ इस तरह से बनते हैं।
1: जुल्फ से

और फिर वो समय भी करीब आ गया जब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की बात होती है। और जी हाँ, समय के समाप्त होने पर ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन एक गीत तो और भी है जो आप और हम सुनेंगे और फिर उसमें डूबेंगे भी, और ये भी कहेंगे कि वाकई में बहुत ही खूबसूरत सा गीत है। जी हाँ, फिलहाल इस कार्यक्रम से, यानी कि फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा की फिल्मी संगीत से मुझे दीजिए अनुमति। आप सुनिए कि गीत, और फिर मिलेंगे आपसे एक नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत सुनहरे गोल्डन एरा फिल्म संगीत कार्यक्रम। आप जुड़े हैं AIR लाइव न्यूज़ 24x7 से। 2 बजने को है, अब हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले

0: जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
1: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जावेर अल सबाह से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए संवाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत की विदेश नीति उसके मूल्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के अनुरूप हैं। डॉक्टर जयशंकर ने डीडी न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि विदेश नीति और कूटनीति सामाजिक सुरक्षा और राष्ट्रीय विकास पर केंद्रित सरकार की प्राथमिकताओं के साथ एकीकृत हो गई है। श्री जयशंकर ने कहा कि चाहे प्राकृतिक आपदा हो, आर्थिक संकट हो या कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियां, दुनिया भारत को संकट की स्थिति में पहले सहायता प्रदान करने वाले देश के रूप में देखती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बात की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
2: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बार थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग हो गया, आज जैसे बिहार की मीटिंग था, आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यवहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और फिर निर्बाध रूप से दुनिया भर के गंतव्यों के लिए आगे की यात्रा कर सकते हैं। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दामबला में एक दिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ए ने श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आरएस रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged in several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses, addressing the

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार, नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। 3 बजने को है, अब सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विकास मेहरोत्रा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उनके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में बदलती सुरक्षा स्थिति पर कल कुवैत के अमीर शेख मेशाल अल अहमद अल जाबेर अल सभा से टेलीफोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की और कुवैत की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता पर हमलों की निंदा की। उन्होंने शांति और स्थिरता बहाल करने तथा तनाव कम करने के लिए

0: बर्बाद और कूटनीति की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी एवं आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं।
1: सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को अनुरोध पत्र लिखा है, उनके पहले भी सहयोग रहा है, इस बात थोड़ा और भी ध्यान दिया जाए। इस बीच में अनेक राज्य के मुख्यमंत्री अपने राज्य की डीजी और चीफ सेक्रेटरी की उपस्थिति में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की मीटिंग, एसपी की मीटिंग राउंड शुरू किए हैं, जिसमें एनटीए के डीजी स्वयं भी यहाँ ऑनलाइन जुड़ते हैं। अनेकों राज्यों की मीटिंग होगी आज, जैसे बिहार की मीटिंग था। आने वाले दिनों में भारत सरकार की गृह सचिव भी उस पर एक उच्च स्तरीय मीटिंग लेने वाले हैं।
0: श्री प्रधान ने नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बारे में कहा कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक खुली बैठक का आयोजन किया। एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने, पीड़ितों के लिए वसूली तंत्र में सुधार करने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी INSA ने सतत विकास के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर ब्रिक्स विज्ञान अकादमियों के फोरम की पहली बैठक वर्चुअल माध्यम से आयोजित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बताया कि यह बैठक AI का उपयोग और ग्लोबल साउथ सहयोग को सुदृढ़ करने के विषय पर आयोजित की गई। इसमें 10 देशों ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका, बेलारूस, नाइजीरिया और वियतनाम की विज्ञान अकादमियों ने जिम्मेदार और न्यायसंगत AI विकास पर एक साझा घोषणा को आगे बढ़ाने के लिए भाग लिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। श्रीलंका के दाम्बला में एक दिवसीय त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के पहले मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 108 रन से हरा दिया है। भारत की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सर्वाधिक 101 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय RS रघु। The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses.
3: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.

0: जगजीत सिंह की आवाज़ में गाई इस गज़ल के साथ ही आज की गज़लों का कार्यक्रम यही होता है संपन्न। आकाशवाणी दिल्ली का ये AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। रात्रि के 4 बजे हैं।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

मीरा के स्वर में। अभी आप गुरुवायूरप्पन की प्रशंसा में हरि नामक कीर्तनम सुन रहे थे। इसके साथ ही आज का अर्चना कार्यक्रम संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। चार बजकर 20 मिनट हुए हैं। लीजिए अब सुनिए कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्मा। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे गायन। कलाकार हैं मिनी एन। आपने प्रस्तुत किया है रागम कल्याणी जो मिश्र चापू ताल में निबद्ध है। संगीत दिया है स्वाति तिरुनाल ने और मृदंगम पर संगत किया है MV चंद्रशेखर ने।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आपने सुना मिनी एन को। वंदे मातरम।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज बुधवार है। शक संवत 1948 की ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2026। सुबह के 4:53 हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

जी आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। और लीजिए अब सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। अब से कुछ ही देर में यानी सुबह 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आज का योग होगा बद्ध पद्मासन। फिर आप सुन सकेंगे 5:20 पर देशभक्ति गीत। 5:30 का समय रहेगा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी का। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जल तरंग, प्रस्तुत करेंगे मनीष शर्मा।

6:10 पर सुनिएगा भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:40 पर चिंतन प्रसारित किया जाएगा। आज आप सुनेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के विचारों पर।

0: 简单。रामचरितमानस से पाठ आप सुन सकेंगे 6:45 पर। आज आप सुनेंगे बालकांड का भाग 82। 6:55 पर सुनिएगा संस्कृत में समाचार, साथ ही आप सुनेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में समाचार। संगीतिका का समय रहेगा 7:10। आज आप सुनेंगे डॉक्टर स्मृति त्रिपाठी के गाए भजन। 7:30 सुनिएगा गीत भरी गुड मॉर्निंग। 8:00 आप सुन सकेंगे समाचार। 8:45 का समय रहेगा शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर गंगा का। आज आप सुनेंगे शेख फरहान अमीन का गायन। आप प्रस्तुत करेंगे राग मियां की तोड़ी। 9:15 का समय रहेगा साइंस मैगजीन का। 9:30 सुनिएगा पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक। 10:10 पर सुनिएगा आपकी पसंद फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम और 11:10 पर सुनिएगा सबरस कार्यक्रम। 11:30 सुरमंजरी के अंतर्गत आप सुनेंगे गायन, कलाकार होंगे जयश्री। आप प्रस्तुत करेंगे राग बहादुरी तोड़ी। 3 आज प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 5:00 वाले हैं। लीजिए अब सुनिए समाचार, पहले हिंदी में और फिर अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक सेवा की थी। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिनों का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिनों का हो गया है, जिससे वे भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री के परिवर्तनकारी शासन, ग्लोबल साउथ के लिए उनके प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से गतिशील भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के भी इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में सभी घटक दलों के नेताओं के अलावा एनडीए शासित सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कई रिपोर्टों की पुष्टि की है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि उम्मीद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को उसके कृत्यों और दुर्व्यवहारों के लिए जवाबदेह ठहराएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़पों में 30 से अधिक लोग मारे गए हैं और लगभग 200 अन्य घायल हुए हैं।
2: पाकिस्तान की ओर से फर्जी खबरों और वीडियो का एक सिलसिला लगातार देखने को मिला है। यह अपनी विफलताओं को छिपाने और अपने मानवाधिकारों के उल्लंघन हनन से ध्यान भटकाने का पाकिस्तान का हताशापूर्ण प्रयास है।
1: विदेश मंत्री

0: डॉक्टर एस जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर 14वीं कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। इस वार्ता का विषय है परिवर्तनशील दुनिया, वैश्विक, क्षेत्रीय और स्थानीय परिप्रेक्ष्य। डॉक्टर जयशंकर फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के मुख्यालय का दौरा किया और 21 जून को नीट की पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रश्न पत्रों की तैयारी से लेकर बाद की प्रक्रियाओं तक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखते हुए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की भूमि सीमाओं पर माल प्रसंस्करण और यात्री आवागमन को डिजिटल बनाने तथा सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कल नई दिल्ली में डिजिटल धोखाधड़ी के जरिए मानवाधिकारों की सुरक्षा पर एक बैठक का आयोजन किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमणियन ने बैठक में साइबर धोखाधड़ी से बढ़ते खतरे पर चिंता व्यक्त की और नागरिकों के अधिकारों, गरिमा और सुरक्षा पर इसके गंभीर प्रभाव के बारे में बताया। उन्होंने ऐसे अपराधों को रोकने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए व्यावहारिक उपायों की आवश्यकता पर भी बल दिया। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के हिमालय की तराई वाले इलाकों और कर्नाटक में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में आज लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has become the longest serving elected Prime Minister of India today. Mr. Modi took the oath of office on 26 May 2014. He has surpassed the record of Pandit Jawaharlal Nehru, who first took oath as an elected Prime Minister on 13th May 1952 and served until 27th May 1964. Pandit Nehru's tenure as an elected Prime Minister amounted to 4,398 dates. From 26th May 2014 to today, 10th June 2026, Prime Minister Modi's continuous tenure is now 4,399 days, making him the longest serving elected Prime Minister in India's history. A meeting of the National Democratic Alliance NDA will be held in New Delhi today to celebrate its government completing 12 years and Prime Minister Narendra Modi becoming the longest continuously serving elected PM of India. All constituents of the alliance besides the top leadership of the BJP including Prime Minister Modi are expected to attend the meeting. The NDA meeting will also be attended by chief ministers and deputy chief ministers of all 22 NDA governed states and union territories besides the leaders of all alliance constituents. Prime Minister Narendra Modi held a telephone conversation yesterday with the Emir of Kuwait, Sheikh Maishal Al Ahmad Al Jaber Al Sabha. The two leaders exchanged views on the evolving security situation in West Asia. Prime Minister expressed deep concern over the escalation of tensions and reaffirmed India's strong condemnation of attack on Kuwait's sovereignty and territorial integrity. The Ministry of External Affairs acknowledged several reports of severe police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several protesters have been killed and many injured. It added, India hopes that the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. Addressing the media in New Delhi yesterday, spokesperson at the Ministry of External Affairs Randhir Jaiswal said that New Delhi continues to see a pattern of fake news and videos emanating

0: From Pakistan, Mr. Jaiswal described them as a desperate attempt by Pakistan to cover up its own feelings and deflect attention away from its human rights abuses.
1: A pattern of fake news and videos emanating from Pakistan. It is a desperate attempt by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. There are several reports of police brutality in Pakistan-occupied Kashmir, in which several people have been killed. There are several more who have been injured. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and its abuses.
0: World leaders have congratulated Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister of the country. They have paid a tribute to Prime Minister's transformative governance, his advocacy for the Global South, and his vision of an inclusive and economically dynamic India. President of Sri Lanka, Anura Kumara Dissanayake, in a letter said that the milestone is a testament not only to Mr. Modi's years in office, but also to the trust and confidence that the people of the world's largest democracy have repeatedly placed in his leadership. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar will be on a two-day official visit to Bulgaria and Finland starting today. The Ministry of External Affairs said that during his visit to Bulgaria, Dr. Jaishankar will meet the Bulgarian leadership and hold discussions with his counterpart. On the second leg of his visit to Finland, Dr. Jaishankar will attend the 14th edition of the Kulataranta talks. At least 7 people were killed and some others suffered serious burn injuries after a massive fire engulfed an illegal firecracker manufacturing and storage unit in Jaipur's Honagorian area in Rajasthan. In men's cricket, India A defeated host Sri Lanka A by 8 runs in the opening fixture of the Tri-Nation A series at the Rangiri Dambola International Stadium yesterday. Ruturaj Gaikwad's superb century helped India A in posting a competitive 277 for 6 in stipulated 50 overs. Gaikwad posted a composed 101 from 114 deliveries, and that is the end of this news bulletin.
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम रेंज 66.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। सुबह के 5:10 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।
3: योग सिर्फ एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, यह गुणतापूर्ण भावनात्मक एकीकरण एवं आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, जिससे हमें सभी कल्पनाओं से परे स्थित आयाम की एक झलक मिलती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है, यह शरीर, मन, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट करता है। यह व्यक्ति को शांति और आनंद प्रदान करता है। व्यक्ति के व्यवहार, विचारों और रवैये में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। योग के दैनिक अभ्यास से हमारी अंतः शांति, संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान और जागरूकता बढ़ती है। योगासन करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। योगासन खुली एवं ताजा हवा में करना सबसे अच्छा माना गया है। फिर भी अगर ऐसा करना संभव ना हो तो किसी भी खाली जगह पर आसन किया जा सकता है। योग सीधे जमीन या फर्श पर बैठकर न करें, इसके लिए दरी या कालीन जमीन पर बिछाकर योगासन करें। किसी भी योगासन को झटके से न करें। योग उतना ही करें जितना आप आसानी से कर पाए। योगासन करने के तुरंत बाद स्नान ना करें, क्योंकि व्यायाम करने के बाद शरीर गर्म हो जाता है, और अगर आप गर्म शरीर में ही स्नान करेंगे तो सर्दी, जुकाम, बदन दर्द जैसी तकलीफ हो सकती है। इसलिए योग करने के 1 घंटे बाद ही स्नान करना चाहिए।
4: The
3: योग का महत्व योगाचार्य महर्षि पतंजलि ने

योग दर्शन में सूत्रों के रूप में प्रस्तुत किया है। आज वही योग दुनिया भर में प्रसिद्धि पा रहा है। योग का अर्थ है जोड़ना, जीवात्मा का परमात्मा से पूरी तरह से एक हो जाना ही योग है। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के अनुसार अपने चित्त को एक ही जगह स्थापित करना योग है। आज के कार्यक्रम में बद्ध पद्मासन। बद्ध पद्मासन को अंग्रेजी भाषा में लॉक्ड लोटस पोज या फिर क्लोज्ड लोटस पोज भी कहा जाता है। बद्ध पद्मासन दो शब्दों से मिलकर बना है, बद्ध और पद्म, जिसमें बद्ध का अर्थ होता है बांधा हुआ और पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल। इस आसन को करने का तरीका मेरे साथ कीजिए। सबसे पहले दंडासन में बैठ जाएं, हल्का सा हाथों से जमीन को दबाते हुए और सांस अंदर लेते हुए रीढ़ की हड्डी को सीधा करें। श्वास अंदर लें और अपनी दाईं टांग को उठाकर दाएं पैर को बाईं जांग पर ले आएं और फिर दूसरे पैर के साथ भी ऐसा ही करें। अब आप पद्मासन में हैं। इस मुद्रा में आपके दाएं कूल्हे और घुटने पर खिंचाव आएगा। अब अपना बायां हाथ पीठ के पीछे से आगे की ओर ले आएं और बाएं हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ दें। ये करने के बाद इस मुद्रा में एक से दो बार सांस अंदर और बाहर लें। और अब यही क्रिया दाएं हाथ से भी दोहराएं। बहुत से लोग ये आसन उतनी आसानी से नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए जहां तक आपके हाथ जाते हैं पद्मासन में बैठे हुए पीठ के पीछे से क्रॉस करते हुए जितनी दूरी तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक ले जाएं। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपका लचीलापन बढ़ेगा और आप इस आसन को पूरी तरह से कर पाएंगे। जिन लोगों का बद्ध पद्मासन लग चुका है अब आप उस मुद्रा में थोड़ी देर बैठें और कुल मिलाकर पांच बार सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें, ताकि आप आसन में 30 से लेकर 60 सेकेंड यानी एक मिनट तक रह सकें। धीरे धीरे जैसे आपके शरीर में ताकत और लचीलापन बढ़ने लगे आप इस समय को बढ़ा भी सकते हैं, परंतु कभी भी इस आसन को 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड से ज्यादा ना करें। पांच बार सांस लेने के बाद आप इस मुद्रा से बाहर आ सकते हैं। अब बद्ध पद्मासन करने के लाभ के बारे में बात करें। बद्ध पद्मासन घुटनों और कूल्हों के जोड़ों का लचीलापन बढ़ाता है। कंधों, कलाइयों, पीठ, कोहनियों, घुटनों और टखनों में खिंचाव लाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। यह पीठ की मांसपेशियों में खिंचाव लाता है और रीढ़ की नसों में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है। बद्ध पद्मासन पाचन अंगों को उत्तेजित करता है और कब्ज आदि से राहत दिलाता है।

0: वद पद्मासन का दैनिक अभ्यास गठिया में भी आपको फायदा देता है। लेकिन इस आसन को करने के लिए कुछ सावधानियां जरूरी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये आसन निषेध है। जिनके घुटनों में तीव्र दर्द हो उन्हें बद्ध पद्मासन नहीं करना चाहिए। अगर आपको हैमस्ट्रिंग में चोट हो तो बद्ध पद्मासन ना करें। कंधों में चोट या दर्द हो तो ये आसन आपके लिए वर्जित है। और हमेशा की तरह एक सुझाव, अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक जोर न लगाएं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल आपसे पुनः भेंट होगी एक नए आसन के साथ, इसी समय इसी चैनल पर। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह के 5:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 5:30 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम स्वर रंजनी। इसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे जल तरंग। प्रस्तुत करेंगे मनीष शर्मा। आपने प्रस्तुत किया है राग भैरवी। आपके साथ तबले पर संगत किया है शब्बीर हसन ने।